0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ABC Radio 24 hours a day.
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: नमस्कार विदिता, सभी को मेरा नमस्कार। रादा मुर्शिद में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्केरिन्स के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुर्शिद में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। समुंदर की मौजों से साहिली इलाकों में बाढ़ के खतरे भी हैं। मुर्शिद की तरफ इतिहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत की जा रही हैं। काफ़ी वक्त से अबू धाबी की सरकार ने मुर्शिद में ये विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदे होंगे। मुर्शिद में जुलाई 2026 तक मिथाडन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर इन्हें प्रदान किया जाता है। ड्रग नोशी के इलाज के तौर पर मिथाडन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। इस प्रोग्राम की कारगरता के साथ साथ बहुत सी चुनौतियाँ उभरती हैं, साथ में पारिवारिक भूमिका बहुत ज़रूरी है। आज फौदा लावाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मुर्शिद पधारे जाक डेजिरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सैंत ख्वा जाएंगे। पेशे से डॉक्टर, 1841 में फौदा लावाल मुर्शिद पहुंचे थे। उन्होंने हमेशा तंगदस्तों के लिए काम किया। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें 1979 में आशीर्वाद दिया था। आज सैंत ख्वा में खास मास सभा का आयोजन किया जाएगा। विदेश में दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है। पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे थे, जिससे हादसे की प्रारंभिक वजह समझी जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: मुर्शिद में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी आज सुबह 10 बजे से कल शाम 4 बजे तक जारी। इसके अलावा मस्केरिन्स के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुर्शिद में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए मुर्शिद के मौसम का अनुमान है। आज सुबह घने बादल होंगे, दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होने लगेगी। कुछ जगहों में तेज़ वर्षा हो सकती है। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, जो कभी कभार ज़ोरदार होगी। हवा दक्षिण की तरफ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं और लगुनों के उस पार समुंदर बहुत ही

0: खराब होने वाला है। 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसकी वजह से साहिली इलाकों में बार के उतरने का खतरा भी है। इसी वजह से सभी तरह की सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है। मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से मांग की जाती है कि वे दूर समुन्द्र में न जाएं, और सड़कों पर भी लोगों से सावधान रहने की मांग की जा रही है क्योंकि बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी। तापमान की बबात करें तो तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है और न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों में 15 से 17, अधिकतम 19 से 22, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:13 पर और आज शाम को 6:02 पर सूरज ढल जाएगा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा आज का ये प्रसारण जारी हो रहा है। मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर से आप हमें सुन पा रहे हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। 8 तारीख है, सितंबर महीना, मंगलवार का दिन, 2026 का वर्ष। और आज के इस बेहतरीन दिन की शुरुआत हम कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ करेंगे। अभी थोड़ी ही देर में आप जुड़ पाएंगे कार्यक्रम में मानस मोती के साथ, जिसे प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर वीनू अरुण। 6:20 पर आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में, और ये होगा मराठी भाषा में, जिसे प्रस्तुत करेंगे नितिन बापू। 6:30 पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ। समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम, जहां पर आपका मनोरंजन हम करेंगे। तो वैसे आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं आज के इस विचार के साथ। श्रोताओं, मीठा सा होता है जीवन का सफर, बस कड़वाहट तो किसी के साथ किसी से अधिक उम्मीद जोड़ने या उम्मीद रखने से होती है। चलिए, जीवन का हर पल सभी के लिए मिठास से भरा हो, यही शुभकामनाओं के साथ आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनु अरुण का मानस मोती कार्यक्रम में।
3: आइए सुनिए मानस मोती, रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम।
4: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मोती कार्यक्रम में मैं विनु अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, प्रायः हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो ना चाहते हुए भी कभी कभी हमसे बुरा काम करवा लेती है, और ऐसा लगता है हमें जबरदस्ती अधर्म और पतन की ओर धकेल देती है। इस प्रश्न का उत्तर तुलसीदास जी ने अत्यंत सरल भाषा में लेकिन बहुत ही प्रभावी ढंग से श्री राम के मुख से दिलवाया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात तीनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि काम क्रोध और लोभ ये तीन ऐसे विकार हैं जो दुष्ट का काम करते हैं, यानी ये विकार ही सबसे बड़े दुष्ट हैं, सबसे बड़े हमारे शत्रु हैं। जैसे दुष्ट व्यक्ति हमेशा बुरा चाहता है और बुराई की ओर किसी को धक्का दे करके अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार काम क्रोध और लोभ भी मनुष्य को पतन की ओर ढकेलते रहते हैं और अधर्मपूर्ण कार्य करने को उस व्यक्ति को विवश कर देते हैं। यदि गहराई से समझा जाए तो इन तीनों में काम सबसे अधिक प्रबल है। तीनों बुरे हैं, काम क्रोध और लोभ, लेकिन यदि हम इस पर

विचार करें तो इन तीनों में सबसे अधिक प्रबल, सबसे अधिक प्रभावी होता है काम, क्योंकि वही क्रोध और लोभ का मूल कारण है। काम का अर्थ है इच्छा, कामना, लिप्सा। और कामना की विशेषता क्या है? कामना कभी समाप्त नहीं होती। कामना जितनी भी हम कोशिश करें कि उसे हम विराम दे दें, हम समझें कि हमारी कामना पूरी हो गई, तो हमारा प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि हर कामना एक अन्य कामना को जन्म देती है। एक कामना अभी पूरी भी नहीं होती है तब तक दूसरी कामना हमें आकर के दबोच लेती है। मान लीजिए मेरी ये कामना हो, मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास छत नहीं है, और मैं कामना करूं कि मेरे पास एक कमरे का ही सही लेकिन अपना घर हो जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, जैसा भी हो, लेकिन मेरा अपना एक छोटा सा घर हो जाए। और जैसे ही ये इच्छा पूरी हुई कि हमें एक छोटा सा घर मिल गया, तत्काल हमारी इच्छा हो जाती है कि इसमें हमें अधिक से अधिक सुविधा का सामान भी मिल जाए। वह मिल जाए तो हम चाहेंगे इससे बड़ा घर मिल जाए, और इस प्रकार हमारी इच्छा हमें सदा नचाती रहती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारी इच्छा पैदा ही होती रहती है। और मान लीजिए कामना पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? होगा क्रोध, क्योंकि काम से किसका जन्म होता है? जब काम अतृप्त रह जाए, यानी हमारी इच्छा जब अधूरी रह जाए, हमारी इच्छा जब पूर्ण नहीं हो, तो उससे पैदा होता है क्रोध। हमें इस बात को लेकर क्रोध आने लगता है कि क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, क्यों अन्य लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और फिर तुलना करने के कारण क्रोधित होते हैं। और जब मनुष्य पर क्रोध हावी होता है तो सबसे पहले उसका विवेक समाप्त हो जाता है। विवेकहीन होकर व्यक्ति गाली गलौज करता है, अभद्र भाषा बोलता है, कठोर शब्द बोलता है, और कभी कभी मार पीट पर उतारू होता है। इतना ही नहीं, कभी कभी वह दूसरों की हत्या तक कर देता है। वही मनुष्य जो बहुत ही सौम्य और शालीन दिखाई देता है, क्रोध में उसका आचरण, उसकी भाषा, उसका सारा व्यवहार बिल्कुल राक्षसी हो उठता है। क्रोध उतरने पर उसे समझ में आता है कि उसने कैसा अधर्मपूर्ण व्यवहार किया। तब वो पछताता है, लेकिन पछताने से कोई भी सुफल उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि कहते हैं कि एक बार जो काम हो गया उसे हम दोबारा बदल नहीं सकते। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। और अब हम एक अन्य स्थिति की ओर आपको ले चलते हैं, और वो है कामना का पूर्ण हो जाना। अभी हमने बात की कि कामना हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा हुआ, वो हमारा दूसरा शत्रु, जिसका हमें परिणाम दिखाई देता है। कामना तो मन में उठती है तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन क्रोध जब पैदा होता है तो वो सबको दिखाई दे रहा है, और क्रोध के कारण जो हम आचरण कर रहे हैं वो तो सबको दिखाई दे रहा है। तो हमारी कामना जब पूरी नहीं होती है तो उस क्रोध में अभिव्यक्त होती है, जिसे सब लोग देख सकते हैं। लेकिन कामना पूरी हो जाए तब क्या होता है? तो जब कामनाएं पूरी होने लगती हैं तो लालच पैदा होने लगता है, लोभ पैदा होने लगता है। काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध, काम पूरा हुआ, कामना पूरी हुई, तो लोभ और लालच पैदा होते हैं। मनुष्य लालची बन जाता है, वह चाहता है कि केवल उसी की इच्छाएं पूरी हों, उसी के पास सारी सुख सुविधा हो, उसी को प्रमोशन मिले, वही आगे बढ़े। और लोभ के कारण मनुष्य अपना सारा संयम खो देता है, सब कुछ अपने लिए बटोरने लगता है, अपने पास सब कुछ एकत्र करके रखना चाहता है, जिसके कारण वह

धर्म और पाप के लिए भी तत्पर हो जाता है। तो मूल में है कामना, कामना ही क्रोध को जन्म देती है और कामना ही लोभ को जन्म देती है। और इसी बात को श्री कृष्ण भगवान ने गीता में समझाते हुए कहा कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामा

0: लगती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और उन्होंने उससे भी अधिक गहराई में जाते हुए कहा कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हुई तो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी उसी का नाश हो जाता है। जब बुद्धि ही नहीं रही तो मनुष्य क्या करेगा इस संसार में। तो तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में काम, क्रोध और लोभ को केवल दुष्ट ही नहीं बल्कि प्रबल दुष्ट कहा है। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही समर्थ, क्योंकि ये जो काम, क्रोध और लोभ हैं, ये संयमी से संयमी व्यक्ति के मन को भी चंचल बना देते हैं। ऐसा सामान्य जन यानी दुर्बल मनुष्य के साथ हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये विकार पराक्रमी व्यक्ति के ऊपर भी हावी हो जाते हैं, संयमी व्यक्ति के ऊपर भी हावी हो जाते हैं। और इस दोहे में तो यहां तक कहा गया कि विज्ञान के धाम यानी जो विज्ञानी हैं, इन लोगों के मन को भी काम, क्रोध और लोभ क्षुब्ध कर देते हैं, और वह भी कैसे, क्षण मात्र में बिना किसी विलंब के। और हम जानते हैं हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, अनेक तपस्वियों के, ऋषियों के, मुनियों के, जो बताते हैं कि वे परम संयमी थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन क्षण मात्र के लोभ ने, क्षण मात्र की कामना ने उनका नाश कर दिया। यद्यपि ये ऋषि मुनि परम वंदनीय और आदरणीय हैं, परंतु कई कथाएं ये दिखाती हैं कि यदि काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण न रहे तो महान तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं। इन प्रसंगों का उद्देश्य किसी ऋषि की निंदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव का चित्रण करना, बताना कि यदि एक क्षण के लिए भी हमारा अपने ऊपर से संयम हटा तो हम किस तरह पतन की ओर चलना आरंभ कर देते हैं। तो इनमें एक कथा है विश्वामित्र मुनि की, जो इतने प्रसिद्ध ऋषि हैं कि वे मेनका के सौंदर्य से प्रभावित हो गए थे और उनकी तपस्या भंग हो गई थी। बाद में जब उन्हें अपने विचलन का बोध हुआ तो उन्होंने पुनः तपस्या की। इसी प्रकार नारद जी का उदाहरण है, इतने बड़े देवर्षि, लेकिन वे भी राजा शील निधि की कन्या को देखकर लोभ में पड़ गए, उनके मन में कामना पैदा हो गई कि ये मेरी पत्नी बन जाए, और फिर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपने ही आराध्य को श्राप दे दिया। तो ये सारी जो कथाएं हैं वो हमें यही बताती हैं कि मनुष्य को सदा अपना अवलोकन करते रहना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए, और प्रयत्न यही करना चाहिए कि जब तक संसार में है कामनाएं तो आएंगी, लेकिन वो कामनाएं हमारे ऊपर हावी होकर हमसे गलत आचरण ना कराएं। और श्रोताओं, आज इन्हीं चौपाइयों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस मोती।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार और आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। मॉरिशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी। इसके अलावा मस्करिन्स के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरिशस में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। मॉरिशस की तरफ इतिहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत जारी। काफ़ी वक्त से अबू धाबी की सरकार ने मॉरिशस में ये विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। मॉरिशस में जुलाई 2026 तक मिथाइडन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर मिथाइडन प्रदान किया जाता है। ड्रगनोशी के इलाज के तौर पर मिथाइडन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। आज फौदा लावाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मॉरिशस पधारे जाक डी-जे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सैंतकवा जाएंगे। और दिल्ली में एक 5 मंजिला इमारत के ढहने से 7 लोगों की मौत। नमस्कार रादाब, खुश आमदीद। इस बुलेटिन में मॉरिशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है और कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्करविंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरिशस में तेज़ हवाएँ चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। समुंदर की मौजों से साहिली इलाकों में बार के उतरने के खतरे भी हैं। ये उल्लेखनीय है कि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी आएगी। मॉरिशस की तरफ इतिहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत जारी है। काफ़ी वक्त से अबू धाबी की सरकार ने मॉरिशस में ये विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदे होंगे। पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी के अलावा देश की विजिबिलिटी बढ़ेगी। आशीबाचू विधिमासिपुरन।
2: फिलहाल ये अभी सिर्फ एक परियोजना है, लेकिन अबू धाबी सरकार की इस इच्छा में गहरी सच्चाई है कि इतिहाद एयरवेज मॉरिशस के लिए उड़ान भरे। ये संभावना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए मॉरिशस की अपनी विमानन प्रवेश नीति की समीक्षा करने की इच्छा का हिस्सा है। इतिहाद संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन है और आज अपने अबू धाबी हब के माध्यम से दुनिया भर में 120 से अधिक गंतव्यों के लिए उड़ान भरती है। ये अमीराती एयरलाइन यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और नए पर्यटन बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करेगी। इसकी शुरुआत से एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसे पहले से स्थापित विमानन कंपनियों के साथ मुकाबला भी तेज हो जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी किराए और बेहतर सेवा को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत इस शुरुआत से कुछ प्रमुख मार्गों पर मार्केट शेयर पर कब्जा करके एमोशस के कमजोर होने का जोखिम भी पैदा हो सकता है। अधिकारियों के सामने मुख्य चुनौती विशेष रूप से भावी नेशनल एविएशन काउंसिल के माध्यम से राष्ट्रीय एयरलाइन को खतरे में डाले बिना इस सेक्टर को गति देना होगी। हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन ये परियोजना मॉरिशस को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानन मार्गों से बेहतर ढंग से जोड़ने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: काफी वक्त से पेंशन सुधार का मुद्दा देश में सुर्खियों में बना हुआ है। याद रहे जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लेगा।

0: सरकार ये सुधार क्यों अपना रही है, एक व्यक्ति को किस उम्र से बेसिक पेंशन प्राप्त होगा, ऐसे कई सवाल आज कर्मचारियों के बीच उठ रहे हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण के लिए कल टीवी स्टूडियो में आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल मौजूद थे। उन्होंने उल्लेख किया कि कैब दफ्तरों में मुशर्रों को समझाने के लिए हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। मंत्री राम तोहल ने जोर दिया कि ये सुधार कितना जरूरी था क्योंकि पुरानी पेंशन प्रणाली टिकाव नहीं थी। उन्हें सुनते हैं।
1: एगो नवा सिस्टम अनलीसा, ओकर नाम है एसआपी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और सब मंत्री संगे हई सब हई सिस्टमवा काम कर ली है सर, और ये हर सिस्टमवा के चाहेला अच्छी तरह से समझे के जाने के कि कितना पंशों मिलिए गो आदमी के और कौन शुआबा कौन लाज पर पंशों लेके के इसे विश्वा अक्षय मिली sap.gov.mu.org पर तो हुआ जब जाइबा तो एगो लेखा मिली। इ लेखावा में दो तीन गो फाकते बा, एगो फाकते बा आदमी वा कौन लाने में ने होलबा। पहला एग्जाम्पल है वापस एगो आदमी जो ने बा 1967 में तो हियाँ सकब से ओकर लाज से लिखते करे 1967 और ही हियाँ पर सकब से ओकर महीना छुने उन महीना में ने होलबा, बोला नवंबर में ने होलबा। तो ई आदमी के श्वा मिली अपन पेंशन लेके लाज 60 पर जहाँ ओकरा मिली 13,202 अगर ई लोग अपना अपन पेंशन ले 60 पर ओकरा श्वा बा की पेंशन वा ले 61 पर जहाँ ओकरा 14,663 मिली। सिनो ओ सकी पेंशन वा ले जब ओकर फुल एलिजिबिलिटी माने की मैच्योरिटी हो जाए पेंशन से, तो ई आदमी वा के आवेला ला 63 ans में फुल एलिजिबिलिटी पर ओकरा पेंशन मिली 17,850। जो चाहेला याद करे के कि ई पेंशनवा जब हाउ शिफवा देखब सर जब पेंशनवा मिले लगी तो हियाँ नया रहते होला ओ ऑगमेंटे होवेला बाजों इन्फ्लेशन पर। तो हियाँ हाउ सीट वेबवा में जब जाइबा अपन लाज से लेखते करबा मुआ से लेखते करबा शिफवा दे कितना पेंशन मिली तो सकबा हियाँ देखे टैब्लोवा में कि ई शिफवा कैसे लाने और लाने कैसे जस्ती होवेला। तो 17,850 से शुरू होके 18,000, 20,121, 20,790 ऐसे वो शिफला एवोल्वे हो गया। काहे हाई इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, बस कि आदमी लोग बोल रहे हवन सर कि इस शिफवा एक बार जब एगो आदमी के मिले लगी तब कबू नहीं समझे इस शिफवा गांजी हो। और एगो और बात बा जो काफ़ी आदमी लोग यहाँ दल्ले बोल रहे हवन सर आदमी लोग से कि इस शिफवा कमती हुई तो हियाँ क्लियर बा कि इस शिफवा जस्ती बा जोन शिफ ओ लोग बोले ना सर इस शिफवा उससे जस्ती बा। ये पहली बात बा। और दूसरी बात कि इस शिफवा एक बार अपना पेंशन छुए लगेला तो इस शिफवा ग्रांजी हुई फिक्स नहीं रही। एगो दूसरा एग्जाम्पल है अभी एगो कि कहन के जो ने होलबा जनवरी 1970 ने होलबा जनवरी में तो वो आदमी के जब पेंशन ले 60 ans पर यहाँ से लिखते सकब से करे तो ओकर होई पेंशन 13,298। जब फुल एलिजिबिलिटी होई 65 ans पर ओ डिसाइड करी पेंशन ले के 65 ans पर तो ओकर पेंशन होई 22,563। माने कि एगो आदमी के ओकर श्वा बा कब ओकर पेंशन ले लाज 60 ans में ले कि लाज 61-62 नहीं तो जब ओ फुल एलिजिबिलिटी में आए। तो ऐसे हमने हाई से विश्व बनैले हैं सर ताकि आदमी लोग के जानी कि कितना पेंशन मिली जब कौन लाज में लियन सर तो कितना पेंशन उन लोग की मिली। हमने बनैले हैं सर एगो एप्लीकेशन जो कर नाम है कोरेक्ट, हुआ पर सकबा जाए डाउनलोड करे ई इन्फॉर्मेशन हुआ भी मिल जाए। सकबा ब्यूरो से आबे भी जाए, ब्यूरो से आबे में जहाँ कंप्यूटर बा हुआ के स्टाफ लोग वो सकन सर तुहार सहायता करे ताकि तू हाई एप्लीकेशन पर जाएगा अपन डेटाई डलबा और शिफवा हुआ मिल जाए।
0: कल मंत्री समाचार बुलेटिन में टीवी स्टूडियो के दौर में अदिति गनवा अवतार के जवाब के सवालों का जवाब दे रहे थे। मॉरीशस में जुलाई 2026 तक मिथाइडिन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर मिथाइडिन दिया जाता है। ड्रग नोशी के इलाज के तौर पर मेथाडोन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। इस प्रोग्राम की कारगरता के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां उभर

0: करती हैं, साथ में पारिवारिक भूमिका बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के होम रिडक्शन सेक्शन के जिम्मेदार अफसर डॉक्टर नीतीश राज सुकुल को सुनते हैं। शैलिनी अबर ने उनसे बात की।
1: Le programme de méthadone, à ce jour, en a 8200 bénéficiaires qui
2: मेथाडोन प्रोग्राम के अंतर्गत अभी 8200 लाभार्थी हैं, जिन्हें दैनिक तौर पर अपनी दवाइयां मिलती हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत न केवल मेथाडोन उपलब्ध कराए जाते हैं, बल्कि मेडिकल फॉलोअप भी होता है, मनोसामाजिक फॉलोअप भी। एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की ओर से ये संभव है, जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, क्षेत्र में अनुभवी डॉक्टर है, स्पेशलाइज्ड होम रिडक्शन नर्स, स्पेशलाइज्ड होम रिडक्शन HCAs हैं, साथ में NGOs की भी मदद मिलती है। पुनर्वास और अंततः समाज में इन्हें फिर से सम्मिलित किए जाने की योजना के अंतर्गत देखभाल संबंधी सेवा प्रदान करने के तहत ऐसा किया जा रहा है।
1: Qui offert ce service par rapport à la prise en charge sur le plan réhabilitation et éventuellement réinsertion dans la société.
0: विवरण रजनी भीकर का रहा। आज फौजा लावा के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मुर्शिद पधारे जाक डिज़िरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सैंत ख्वा जाएंगे। पेशे से डॉक्टर, 1841 में फौजा लावाल मुर्शिद पहुंचे थे। उन्होंने हमेशा तंगदस्तों के लिए काम किया। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें 1979 में आशीर्वाद दिया था। विधिमा से बुरन
3: फावर जाक डिज़िरे लावाल मॉरिशस के इतिहास में एक अत्यंत सम्मानित और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक हस्ती हैं। उन्हें मॉरिशस के अपोस्टल ऑफ मॉरिशस के रूप में जाना जाता है। फावर लावाल का जन्म 18 सितंबर 1803 को फ्रांस में हुआ था। पादरी बनने से पहले वे एक डॉक्टर थे। बाद में उन्होंने अपना जीवन धर्म और मानवता की सेवा को समर्पित करने का निर्णय लिया। वे सितंबर 1841 में एक मिशनरी के रूप में मॉरिशस आए, जो उस समय दास प्रथा की समाप्ति के बाद का एक संवेदनशील दौर था। उन्होंने मुख्य रूप से हाल ही में मुक्त हुए गुलामों, गरीबों और वंचितों के बीच काम किया। अपनी चिकित्सीय पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए उन्होंने बीमारों का इलाज किया, शिक्षा का प्रसार किया और लोगों को उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया। 9 सितंबर 1864 को उनके निधन के बाद से हर साल 9 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि पर मॉरिशस के सेंट क्वा स्थित उनके मकबरे पर एक विशाल तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हर साल 8 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर विभिन्न पृष्ठभूमियों के हजारों मॉरिशस वासी रात भर पैदल यात्रा करते हैं। वे द्वीप के अलग अलग हिस्सों से पोटरी के पास सेंट क्वा में स्थित उनके मकबरे तक की यात्रा करते हैं।
0: फौजा लावाल की बरसी के मौके पर हजारों की तादाद में आज देश में अलग चहल पहल होगी। नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। तीर्थयात्रियों की मदद करने के लिए जगह जगह पर पुलिस होंगे। स्वयंसेवी भी रास्ते में भोजन परोसेंगे। फौजा लावाल की याद में आज रात 8 बजे सैंत क्वा में खास मास सभा का आयोजन भी किया जाएगा। संताना पोस्नो, रजनी बेकर।
4: सैंत क्वा में अभी के लिए सामान्य रूप से जीवन चल रहा है, लेकिन पेलावाल के मकबरे की ओर जाने वाली इस गली में ऐसे संकेत कि वो अहम दिन नजदीक ही है। फूल, मोमबत्तियां, मालाएं, टी शर्ट, विक्रेता अपने स्टॉल्स लगाने में व्यस्त। वे भी तीर्थयात्रियों का स्वागत करने की तैयारी में। मंगलवार से ये समा बदलने वाला है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही जो होगी, हर साल हजारों लोग यहाँ फौजा लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। फौजा लावाल 1841 में मॉरिशस आए थे। वे गरीबों के मसीहा कहलाए जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे जरूरतमंदों और मॉरिशस के पुराने दासों की मदद करने में बिता रहे थे। उनके निधन के 160 वर्ष बाद आज भी वे बहुत से मॉरिशनों के दिल में बसे हुए हैं। इस बीच संबंधित तैयारियां की जा रही है। सोमवार 7 सितंबर को नेशनल टास्क फोर्स स्थल पर मौजूद और इंतजामों का जायजा लिया जा रहा था। सेंटर दे पेलरिनाज दे पेलावाल के मुताबिक दिन के दौरान 60,000 से 75,000 लोगों के आने की उम्मीद है और पूरे महीने के लिए करीब 2,00,000 लोग।
0: स्वामी शिवानंद सरस्वती महान आचार्य, चिकित्सक और डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक थे। उनका जन्म 8 सितंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। आध्यात्म, दर्शन और योग पर उन्होंने लगभग 300 पुस्तकों की रचना की। संसार भर में उनके शिष्य हैं, जिनमें सभी राष्ट्रों के निवासी तथा सभी धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। उनमें से एक मुर्शिद भी शामिल हैं। रुझिल की डिवाइन लाइफ सोसाइटी आज उनका 139वां जन्मदिन मना

0: रही हैं। ज्यादा जानकारी रोजेल की डिवाइन लाइफ सोसाइटी के सदस्य नवीन लक्ष्मण दे रहे हैं।
1: आज दिव्य विभूति स्वामी शिवानंद जी का जन्मोत्सव है। भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतीय मूल के लोग बसते हैं और जहाँ डिवाइन लाइफ सोसाइटी के केंद्र है, वहाँ पूरा सितंबर महीना उनके जीवन और आध्यात्मिक योगदान के स्मरण में मनाया जाता है। स्वामी जी ने बच्चों, महिलाओं और छात्रों के लिए सरल भाषा में 300 से अधिक पुस्तकें लिखी। उन्होंने ज्ञान यज्ञ की ऐसी अलग जगाई जिसने लोगों को उनके घर बैठे सुख और शांति प्रदान की। हमारे मॉरिशस के लिए तो उनका आशीर्वाद और भी गहरा है। उनके शिष्य शिरोमणि स्वामी वेंकटेशानंद जी ने यहाँ आकर उनके विचारों एवं विचारों को घर घर पहुंचाया। आज इस पावन अवसर पर आइए हम स्वामी शिवानंद जी के संदेश, सेवा, प्रेम, दान, ध्यान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें।
0: दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है। पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे थे जिनसे हादसे की प्रारंभिक वजह समझी जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई है और 12 लोगों को मलबों के नीचे से निकाला गया। इमारत के मालिकों को गिरफ्तार किया गया, जांच की जा रही है। इमारत में एक हॉस्टल भी था। और अब करते हैं मौसम की बात एक बार फिर से। मॉरिशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्करविंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरिशस में तेज़ हवाएँ चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, एक जोरदार एंटीसाइक्लोन भी हमारे इलाके में पाया जा रहा है। आज सुबह घने बादल होंगे, दिन के दौरान बादल घिराएंगे और रह रह कर बारिश होगी जो कभी कभी ज़ोरदार होगी। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और रह रह कर वर्षा होती रहेगी जो कभी कभी ज़ोरदार होगी। हवा दक्षिण की तरफ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके चंद इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। लगुनों के उस पार समुद्र बहुत ही ख़राब रहेगा। 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी और इनकी वजह से साहिल इलाकों में सैलाब के उतरने का भी ख़तरा है। इसी वजह से मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से मांग है कि वो दूर समुद्र में ना जाएं और सड़कों पर भी चालकों से सावधान रहने की मांग की जा रही है, क्योंकि बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 15 से 17, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नोट की जाएगी और आज शाम 6:02 पर सूरज ढल जाएगा।

मॉरिशस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्करिन्स के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉरिशस में तेज़ हवाएं और ठंड महसूस की जाएगी। मॉरिशस की तरफ इत्तेहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत जारी। काफ़ी वक्त से आबूधाबी की सरकार ने मॉरिशस में ये विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। मॉरिशस में जुलाई 2026 तक मेथाडोन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर इन्हें प्रदान किया जाता है। ड्रग नोशी के इलाज के तौर पर मेथाडोन देने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदी लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। आज फौदा लावाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मॉरिशस पधारे जैक डिज़िरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और दिल्ली में एक 5 मंजिला इमारत

0: एक दहने से 7 लोगों की मौत हुई है। तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारी टेक्निकी साथ ही अपर्णा बरलोहन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: अप्यारो दे ख्वानियों में 88 साल की 88 years old श्रीमती मुनबसिया दरिमदो, श्रीमती मुनबसिया दरिमदो जो धर्मावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके बेटे अजय रामोतो के घर अप्यारो दे ख्वानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कैथकोको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रूद मोताबा में 69 साल की 69 years old श्रीमती तारामती सिचन, श्रीमती तारामती सिचन पैदाइशी नाम मुलू जो शीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सपहर तीन बजे इनके पति धर्म सिचन के घर रॉयल रोड मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बागेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव में 71 साल के 71 years old श्रीमती श्री लक्ष्मण मालू जो राजा राम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके घर बागेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारिशानी रोजबेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बेकरी रोड से कॉन्स्टेंस सेंट पियर में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड श्रीमती दंदरानी जगरूप, श्रीमती दंदरानी जगरूप पैदाइशी नाम त्रिभुवन जो संगीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे के बेटे विजय जगरूप के घर बेकरी रोड सियाकोंस्टांस सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सैपिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड बिलवेरिया में 34 साल के 34 ईयर्स ओल्ड जनाब एमान नंदलुल, श्री एमान नंदलुल जो जापों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े बारह बजे इनकी माँ चंद्रावती नंदलुल के घर रॉयल रोड बिलवेरिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदे मास की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। जानेट स्ट्रीट विलमैक और थेमिलिटिया में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सूर्या कीर्ति रामफल, श्रीमती सूर्या कीर्ति रामफल पैदाइशी नाम झकूरी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ग्यारह बजे इनके बेटे बिदत रामफल के घर जानेट स्ट्रीट विलमैक और थेमिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विलमैक की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सीबंधन रोड प्लेंटी पपाई में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सिरीमती सितलू पैदाइशी नाम सिरतन जो माला सितलू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके पति सतदेव सितलू के घर सीबंधन रोड प्लेंटी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेंटी पपाई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिवालों रोड क्रेवक्यू में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धनवंती बलदाओ जो कलावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े तीन बजे इनके बेटे सुनील महादेव के घर रिवालों रोड क्रेवक्यू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रेवक्यू की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। रॉयल रोड मोचीदा में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड श्री विनोद राम तोहल जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे इनके घर रॉयल रोड मोचीदा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदे मास की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:30 PM। लाबोदने रोड मेबर्ग में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती माहित्री तिलक पैदाइशी नाम तिलवा

0: जो दादी मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज एक बजे इनके घर लापूदोनी रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM शिवाला रोड थ्रियोली में 70 साल की श्रीमती अनीता जगलोल पैदाइशी नाम कांधाई, जो हमारे सहयोगी सचिन जगलोल की माँ थी, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 10 बजे के घर शिवाला रोड थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामी न्यूज थ्रियोली की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM रॉयल रोड श्वाजी बेजू कैप में 77 साल की श्रीमती राजिका हारी पैदाइशी नाम इसराम, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे इनके पति दयानंद हारी के घर रॉयल रोड श्वाजी बेजू कैप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमौता बेजू कैप की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM रॉयल रोड गौंद पॉइंट पीमा में 49 साल के श्री मनोज सिचन जो चूना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 10 बजे इनके घर रॉयल रोड गौंद पॉइंट पीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंटबीश की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM सीताराम लेन लावांचुआ में 70 साल के श्री सुखदेव गुंडरारी जो टैंपलिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज साढ़े बारह बजे इनके घर सीताराम लेन लावांचुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए बिल्कुल 7:01 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर आइए नजर डालते चलें। ये विज्ञप्ति है तमागह के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर एवेन्यू मॉल है और मौसलमा इन्वेस्टर्स के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 9 सितंबर को सुबह 8:30 से लेकर शाम 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। साथ ही साथ लागोलेट के आसपास के इलाके जिनमें है मौसलमा लाफ्लैश, मौसलमा ग्रैंड केस नोएल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर को सुबह 8:30 से लेकर शाम 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। कौतुगेल के आसपास के कुछ इलाके जिनमें है रॉयल रोड के कुछ इलाके, खासकर लखू रोड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार यानी कल सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। साथ ही साथ सैमोतन, बेजुकाप और श्वाजी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है गियोबेल कोस्ट रोड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 9 सितंबर को यानी कल सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर

सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। हर सुबह समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम जारी रखा जाता है, जहां पर आपका भरपूर मनोरंजन किया जाता है लाजवाब गीतों के साथ। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हो चुकी है रत्ना, जहां कहीं से भी साथ दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप एक बार फिर दिल से हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तत्पर हो चुके होंगे और आज का दिन बिल्कुल आपके लिए बहुत ही प्यार से बीते, मंगलमय रहे, स्फूर्ति से भरा रहे, ऊर्जाजनक रहे। रत्ना आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी है।

0: है अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं चिंतन के साथ, और आज के इस चिंतन को प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: वन में सिंह का न कोई संस्कार ही किया जाता है और न अभिषेक ही, किंतु अपने पराक्रम से सब जंतुओं पर शासन करने से स्वयमेव उसकी मृगेंद्रता हो जाती है।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बिल्कुल 7:10 होने को हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए स्पोर्ट्स न्यूज सुनते हैं अरविंद जी की प्रस्तुति में।
0: स्पोर्ट्स न्यूज़।

यूरोपियन चैंपियंस लीग इज बैक। आज से यूरोप की बेहतरीन टीमें यूरोप की टॉप ट्रॉफी जीतने के लिए भिड़ेंगी। ला कूप ओ ग्रैंड ओरेल कहते हैं इसे। पेरिस सेंट-जर्मेन हैट्रिक पूरा करना चाहेगा। फुटबॉल पंडितों के अनुसार आर्सेनल के साथ बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख फेवरेट हैं। अगले साल 5 जून को मैड्रिड में फाइनल होगा, पर इससे पहले लीग स्टेज के मैच आज से शुरू। एके एथेंस एलएएसके, क्लब ब्रूज एस्टन विला, बोरुसिया डॉर्टमुंड विलारियल, लील रियल बेटिस, पोर्टो मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड इंटर मिलान, ये आज के मैच हैं। फिर कल के जो मैच होंगे, कल बार्सिलोना फेयेनोर्ड, स्टुटगार्ट वाइकिंग, लिवरपूल अपने होम मैदान एनफील्ड रोड में होगा, स्वागत करेगा एथलेटिको मैड्रिड का। नापोली आर्सेनल के खिलाफ खेलेगा। पेरिस सेंट-जर्मेन डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन खेलेगा स्लोवान ब्रातिस्लावा के खिलाफ और स्पोर्टिंग गलातासराय। और थर्सडे मैच गुरुवार को मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापसी हो रही है चैंपियंस लीग में, उसका मुकाबला सबा टीम से है, मतलब प्रीमियर लीग की 5 टीमें हैं चैंपियंस लीग में जो आज से शुरू हैं लीग स्टेज के मैच। कल के खेले गए मैचों के नतीजे, इंग्लैंड के लीग 1 में ब्रोमले 0 विंबलडन 2, स्पेन के ला लीगा में रेताफे 1 सेल्टा वीगो 1, एल्चे 2 रियल सोसिएदाद 3, इटली के सेरी आ में कागलियारी 1 लेचे 0, यूडिनीजे 1 लाजियो 2। आज इंग्लैंड में काराबाओ लीग कप के थर्ड राउंड के मैच खेले जाएंगे, इनमें बोर्नमुथ का मुकाबला लिंकन सिटी से है, क्रिस्टल पैलेस मिडल्सब्रो, लेटन ओरियंट ब्रैडफोर्ड सिटी, संडरलैंड हल सिटी, मिलवॉल का मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से होगा। सो 12 सितंबर प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं। 12 सितंबर को यानी इस सैटरडे को एस्टन विला नॉटिंघम फॉरेस्ट, बोर्नमुथ ब्रैडफोर्ड, चेल्सी हल सिटी, क्रिस्टल पैलेस इप्सविच, लिवरपूल फुलहम, टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन और संडरलैंड आर्सेनल। सैटरडे का मैच 11 बजे होगा शनिवार को सैटरडे को। और संडे मैच मैनचेस्टर डर्बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने होम मैदान में होगा मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ 7:30 बजे। इससे पहले कोवेंट्री ब्राइटन और मंडे मैच लीड्स न्यूकासल यूनाइटेड। बालोदो के लिए आज शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी। हैरी केन फेवरेट है, पर बहुत फुटबॉल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अवार्ड केवल सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वालों के लिए नहीं, कुछ और मापदंड होते हैं, खासकर जिस साल में वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी आगे आते हैं। रोड्री को भी नहीं भूलना चाहिए, अच्छे चांसेस हैं। सो केन या स्पेन शॉर्ट लिस्ट आज ऐलान की जाएगी। टेनिस, एलेना रिबाकिना यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची नाओमी ओसाका को हराकर। यहां पर उसका सामना जेंग क्विन वेन से होगा, जिसने ईगा श्वातेक को हराया। अगर रिबाकिना क्वार्टर फाइनल में जीतती है तो वो वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। अन्य मैचों में अलेक्जेंडर ब्लोक्स ने सेहुंडुलो को हराया। बेन शेल्टन, एमा नावारो, मीरा आंद्रीवा, पेगुला काचानोव, कोको गोव जीत पाए। क्वार्टर फाइनल में कोको गोव का मुकाबला मीरा आंद्रीवा से होगा। कारेन काचानोव ब्लॉक्स, अरीना सबालेंका का मुकाबला लिंडा मोस्कोवा से है और फ्रांसिस चाफुए का मुकाबला अलेक्स माइकलसन से। क्रिकेट, विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। पाकिस्तान ने हांगकांग को हराया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। आज बांग्लादेश का मुकाबला यूएई से, जिसकी जीत होगी सेमीफाइनल में भारतीय लड़कियां स्वागत करने के लिए तैयार हैं। याद दिला दें, मॉरिशस में आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का ग्रैंड फाइनल इसी रविवार को, इसी संडे को खेला जाएगा। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, तैयार रहिए, चैंपियंस लीग की वापसी हो रही है आज से लीग स्टेज, उसके बाद

0: देखेंगे पेरिस सेंट-जर्मेन को हराने वाली कौन सी टीम होगी। पेरिस सेंट-जर्मेन भी अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार,

0: का पंछी।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस,
2: झलकियां,
3: झलकियां,
4: रेडियो मॉरिशस।
3: प्यारी सी हटकर ये आवाज़ थी सुबीर सहन साहब की, और ये प्यारा सा गीत बिल्कुल आस का पंछी फिल्म से लिया हुआ गाना था। तो चलिए इसी के साथ झलकियों में आपको बताते चलिए कि आज दिन में कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं बिल्कुल आपका मनोरंजन करने के लिए। इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दे रही हूँ। वैसे ये कार्यक्रम जारी रहेगा 9 बजे तक, इसी के अंतर्गत 8 बजे भोजपुरी में समाचार आप सुनेंगे और 8:15 बजे आपकी मुलाकात करवाएंगे आज ऐसी एक क्वीन से बिल्कुल जो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। जी हाँ, हम ये बात ज्यादा छुपाएंगे नहीं।

क्योंकि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी मशहूर सिंगर गायिका आशा जी का जन्मदिन है। तो आज के इस कार्यक्रम को बिल्कुल 8:15 बजे हम एक ट्रिब्यूट के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे और आशा जी के जीवनी पर कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ हम साझा करेंगे 8:15 बजे से लेकर 8:50 मिनट के अंतर्गत। और बिल्कुल 8:50 मिनट पर आप सुन पाएंगे किरण जानकी को हमारी धरोहर कार्यक्रम में। और भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए हम बढ़ते चलेंगे आगे 9 बजे के समाचारों के बाद। आज की चर्चा कार्यक्रम को आप सुनेंगे जिसका सीधा प्रसारण हमेशा होता है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे रेडियो MBC के तीसरे चैनल पर। और साथ ही साथ आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सुमिता सरकार द्वारा, और का आज के हमारे मेहमान होंगे पॉलिटेक्निक्स के रिसोर्स पीपल श्रीमती दृष्टि बनोमाली पुरन, जो एकेडमिक अफेयर्स ऑफिसर और IT और साथ ही साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्लस्टर की ऑफिसर हैं। साथ ही साथ मिस उर्वशी दुकन, जो एसोसिएट लेक्चरर और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी साथ ही साथ लेजर और स्पोर्ट्स क्लस्टर को फैकल्टी को बिलोंग करती हैं। तो बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा 10 बजे तक। वैसे याद दिला दें कि यही कार्यक्रम पुनः आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। चलिए इसी के साथ 10 बजे के समाचारों के बाद पुनः मैं उपस्थित रहूंगी आपका साथ देने के लिए भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा में, जहां पर भक्तिमय भजनों के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक बातों पर भी चर्चा होगी। और बिल्कुल चर्चा तो नहीं, पर ये कार्यक्रम में पंडित यानी आचार्य सुदेश बद्री जी हमारा साथ देंगे वेद सुधा कार्यक्रम में, जहाँ पर कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आध्यात्म को लगकर है, वेद को लगकर है, साझा करेंगे। 11 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 11 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के कार्यक्रम, जिसकी पहल होगी उर्दू कार्यक्रम के साथ, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी सैयदा सुबाई। 12 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी वर्षा। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया का साथ रहेगा मराठी गीतों के कार्यक्रम में। 1 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। 1 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम आप आनंद उठा सकते हैं, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी RSC। 1:45 बजे गुजराती गीतों को लेकर आएंगी अमिता। 2 बजे डेविड की प्रस्तुति में मैंडरीन कार्यक्रम। 2:30 बजे दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद, और ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा रोशनी द्वारा। 4:00 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम। 4:00 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी पुवाना। 1 घंटे का सफर रहेगा। 5:00 बजे पुराने गीतों का सफर, भूले बिसरे गीत, जिसमें प्रस्तुतिकरण होगी उषा की। और बिल्कुल 6:00 बजे एक बार फिर देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में। 6:30 बजे आप सुन पाएंगे चाइनीज भाषा का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगी जिन। 7:00 बजे युवराज सेन की प्रस्तुति में होगा तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी कृतिका। 7:50 मिनट पर गीत गंगा मराठी गीतों का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा शिरीष रामा द्वारा। 8:10 मिनट पर भजले प्रभु का नाम भक्ति में इस यात्रा में आपका साथ देंगी अनीता। 8:40 मिनट पर महफिल शब इस कार्यक्रम को पेश किया जाएगा निसार अख्तर के द्वारा। 9:00 बजे से लेकर 11:00 बजे के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगे RJ प्रताप सिंह। 11:00 बजे से 12:00 बजे के बीच पुराने गीतों का सफर, सुनहरे पल, जिसे सजाएंगी नीतुषा। और बिल्कुल 12:00 बजे से लेकर कल सुबह 6:00 बजे तक आप सुन पाएंगे ओवरनाइट प्लेलिस्ट, जिसे सजाते हैं हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट। तो ये थी सूची हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों की। वैसे हम आपको ये भी बताते चले कि आज दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच उड़ान की कहानी में मैं पुनः आपका साथ दूंगी रेडियो मनोरंजन पर, और आज के हमारी जो मेहमान हैं वो होंगी मिसेस अनिका बैयत, और बिल्कुल उनसे हम बात करेंगे, रूबरू करेंगे, और उनके जीवन पर आधारित कुछ ऐसी इंस्पायरिंग बातें जानेंगे। तो चलिए सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखते हैं, और बिल्कुल इस वक्त कुछ पुराने गीतों का सिलेक्शन हम लेकर आए हैं हमेशा की तरह आपके दिन को और भी टकाटक और भी तरोताज़ा बनाने के लिए। बिल्कुल आप हमें कॉल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4020280

85 पर लगातार आपके फ़ोन कॉल्स आते रहे हैं 4028085 पर और आपके प्यारे मैसेजेस 5251705 पर आने दीजिएगा। 7:25 यानी 7:25। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई, हर अंधेरे के पीछे उजाला ही होता है। उगते हुए सूरज की रोशनी को आज तक कोई रोक पाया है भला? बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ एक लाजवाब सा गाना, और ये है फिल्म एक ही रास्ता से लिया हुआ, हेमंत कुमार और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस.

भाई प्यार जताकर ही दिल लूट लिया जाता है। 1968 के दौर की ये मूवी शिकार से लिया हुआ लाजवाब सा गीत आशा जी की प्यारी सी आवाज। और इसी के साथ भैया आज उनका जन्मदिन है और जरूर आज एक छोटी सी मुलाकात में करेंगे हम उनकी प्यारी बातें और उन्हीं के प्यारे प्यारे गीतों के साथ इस सेगमेंट को और भी लाजवाब बनाएंगे। और चलिए इसी के साथ मजेदार गीतों का ये सफर जारी रखते हैं। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि कुछ लोग जिधर की हवा होती है उधर ही चल पड़ते हैं। भाई हालांकि ये काम तो कचरे का होता है, सही कहा ना। चलिए इसी के साथ दीजिए एक हंसी और प्यार भरे गीतों के सफर में इस गीत के बाद आते हैं आज की छोटी सी बात को लेकर। और ये जो प्यारा सा गीत है मुकेश साहब की आवाज में, एक फूल चार कांटे से लिया हुआ।

0: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: सात बजकर 41 मिनट होने जा रहे हैं और बिल्कुल सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। मैं हूं रत्ना, आपका साथ दे रही हूं और आज के इस आपके बिल्कुल मन चाहे सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। छोटी सी बात, जहाँ पर छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी को एक अलग मायना देती हैं, एक ऐसी सोच डेवलप करती है जो बिल्कुल हमारे जीवन में हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। और कोशिश हमारी यही है कि समाज में चलने वाली कुछ ऐसी ही बातों को लेकर कहानियों में ढाल कर हम आप तक ये बातें पहुँचाते हैं। चलिए, आपने देखा होगा कि हमारे जिंदगी में आईना और खिड़की दोनों ही कांच से बने हैं, लेकिन इन दोनों का जो उपयोग है वो बिल्कुल अलग तरीके से है। आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो आईना हम देखते रहते हैं ताकि हम अपनी खूबसूरती को निहार सके, और खिड़की का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ताक झांक कर सके। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ही चीज़ें हमें ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी सीख समझाती हैं। चलिए, इसी पर आधारित आज की ये छोटी सी कहानी और बिल्कुल आईना और खिड़की। आईना इसीलिए ताकि हम पहले स्वयं को देखें और खिड़की ताकि हम दूसरों को एक अच्छे नज़रिए से देखें। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, दुनिया को समझने और बदलने से पहले स्वयं को समझना बहुत ज़रूरी है। तुम अगर स्वयं को जान लोगे तभी तुम दूसरों को सही तरीके से समझ पाओगे और बिना निर्णय किए उन्हें स्वीकार कर पाओगे। तब गुरु ने समझाया कि आईना क्या करता है। आईना हमें अपने चेहरे की सच्चाई दिखाता है, उसमें कुछ भी छुपा नहीं होता, कोई फिल्टर नहीं होता। ये हमारी कमियों को देखने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है ताकि उन कमियों को हम अपने भीतर देख पाएं और उसे हम सुधार सकें। अगर हम रोज खुद को आईने में देखते हैं तो धीरे धीरे करते हुए हम बेहतर बनने का प्रयत्न कर सकते हैं। आईना हमें बदलने की प्रेरणा देता है। उस प्रकार खिड़की क्या करती है? खिड़की हमें दुनिया का नजरिया दिखाती है। वो हमें दूसरों के विचार, उनकी परिस्थितियों और उनकी सच्चाई समझने में मदद करती है। जब हम पहले खुद को समझ लेते हैं तब भी हम दूसरों को बिना आलोचना, बिना किसी क्रिटिक्स के समझ पाने की क्षमता रखते हैं और सहानुभूति रखते हैं। खिड़की हमें स्वीकार करना सिखाती है। तो आज की ये छोटी सी बात बस हमें यही सीख देती है कि पहले आईने में खुद को देखो और अपनी कमियों को सुधारो, फिर खिड़की से दुनिया को देखो और सबको समझो, स्वीकार करो। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारा नज़रिया बदलता है, और जब हमारा नज़रिया बदलता है तभी तो पूरी दुनिया बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में बदली हुई नज़र आती है, अच्छे तौर पर बदलाव दिखाई देता है। आशा करते हैं आईना और खिड़की की ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, और हमेशा आईने में देखना और अपने अंदर की कमियों को समझना, उसे बदलना, फिर आपको दूसरों की कमियां बहुत कम नजर आएंगी, लगभग ना के बराबर।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

बिल्कुल, पर्वों का सिलसिला जारी हो चुका है और एक के बाद एक या जन्माष्टमी के बाद अब सभी लोग लग चुके हैं तैयारियों में गणेश जी के आगमन की। और चलिए एक एक करते हुए हमारे सभी देवी देवताओं को हम नमन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे ऑडियंसेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही प्यार से। हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, तहे दिल से आपको धन्यवाद भी देंगे। और आज के इस

कार्यक्रम में आपका हमेशा हम दिल से स्वागत भी करते हैं, और जितने भी लोग सुबह सवेरे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको बहुत बहुत प्यार। और आज के इस कार्यक्रम में जी हाँ, माला सुमारो जी, आपका प्यार भरा मैसेज बहुत ही सुबह सवेरे 6 बजे बिना चूके आ जाता है। काटोबोन से आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ जी हाँ, यहाँ पर एक और प्यारा सा मैसेज अभी पहुँचा है विश्वानी दुमन का, जैसे कहते हैं ना गर्मा गर्म मैसेज, बिल्कुल गर्मा गर्म मैसेज। विश्वानी दुमन, आप हमारा साथ दे रही हैं वाकवा से, और हमेशा मुस्कुराते हुए आप साथ देते रहते हैं, आपको भी कहेंगे शुभ दिन। और यहाँ नवीन लक्ष्मण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चित्रा जी के साथ रोजबेल से, और बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे क्योंकि आज आपकी शादी को 41 वर्ष हो चुके हैं और आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय रहे। अपनों का प्यार और आशीर्वाद आप प्राप्त करें, और बिल्कुल आपकी दो प्यारी बेटियां दिव्या और अंबिका हमेशा साथ देती हैं। साथ ही साथ आपके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली आप अपने आप को मानते हैं क्योंकि आज स्वामी शिवानंदा आपके जो गुरुदेव हैं उनका भी जन्मदिन है। बिल्कुल स्वामी शिवानंदा ऑफ डिवाइन लाइफ सोसाइटी के जो गुरु हैं वे भी आज अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो चलिए उनके सभी भक्त गणों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। साथ ही साथ आपका परिवार हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है, मेबक से निवेदित और सच्चिदानंद जी, ललिता और धनराज चरण जी है मोडालबेयर से उनकी प्यारी बेटी स्वीटी के साथ, राज और अमृता ओबिलक न्यू ग्रोव से, और रमेश और प्रीति जी हमेशा की तरह साथ दे रहे हैं घोंबुआ से। फ्लोगयाल से जुड़ी हुई हैं माधुरी जी, साथ ही साथ घोंगुब से हैं श्यामा रघुनंदन जी। श्यामा जी आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बिल्कुल हुनरबाज आपका जो कार्यक्रम था बहुत ही लाजवाब, और बहुत सारे लोगों ने आपको बधाइयाँ दी हैं इसके लिए हम भी दिल से आपको थैंक यू कहेंगे। और साथ ही साथ आपके भाई भैया जयप्रकाश, भाभी हैं नम्रता, केशव और युधीश साथ दे रहे हैं, और आपकी दो प्यारी सखियाँ विश्वानी जी और वीना रामफल भी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच, साथ देते रहिएगा। यहाँ पर लक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बॉम्बू से, अक्षय और आशनी उनके दो प्यारे बच्चों के साथ, शोभा जी वाकवा से साथ दे रही हैं, अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्णवी साथ दे रहे हैं, प्रेमिला जयमंगल और वीना जी आपकी प्यारी बहन, और सखी है राधा बाल गोविंद जो मोचीदा से हमेशा साथ देती हैं। नोएल फॉन्स से जुड़ी हुई हैं गायत्री जी, बेटा अजय, मामी है कल्याणी मोहन मेबग से, भाभी है शकुंतला मोताईलोंग से, और आपकी प्यारी सखी गीता बाई नोएल फॉन्स से। अनीता लाल जी आप भी जुड़ चुके हैं मोडालबेयर से, गोगा परिवार, ऋतु परिवार, नागेश्वर परिवार के साथ आप भी हमेशा साथ देती हैं। घोंबुआ से शिवरानी जी भी जुड़ चुकी हैं, और आपके सभी सुनाही परिवार का नाम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे, और आपके प्यारे बेटे काटोबोन से हैं पंडित सुधीर शर्मा सुनाही, साथ है उनकी प्यारी पत्नी रोशनी, बेटे हैं शिरीष, बहू शिखा, और साथ है नाती शिवान, साथ ही साथ आपके बेटे हैं राज और आरती जो है घोंबुआ से, उनके बेटे यश, बहू अंजलि और बेटा कबीर, आपकी प्यारी बेटी शर्मिला सीचन काटोबोन से, उर्वशी रघुबा, आपकी प्यारी नातिन, आपके प्यारे भैया है उमाकांत दीपचंद जो है बुबासन से, और आपकी प्यारी बहन कृष्णा कुमारी गौरीशंकर जो हमेशा यूके से साथ देती हैं। वाकवा से जुड़े हुए हैं नलिनी जोखन, थैंक यू सो मच हमेशा की तरह साथ देने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल महंती शिवरतन जो है काटोबोन से, आप भी पुराने गानों को बहुत बहुत पसंद करती हैं, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल लक्ष्म सिंह गोबिंद जी आपका हमेशा मैसेज आता रहता है, थैंक यू अगैन। वेडें से अमृता गंगू भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, क्लाविच से हैं विजय बंधन, उनकी प्यारी पत्नी रेखा, आप तीन प्यारी बहनें चंदनी, बिंदु कुमारी, और आपके सभी दोस्त काम पर से बहुत ही प्यार से दिलचस्पी के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से जुड़ी हुई हैं शीला जी पति साजन के साथ, वेजपुस से है उदय जी, प्यारी पत्नी संगीता, दो प्यारी बेटियाँ स्मृति और कीर्ति, और बिल्कुल कीर्ति अपना जन्मदिन मनाएंगी 13 तारीख को यानी कि संडे, उनके प्यारे पति हैं नागेश और कुराग परिवार जो बिल्कुल गणेश स्थापना करेंगे उसी दिन को, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की। और साथ ही साथ आपकी संधन है ज्योति और समधि जी हैं सुनील जो हैं बुआशेरी से, प्यारा नानू केयांश के साथ, सुदेवी जी मौका से साथ दे रही हैं आपके प्यारे पति और बच्चों के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। घोंबुआ से लीलो जी भी हमेशा साथ देती हैं, आपकी प्यारी बहन है मानती जो इस वक्त आपके यहाँ आई हुई है, चलिए एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा स्टे। और बुआशेरी से

जुड़ी हुई हैं। लीला जी कहती हैं कि बौशेरी में तो बड़ी ठंड है, बड़ी हवाएं बह रही है, बिल्कुल ये नज़ारा सभी ओर है, आपके यहाँ कुछ ज़्यादा। पोफेया से गीता जी भी जुड़ चुकी हैं प्यारे पति रोहित के साथ, तीन प्यारे नाती आदित्य, आरव और तनिष, और साथ है आपकी प्यारी परी जैसी जानवी, और आपकी तीन प्यारी बहुएं, तीन प्यारे बेटे। न्यू ग्रोव से आपकी प्यारी बहन नीला का जन्मदिन है 10 तारीख को यानी गुरुवार को, तो चलिए एडवांस में नीला जी को हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे। नानी जी प्लेन मायों से साथ दे रही हैं, और आपने तो भाई क्या बात कह दी कि तलत महमूद का गाना चलाकर ऐसा लगता है मानो लॉटरी लग गई। चलिए आपका दिल खुश हुआ, हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा। आशा जानू आप भी हमारे साथ कॉटेज से जुड़ चुकी हो जानू, और ममा कुमारी साथ है, शुभम, ऋषभ, आपकी प्यारी बहन आरती, और जीजू है राज। सुधा जी को मॉडल से आपके साथ भी हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप भी पुराने गीतों की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, चलिए अच्छा लगता है जब आप गीतों की प्रशंसा करती हैं। सूरज शर्मा सजादा हमारे साथ है त्रियोले से, प्रेमिला सी गुलाम कौंडमास से, रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार ग्रीष्मा फ्लाक से, अनसुया राम खिलावन जो है त्रियोले से, हाईलैंड से उषा जी, कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ, नीता जी आप भी हमारे साथ हैं सहजुलिया विलास से, नीता खेदनी आपकी प्यारी सखी स्वादिका के साथ और सभी खेदनी परिवार, घों बुआस माफ कीजिएगा लिस्ट पे गौस्त्री बुशे से किरण बारोट और उनकी प्यारी पत्नी नम्रता जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और हमें फोटो भेजकर कहती है गोंद के लड्डू बनाए हैं। ऐसा मत करो, आप हमें फोटो भेजते हो खाने पीने के और हमारे पेट में चूहे कूदना शुरू हो जाते हैं, बहुत बहुत प्यार आपको। और नुवल फॉन्स से यहाँ मानती जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, दो प्यारी बहनें अनंती और आरती, साथ है गिरीशा, मितिशा, उर्वशी, अनुषा, भव्य, पुष्कल और हितांशु। देवी जी आपका भी प्यारा सा मैसेज, और गीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है मोताइलोंग से, गायत्री जी हमेशा पिची व्याजे सैपिया से साथ देती हैं, वे भी पुराने गीतों की बहुत ही प्यार से शौक रखती हैं सुनना, तो चलिए एक आपके लिए बहुत ही अनसुना सा गाना हम लेकर आए हैं, आशा करते हैं ये गाना भी आपको पसंद आएगा, और इसी के साथ अभी मिलेंगे थोड़ी ही देर में, हम आपसे फिर से बातें करेंगे हमारे अगले सेगमेंट में, एक छोटी सी मुलाकात भोजपुरी समाचारों के बाद। वैसे तो बताना ही भूल गए कि ये जो अगला गाना है आशा ताई की आवाज़ में, और फिल्म है ठाकुर जरनैल सिंह।

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्ते और सलाम, फजर के 8 बजलबा। आवाज़ समाचार सुना जा। मरीस में आज फजर 10 बजे से 4 से 6 मीटर लहरें उठे के चेतावनी बातें। कल बीफे शाम 4 बजे ले ई हालत बरकरार रहेला। एकर अलावा मस्केरिंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड के लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ेला, जिकर कारण मुरीस में तेज़ हवा चलाता और ठंड महसूस करता। समुंदर के मौज से साहिली इलाका में बाढ़ के उतरे के खतरा बाती। मुरीस के तरफ इतिहाद एयरवेज के उड़ानें भरने खातिर बातचीत कर जात बातें। काफ़ी वक्त से अबू धाबी के सरकार मुरीस में ई विमानन सेवा देवे के इरादा जाहिर कर जात बातें। ई नवा हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क के बहुत फ़ायदा होल बा। पर्यटक के आमद में बढ़ोतरी के अलावा देश के विजिबिलिटी बढ़ाता। आज फौजलावाल के मकबरा ले तीर्थ यात्रा कर जाल बाते। गरीब के मसीहा के रूप में मुर्शिद पधारे जागदेजगे लावाल के श्रद्धांजलि अर्पित करे खातिर देश के चार कोनों से लोग सैकवा जाल बाते। पेशे से डॉक्टर 1841 में फौजलावाल मोरिस पहुँचे। उ हमेशा तंग दस्त खातिर काम करेला। पोप जॉन पॉल द्वितीय ओकर 1979 में आशीर्वाद देलेबा। आज रात 8 बजे विशेष प्रार्थना सभा लगेला। विदेश में दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्य निकेतन इलाका में 5 मंजिला इमारत ढह गल बाते। पुनर्निर्माण कार्य करल जात बाते। जेके हादसा के प्रारंभिक वजह समझी जाल बाते। 7 जना के मौत हो गल बाते। द ई रहर समाचार। नमस्ते और सलाम।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

मरनी के खबर सुने जा आप्यारो देखवाइयों में चार कोरी आठ बरिस के कतों में बीतों श्रीमती मुनबसिया दारिमदौ श्रीमती मुनबसिया दारिमदौ जिन धर्मावती के नाम से जस्ती जाने जातरलन गुजर गलहवन इनकर माती आज दो बजे इनकर बेटा अजय रामोतौ के घरे आप्यारो देखवाइयों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कत्र कोको के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 2 PM रॉयल रोड मोताबा में 3:09 के 69वां श्रीमती तारामती सिचन श्रीमती तारामती सिचन पैदाइश नाम मुलू जन शेला के नाम से जस्ती जाने जातरलन गुजर गल हवन इंकर माती आज तीन बजे इंकर पति धर्म सिचन के घरे रॉयल रोड मोताबा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताबा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डे एट 3 PM बागेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव में 3:11 के 71वां श्री लक्ष्मण मालू श्री लक्ष्मण मालू जन राजा राम के नाम से जस्ती जाना जातरा लन गुजर कर हवन इंकर माती आज दो बजे इंकर घरे बागेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव से उठा के अंतिम संस्कार खातिर माघी जानी गुजबल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डे एट 2 PM बेकरी रोड से कॉन्स्टेंस सैं पिया में 2:18 के 58वां श्रीमती दंदरानी जगरूप श्रीमती दंदरानी जगरूप पैदाशी नाम त्रिभुवन जिन संगीता के नाम से जस्ती जाना जातरा लन गुजर गल हवन इंकर माती आज तीन बजे इंकर बेटा विजय जगरूप के घरे बेकरी रोड से कॉन्स्टेंस सैं पिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर से कॉन्स्टेंस सैं पिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डे एट 3 PM रॉयल रोड बेलवेडिया में 1:14 के 34वां श्री एमान नंदलुल जिन जापों के नाम

सजस्ती जान जात्रालन गुजर गल हवानी करमाती आज 12:00 आज 12:00 करमा चंद्रावटी नंदलोल के घरे रॉयल रोड बिलवेडिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौंडी मास के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 जानेट स्ट्रीट विलमिया का चिमिलिटिया में 4 करोड़ 3 बरिस के 83 श्रीमती सूर्या कीर्ति रामफल पैदाशी नाम जकुरी गुजर गल हवन इन करमाती आज 11:00 आज 11:00 कर बेटा बिदत रामफल के घरे जानेट स्ट्रीट विलमै कौथी मिलितिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर विलमै के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM सिमंथन रोड प्लैंडी पापाई में 3 करोड़ 17 बरिस के स्वसंजी से तो श्रीमती सिरीमती सितलू पैदाशी नाम सिरतन जन्माला सितलू के नाम से जस्ती जाना जातरलन गुजर गल हवन इंकरमाती आज 1:00 करपति सतदेव सितलू के घरे सिबंधन रोड प्लैंडी पापाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लैंडी पापाई के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM रिवालों रोड क्रेवकुआ में 4 करोड़ 1 बरिस के 81 श्रीमती धनवंती बलदाओ जन कलावती के नाम से जस्ती जाना चात्रलन गुजर गल हवन इंकरमाती काल 3:00 कर बेटा सुनील महादेव के घरे रहीवालों रोज क्रेवकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर क्रेवकुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुमोरो एट 3:30 PM रॉयल रोड मोतीदा में 3 करोड़ 5 बरिस के 67 श्री विनोद रामतोहल जिन विनोद के नाम से जस्ती जाना चात्रलन गुजर गल हवन इंकरमाती आज 4:00 इन कर घरे रॉयल रोड मोचीदा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौली मास के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM लाबुडोनी रोड मेबर्ग में 4 करोड़ 9 बरिस के 81 श्रीमती माहित्री तिलक पैदाशी नाम तिलवा जिंदादी मानती के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजर गल हवन इंकरमाती आज 1:00 कर घरे लापूडोनी रोड मेबर्ग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तोम्बो मेबर्ग के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM शिवाला रोड थ्रियोले में 3 करोड़ 10 बरिस के 67 श्रीमती अनीता जगलुल पैदाशी नाम कांधाई जन हमनी के साथी सचिन जगलुल के माँ रहलन गुजर गल हवन इंकरमाती आज 10 बजे इन कर घरे शिवाला रोड त्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तेमिनुस त्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM रॉयल रोड श्वाजी बेजुकाप में 3 करोड़ 17 बरिस के 67 से तो श्रीमती राजिका हरी पैदाशी नाम इसराम गुजर गल हवन इंकरमाती आज 11:00 इंकरपति दयानंद हारी के घरे रॉयल रोड श्वाजी बेजुकाप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैमोते बेजुकाप के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM रॉयल रोड ग्रांड पॉइंट पीमो में 2 करोड़ 9 बरिस के 49 श्री मनोज सिचन जनचुना के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजर गल हवन इंकरमाती आज 10 बजे कर घरे रॉयल रोड ग्रांड पॉइंट पीमो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पॉइंट बीश के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM सीताराम लेन लावांचुआ में 3 करोड़ 10 बरिस के 67 श्री सुखदेव घुनरारी जिन टॉम्पलिया के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजर गल हवन इंकरमाती आज 12:00 इंकर घरे सीताराम लेन लावांचुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावांचुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 एवेन्यूलिए रोजिल में 4 करोड़ 3 बरिस के 83 श्रीमती सईवामी रामसामी पैदाशी नाम कुरुबदास जन आलिया पुष्पा के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजर गल हवन इंकरमाती आज 1:00 इंकर घरे इनकर बेटा वेला रामसामी के घरे एवेन्यू ओलिए रुजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 12:01 PM सिबारत लेन फ्लोरियाल में 3 करोड़ 14 बरिस के 67 श्रीमती दमायंती सिबरत पैदाशी नाम बसावान जन सरोज के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजर गल हवन
इंकर माती आज 3 बजे, आज 3 बजे इंकर पति नन

0: अस्सी बरत के घर अस्सी बरत लेन फ्लोरियाल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आदि भैया फ्लोरियाल के शमशान भूमि ले चावल जाए क्रिमेशन टू दी एफ्री पी एम। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने संवेदना प्रकट कर थे जा पाते।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

0: एमपीसीच्यावतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर.
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर. एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर.
3: आठ बजकर 18 मिनट और ये है मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण. पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं. माइक पर आपका साथ दे रही हैं रत्ना और इस अगले सेगमेंट में हम आए हैं आज की एक छोटी सी मुलाकात आपकी करवाने आशा ताई के साथ. आशा भोसले कह लो या आशा मंगेशकर, बिल्कुल भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी पार्श्व गायिका जिनका आज जन्मदिन है. जी हाँ, 8 सितंबर 1923 में, माफ कीजिएगा 1933, जी हाँ 1933 में उनका जन्म हुआ था. और इसी वर्ष यानी 12 अप्रैल 2026 में 92 वर्ष की आयु में उन्होंने ली अपनी अंतिम सांसें. हिंदी फिल्म जगत या बॉलीवुड इंडस्ट्री कह लो, एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ी खोट. लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री आशा मंगेशकर ने फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 15,000 से 16,000 गाने गाए हैं और उनकी आवाज़ के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेज़ी और रूसी भाषा के भी गाने गाए हैं. और आशा भोसले ने अपना पहला गीत 1948 में सावन आया फिल्म चुनरिया में गाया. चलिए आज उनकी जीवनी पर आपकी आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं. और आशा जी की कुछ ऐसी अद्भुत विशेषताएं हैं जो इन्होंने शास्त्रीय संगीत, गज़ल और पॉप संगीत हर क्षेत्र में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है. और

एक समान सफलता पाई है। साथ ही साथ उन्होंने आर डी बर्मन के साथ दूसरा विवाह किया था। आशा भोसले का जन्म जो है वो 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक मराठी परिवार में हुआ और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक एवं नायक थे, जिन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में ही आशा को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। और आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थी, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मरणोपरांत इनका जो परिवार है पूना से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। परिवार की सहायता के लिए आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाने गाए और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। 1943 में इन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म माजा बाड़ में उन्होंने गीत गाया था और ये गीत चला चला नवबाड़ा दत्ता डावजेकर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। और 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया का गीत सावन आया, ये हंसराज बहल के लिए उन्होंने गाया था। और दक्षिण एशिया की प्रसिद्ध गायिका के रूप में आशा जी ने बहुत सारे गाने गाए। साथ ही साथ फिल्म संगीत की बात करें, फिल्म जगत की बात करें, तो पॉप, गजल, भजन, भारतीय शास्त्रीय संगीत और क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत और नजरूल गीत इनके गीतों की लिस्ट में सम्मिलित हैं। इन्होंने 14 से भी ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं, मराठी, आसामी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मराठी, बंगला और साथ ही साथ गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, अंग्रेजी, रशियन, जाइस, नेपाली, मलई और मलयालम, यानी 12,000 से भी अधिक गाने इन्होंने अन्य भाषाओं में गाए हैं। और महान गायक किशोर कुमार आशा जी के सबसे मनपसंद गायक थे। और साथ ही साथ जब हम उनके विवाह की, उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें, तो 16 वर्ष की आयु में ही अपने 31 वर्षीय प्रेमी गणपत राव भोसले के साथ उनका घर से उन्होंने पलायन करके पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध उन्होंने विवाह किया था। इस कारण उनके जो संबंध थे उसमें काफ़ी दरार आ गई थी। गणपत राव लता जी के निजी सचिव थे, यानी उनके सेक्रेटरी थे, और वो विवाह असफल रहा। पति एवं उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण इस विवाह का अंत हुआ। 1960 के आसपास विवाह विच्छेद के बाद आशा जी अपनी माँ के घर 2 बच्चों और तीसरे गर्भस्थ शिशु जिनका नाम था आनंद, उनको लेकर वे अपनी माँ के पास लौट आई। 1980s में आशा जी ने सचिन देव बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन से दूसरा विवाह किया और वो विवाह आशा जी ने राहुल देव बर्मन के अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। आशा जी का जो घर है वो दक्षिण मुंबई में पाया जाता है, पेडर रोड क्षेत्र में प्रभु कुंज अपार्टमेंट में स्थित है और इनके 3 बच्चे हैं, साथ ही 5 पौत्र भी हैं और इनका सबसे बड़ा लड़का हेमंत भोसले। हेमंत ने पायलट के रूप में अधिकांश समय बिताया है और साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि आशा जी की बेटी जो हेमंत से छोटी थी, उनका नाम वर्षा, और वर्षा ने द संडे ऑब्जर्वर और रेडीफ के लिए कॉलम लिखने का काम किया। और आशा जी का सबसे छोटा पुत्र आनंद भोसले, आनंद ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की। आनंद भोसले की आशा के करियर की इन दोनों देखभाल को वो देखभाल करते थे। और हेमंत भोसले के सबसे बड़े पुत्र चैतन्य बॉय बैंड के सफल सदस्य के रूप में विश्व संगीत से जुड़े हुए हैं। वैसे आशा जी का परिवार जो है वो बहुत ही काफी जाना पहचाना परिवार। जब आशा जी की हम बात करते हैं तो वैसे 1948 में उन्होंने अपना पहला गायन गीत गाया था, पर उनका जो सफर है वो काफी संघर्ष से भरा।

एक समय जब प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का जमाना हुआ करता था, चारों ओर बस इन्हीं का बोलबाला था। आशा जी गाना चाहती थी पर इन्हें गाने का मौका तक नहीं दिया जाता था। आशा जी सिर्फ दूसरे दर्जे की फिल्मों में गाना गा पाती थी। 1950s के दशक में बॉलीवुड के अन्य गायकों की तुलना में आशा जी ने कम बजट की बी और सी ग्रेडेड मूवीज में गाने गाए। उन्हें गायकी में अपना कदम जो जमाना था, इनके गीतों को संगीतकार ए आर कुरैशी और अल्लाह रखा खान, सज्जाद हुसैन और गुलाम मोहम्मद थे जो काफ़ी असफल थे उस ज़माने में। 1952 यानी 1952 में दिलीप कुमार साहब अभिनीत एक फिल्म आई थी संग दिल, जिसके संगीतकार थे सज्जाद हुसैन साहब, और इस फिल्म के गीत के द्वारा उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप ये भी हुआ कि बिमल रॉय ने उनको एक और मौका दिया अपनी फिल्म परिणीता में, जो आई 1953 में। फिर उसके बाद राज कपूर साहब के लिए उन्होंने गाना गाया था, शायद आपको याद होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे, और इसके लिए मोहम्मद रफी के साथ फिल्म बूट पॉलिश में भी उनको मौका दिया गया। बूट पॉलिश के लिए अनुबंधित किया, जिसने काफी प्रसिद्धि आशा जी को दिलाई, और ओपी नैयर साहब ने आशा जी को बहुत बड़ा अवसर सीआईडी फिल्म के लिए दिया। चलिए बातें तो हम करते ही जाएंगे, बूट पॉलिश का ये प्यारा सा गीत, इसकी छोटी सी इसका छोटा सा मुखड़ा आपको सुनाते हैं।

0: उनकी आवाज में वो नटखटपन नजर आता था और बिल्कुल ओपी नैयर साहब ने उनको सीआईडी फिल्म के लिए भी इसीलिए ही कास्ट किया था क्योंकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी गीता दत्त से।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार
0: पर यहाँ पर भी उनका संघर्ष फिनिश नहीं हुआ था क्योंकि उनको गाना तो दिया गया लेकिन काफी समय पर कहते हैं ना कि कई बार ऐसी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है जब आप बिल्कुल राइजिंग स्टार हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और इस प्रकार 1957 में फिल्म आई नया दौर, जहां बीआर चोपड़ा साहब ने बिल्कुल नैयर साहब के साथ इस पर संगीतबद्ध किया था और आशा जी को बीआर चोपड़ा से

0: हाँ?
1: बिल्कुल, सहारा तो उनको दिया गया इस फिल्म के गीत के बाद। इस साझेदारी ने कई प्रसिद्ध गीतों को जनमानस के बीच लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फिर सचिन देव बर्मन और रवि जैसे संगीतकारों ने भी आशा जी को मौका देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, 1966 में संगीतकार आर डी बर्मन की सफलता भरी मूवी जो थी तीसरी मंजिल में आशा जी ने आर डी बर्मन के साथ काफी प्रसिद्ध बटोरी। और सच में इस फिल्म के गीत जो थे वो सच में लोगों को इस कदर पसंद आने लगे, तब जाकर कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये पता लगने लगा कि आशा जी की जो आवाज़ है वो ना केवल हल्के फुल्के गाने पर साथ ही साथ कैबरे जैसे गानों के साथ साथ बहुत सारी लचक भरी आवाज़ उनके फोटे में पाई जाने लगी। और बिल्कुल, तीसरी मंजिल का ये गाना भी कितना मशहूर हुआ था।

भाई बिल्कुल उनकी खोज जो है वो यहां से समाप्त हुई, क्योंकि अब उन्हें नहीं ढूंढना पड़ता था प्रोड्यूसर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स, अब ढूंढते थे आशा जी को। और 1960s और 1970s के बीच प्रसिद्ध डांसर हेलन की आवाज बनी आशा जी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आशा जी गाती थी तो हेलन रिकॉर्डिंग के समय मौजूद रहती थी ताकि गानों को वे अच्छी तरह से समझ सके और अच्छी तरह से उस पर वो डांस डेपिक कर सके। और आशा जी और हेलन के प्रसिद्ध गानों में भाई पिया तू अब तो आ जा, ये वाला गाना कितना ज़्यादा मशहूर हुआ था ये तो आप जानते ही होंगे। और साथ ही साथ ये वाला जो गाना अभी हम जो चला रहे हैं, ओ हसीना जुल्फों वाली तीसरी मंजिल का ये गाना, साथ ही साथ डॉन का गीत ये मेरा दिल, इसमें बिल्कुल शामिल थे।

बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री ने उनको इतने सारे नजराने दिए गीत के रूप में और उनको मौका दिया गया कई सारी ऐसी फिल्मों में गाना गाने के लिए। 1981 में शायद आपको याद होगा आई थी फिल्म उमराव जान, जिसमें एवरग्रीन रेखा नजर आई थी और इस फिल्म में भी उनकी उनका जो अंदाज था, बिल्कुल ये जो गाना अभी आप सुन रहे हैं कैबरे टाइप गाना, और उसके बाद जब कहते हैं कि उस जमाने में कोर्ट रूम में गाए जाते थे ऐसे गाने, उस दौर में ऐसे गीतों को भी दर्शाना एक तरह से उनकी आवाज को लेकर, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह का परफॉर्मेंस दिया था। और बिल्कुल 1981 में जब उमराव जान जैसी फिल्म आई, साथ ही साथ इजाजत फिल्म आई थी 1987 में, जिसमें पारंपरिक गजल के रूप में उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए। आइए आपको एक झलक सा, एक बिल्कुल मुखड़ा सुनाते हैं फिल्म उमराव जान का।

गई तन्हा तो वो लोग रहने लगे जिन्होंने ठुकराया था आशा जी को, और बिल्कुल बहुत सारे आलोचकों का करारा जवाब था ये गाने, और अपनी गायन प्रतिभा का लोहा मनवाया। और इन्हीं दिनों इन्हें उपयुक्त दोनों फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मिला, यानी हम बात कर रहे हैं

1981 में आई फिल्म उमराव जान और इजाजत जो आई थी 1987 में। और लाजवाब बात तो ये है कि उमराव जान में भी ये गाना फिल्माया गया था रेखा पर और इजाजत में भी यही पारंपरिक गजल फिल्माई गई थी रेखा जी पर।

भाई एक बार आगे बढ़ गए, फिर लौटना क्या, फिर पीछे पलट कर देखना क्या। आशा जी 1990s तक लगातार गाती रही और 1995 की हिट फिल्म रंगीला से एक बार फिर उन्होंने दूसरी पारी का आरंभ किया। 2005 में उनको 72 ईयर्स हो चुके थे और तब उन्होंने तमिल फिल्म चंद्रमुखी और साथ ही साथ पॉप संगीत लकी लिप्स के लिए, जिसमें लकी फिल्म में नजर आई थी वे अभिनेता, बिल्कुल उनके साथ एक बहुत ही यंग उभरती हुई कलाकार, जो बहुत ही यंग एज में सलमान खान के साथ उन्होंने ये फिल्म की थी। और इस गीत के लिए बिल्कुल लकी लिप्स, जब वो 72 ईयर्स की थी, ये गाना उन्होंने एक बहुत ही छोटी एक्ट्रेस के लिए गाना गाया था।

0: भाई उनके कौन से गाने चलाए कौन से ना चलाए, हम तो यही उलझ में पड़े हुए हैं क्योंकि इनके इतने सारे गाने हैं कि एक छोटे से सेगमेंट में इन सारे गीतों को समेटना या आपको सुनवाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और बिल्कुल जब 90s का दौर चल रहा था तब उन्होंने एक रीवैम्प बिल्कुल एक एल्बम बनाया था राहुल एंड आई, जिसमें बिल्कुल आशा जी ने गाना गाया था और म्यूज़िक निर्देशन जो था डेफिनेटली आर डी बर्मन साहब का था। वैसे बहुत सारे ऐसे गाने जो रीवैम्प किए गए, यानी पुराने गानों को एक नए ही अंदाज में बिल्कुल फिर से सजाया गया।
1: Yo, India.

रंग ही कुछ ऐसा जमाया कि सब रंगीले हो गए उनके गीत के दीवाने। और बिल्कुल आज आशा ताई का जन्मदिन है और 92 इयर्स की उम्र में उन्होंने ली हमसे विदा। और फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक की बात करें तो 1968 में उनको दिया गया फिल्म 10 लाख के लिए गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। 1969 में पर्दे में रहने दो फिल्म शिकार। 1972 में आई फिल्म कारवां। बिल्कुल पिया तू अब तो आ जा। 1973 में दम मारो दम इस गीत के लिए। 1974 में नैना होने लगी है रात। 1975 में प्राण जाए पर बचन न जाए। 1979 में फिल्म डॉन और कई सारे ऐसे पुरस्कार उनको प्राप्त हुए। स्पेशल अवार्ड उनको दिया गया रंगीला फिल्म के लिए जिसका गीत हम अभी चला रहे हैं। 1995 में ये मूवी आई थी पर इसका अवार्ड दिया था उनको 1996 में। 2001 में उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। साथ ही साथ नेशनल फिल्म अवार्ड उनको दिया गया 1981 में फिल्म उमराव जान के लिए। 1986 में इजाजत मूवी के लिए। अन्य यादगार पुरस्कार ये भी थे कि उनको 1987 में नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड इंडो पाक एशियन यूके द्वारा दिया गया था। और 1989 में लता मंगेशकर अवार्ड प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 1997 में स्क्रीन वीडियो कॉन अवार्ड जानम समझा करो गाने के लिए। 1997 में एमटीवी अवार्ड। 1997 में चैनल वी अवार्ड। 2002 में सेंसुई मूवी अवार्ड। 2003 में साथ ही साथ उनको एमटीवी इमेज बेस्ट फीमेल पॉप के लिए भी अवार्ड प्राप्त हुआ। वैसे तो अनगिनत अवार्ड उनको प्राप्त हुए पर इनका ये लास्ट गाना हम आपको पूरा सुनवाना चाहते हैं और ये है आज जाने की जिद ना करो। इस गीत ने बिल्कुल सभी के आंखों को नम किया और इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देंगे। आशा करते हैं ये छोटी छोटी जो जानकारी आशा जी की, वैसे तो इस छोटे से सेगमेंट में पूरा वाइंड अप करना बहुत मुश्किल पर दिल से बस आज जाने की जिद ना करो।

0: भाई जीना तो हर कोई चाहता है, पर जब जाने का समय होता है तो हमारी थोड़ी चलती है। चलिए इसी के साथ एक श्रद्धांजलि के रूप में आज के इस कार्यक्रम को हम आशा जी के सभी फैंस को डेडिकेट करते हैं। और इसी के साथ चलिए समय हो चला है किरण जानकी जी के साथ जुड़ने का हमारी धरोहर कार्यक्रम में। और बिल्कुल इसी के बाद
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। 8 सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मतलब कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनावल जाला। पढ़ला और लिखला सब कोई खातिर एगो बड़ा उपलब्धि है, लेकिन आज भी करोड़ों बड़ा आदमी और नौजवान लोग भी ई गुण और इस सुविधा से दूर हवन जा। 1967 से इंटरनेशनल लिटरेसी डे दुनिया भर में मनावल जाला, जनता के शिक्षा लिटरेसी के बारे में जागरूक करे खातिर, ई एहसास दिलावे खातिर कि साक्षरता यानी पढ़ला लिखला आत्मसम्मान और मानवाधिकार के दृष्टि से कितना जरूरी बा, और पढ़ाई लिखाई एगो शिक्षित और सस्टेनेबल समाज खातिर बहुत जरूरी बा। चाहे कितना प्रगति हो गल बा दुनिया में, लेकिन आज भी 773 मिलियन जना पढ़े लिखे नहीं जाने लंस ई दुनिया में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 1.5 मिलियन किताब बा का ई आप जानत रहला, और ई धरला 46 किलोमीटर के दूरी के फासला से की तय करे। और एकर मकसद यही है कि सब कोई सकी ई सब किताब में से कम एगो के पढ़े। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर यूनेस्को के जो महानिदेशक हवन उ बोलन कि जहाँ आदमी लोग एगो ऐसन दुनिया कायम करे चाहत हवन जा, जहाँ पर शांति रही, जहाँ पर प्रगति रही, हुआ पर पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है। और ई दिन उ सब शिक्षित जना से मांग उ करत हवन कि उ लोग अपन सब संसाधन, अपन सब रिसोर्स और इन्वेस्टमेंट, अपन निवेश दुगुना करियन जा, ताकि हर एक जना के सकल जाए पढ़ावे और लिखावे। और ई खातिर डिजिटल शिक्षा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करे के भी सिखैला बहुत जरूरी बा। जैसे देखले आवत है जा हमनी के देश जोन की एगो छोटा टापू देश है, जहाँ पर सबसे जस्ती दूसर देश से आप्रवासी लोग आके यहाँ पर बसल हवन जा। ऐसन आप्रवासी लोग जे लोग के शर्तबन मजदूर के तौर पर आनल गल, जे लोग के गुलाम बना के आनल कर रहल, इ लोग के शिक्षा पर बहुत जोर देवल गल। और आज देखा ई शिक्षा पर इतना बल देवल गल, हर सरकार जनता के शिक्षित करे पर बहुत जोर दिले बा, सब सुविधा दिले आल बा कि आज मॉरिशस के जोन साक्षरता दर बा वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा है। और ई

0: जिस खातिर बहुत गर्व की बात है। और फिर उस सब व्यक्ति की चाहिए हमने के बधाई देवे के जे लोग बैठका जैसन अनौपचारिक स्कूल के स्थापना कर लन जा यहाँ पर जनता के शिक्षित करे के हर एगो कौम हर एगो समुदाय अपन सुविधा और अपन हिसाब से ई इनफॉर्मल स्कूल्स शुरू कर लन जा चाहे वो पूर्वीय भाषा के पढ़ाई ही कहे नहीं रही और हुए से शुरू होके पढ़ाई फिर ई औपचारिक रूप जब लेलक तो सब कोई के ई बात के ज्ञान रहल एहसास रहल कि चाहेला अपन घर के लड़का लोग के पढ़ावे लिखावे के। बल्कि प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदुयाल के ज़माना में जब एगो आंदोलन चलल रहल जन आंदोलन तो हुआ पर साक्षरता दर के ऊपर उठावे खातिर जनता सकी मतदान देवे इ खातिर जनता के साक्षर बनावे खातिर बड़ा आदमी लोग के हस्ताक्षर करे के सही करे के सिखावल गए तो इतना ज़रूरी है साक्षरता। साक्षरता के बिना यहाँ पर मॉरिशस में वोट देवे के भी इजाज़त नहीं रहल। और वो सब व्यक्ति के बधाई जे लोग अपन हिसाब से मुफ्त शिक्षा फ्री ट्यूशन देवे लंजा लड़का लोग के ताकि वो लोग सकियंजा पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। ऐसा ढेर शिक्षक बा जे लोग निःशुल्क शिक्षा फ्री ट्यूशन देवे लंजा। तो आज के दिन आप सब कोई के बहुत बहुत बधाई और उस सब बुजुर्ग लोग के भी बधाई जे लोग अधेर उम्र में भी शिक्षित हो के पूरा जतन करता वंजा। कार्यक्रम के ध्यान से सुन ला बहुत धन्यवाद नमस्ते।
1: चले एकर संगे किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा साक्षरता दिवस पर एगो बहुत बहुत बढ़िया जानकारी और बिस्वानी दीपवा के आवाज़ में रखल है गीत बहुत बहुत बढ़िया बा है ये पर आधारित एगो गीत और जरूर आप सबको के याद दिलावत है ये गीत हमने के जोड़ी 9 बजे के समाचारों के साथ। और 9 बजे के समाचारों के बाद हमनी के साथ दिए जा सुमिता सरकार आज की चर्चा कार्यक्रम में जेकर सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर और MBC के तीसरा चैनल पर तू सुने भी सकबा देखे भी सकबा। और इसी के साथ हमारी और आपकी अब मुलाकात होगी बिल्कुल 10 बजे के समाचारों के बाद। तब तक के लिए बस यूं ही साथ देते रहिए। नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 8 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं।

0: समाचारों को लेकर सुमेरा आ चुकी है। सुमेरा आपका स्वागत है।
1: नमस्कार आदाब। मुर्शिद में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी और इसके अलावा मस्केरेंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है और इसकी वजह से मुर्शिद में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। समुंदर की मौजों से साहिली इलाकों में बाढ़ के उतरने का भी खतरा है। ऋतु विज्ञान केंद्र सभी तरह की सावधानियां बरतने की मांग कर रहा है। मुर्शिद की तरफ इतिहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत की जा रही हैं। काफ़ी वक्त से आबू धाबी की सरकार ने मुर्शिद में विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई हवाई कनेक्टिविटी के जरिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदे होंगे। पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी के अलावा देश की विजिबिलिटी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। काफ़ी वक्त से पेंशन सुधार का मुद्दा देश में सुर्खियों में बना हुआ है। याद रहे कि जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लेगा। सरकार ये सुधार क्यों अपना रही है, एक व्यक्ति को किस उम्र से बेसिक पेंशन प्राप्त होगा, ऐसे ही कुछ सवाल आजकल मुर्शिदों के दिमाग में उठ रहे हैं। और मंत्री अविनाश राम तोहर ने स्पष्ट किया कि कैब दफ्तरों में मुर्शिदों को समझाने के लिए हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। इसके अलावा ऐप के ज़रिए भी मुर्शिद इसके बारे में पता लगा सकते हैं। मंत्री राम तोहर ने जोर दिया कि ये सुधार बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पुरानी पेंशन प्रणाली टिकाव नहीं थी। मुर्शिद में जुलाई 2026 तक मेथाडोन लेने वालों की तादाद में 8,118 रही है। मुल्क भर में 70 जगहों पर इन्हें प्रदान किया जा रहा है। ड्रग्नोशी के इलाज के तौर पर मेथाडोन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। इस प्रोग्राम की कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत सी चुनौतियाँ उभरती जा रही हैं, साथ में पारिवारिक भूमिका पर बहुत जोर दिया जा रहा है। आज फौजल आवाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मुर्शिद पधारे जाक देजिरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सेंट ख्वा जाएंगे। पेशिस डॉक्टर 1841 में फौजल आवाल मुर्शिद पहुंचे। उन्होंने हमेशा तंगदस्तों के लिए काम किया है और पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें 1979 में आशीर्वाद दिया था। आज रात 8 बजे खास महासभा सेंट ख्वा में लगाई जाएगी। विदेश में दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है और पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे थे, जिससे हादसे की प्रारंभिक वजह समझी जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई है और 12 लोगों को मलबों के नीचे से निकाला गया है। इमारत के मालिकों को गिरफ्तार भी किया गया। जाँच की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इमारत में हॉस्टल भी था। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार राधा। Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 8 सितंबर, आप सभी का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस समय हो रहा है रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं MBC के चैनल 3 पर, और साथ ही इसे आप फॉलो कर सकते हैं MBC प्ले ऐप पर भी। आप सभी को हम ये भी याद दिला दें कि इस कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट

0: अस्त जो है वो होगा आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, और साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर शाम के 4 बजे। तो चलिए आज की चर्चा, ये जो कार्यक्रम है आज पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस द्वारा जो भी कोर्सेज दिए जाते हैं उन पर आधारित होंगे। थोड़ी ही देर में हम जो है पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, और अभी के लिए ऐसा करते हैं एक छोटे से गीत के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। आप हमारा साथ यूं ही देते रहे, धन्यवाद।
1: Haldiram's vous souhaite une bonne journée. Haldiram's, the authentic taste of India.
2: Vous êtes connu qui m'en vit là? Un bon paneer butter masala avec un naan. Yummy! Tu connais qui me fait avec paneer, moi? Bonne brochette. Moumetzot mariné dans yaourt avec la poudre tandoori. Griller le barbecue, il est extra bon. Pati, qu'est-ce que tu as fait? Capable à faire avec naan et paneer? Frire, nature ou en bloc? Capable à préparer naan et paneer pour tout repas et pour tout ce qui ont envie manger. Naan et paneer, le vrai paneer fait avec du lait de vache frais.
3: So good, so pure, it's Nana.
1: Haldiram's vous souhaite une bonne journée. Haldiram's, the authentic taste of India.

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। और जैसे कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आज पॉलिटेक्निक जो है मॉरिशस से हमारे बीच कुछ रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं, वहाँ के लेक्चरर्स जुड़े हैं, और पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में जो भी कोर्सेज दिए जाते हैं उस पर ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। और ख़ासकर हम आज पॉलिटेक्निक्स के दो विशेष जो है क्लस्टर पर बात करेंगे। सबसे पहले तो होगा टूरिज़्म और साथ में आईटी। ये अपने आप में ऐसे जो है क्षेत्र है जो समय के साथ बहुत ही डेवलप हो रहे हैं और बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इसमें जो है हमारे स्टूडेंट्स को मिल रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में जो है इन सभी विषयों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटेक्निक से दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ है मिसेस दृष्टि बोनमाली पूरन जी, जो एकेडमिक अफेयर्स ऑफिसर है फॉर दी आईटी एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्लस्टर। दृष्टि जी, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सुमिता जी।
1: एंड देन वी हैव उर्वशी दुकन जी, जो है एसोसिएट लेक्चरर फॉर दी टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी लेजर एंड स्पोर्ट्स क्लस्टर। तो आपका भी स्वागत है उर्वशी जी।
2: धन्यवाद।
1: और अगर हम पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस की बात करें तो सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमारे श्रोता है, जो हमारे दर्शक है, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जो पहली बार के लिए पॉलिटेक्निक्स के बारे में सुन रहे हैं या जान रहे हैं, हम चाहते हैं उनको आप थोड़ा सा बताएं कि किन किन फील्ड्स में जो है पॉलिटेक्निक्स जो है कोर्सेज प्रोवाइड करता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: ठीक है। जो श्रोतागण के लिए नमस्कार। पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस का निर्माण 2017 में हुआ था। हमने शुरू की थी एक बैच नर्सिंग से और आज पॉलिटेक्निक में 6 फील्ड ऑफ स्टडी है, यानी कि क्लस्टर्स। पहला है वो नर्सिंग, आईटी, टूरिज्म, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंजीनियरिंग और कलिनरी आर्ट्स एंड कल्चर। तो पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के मॉरिशस में पांच कैंपसेस है और दो है रोड्रिक्स में। तो हम एक ऐसे टिबेट इंस्टीट्यूशन है जो फोर्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ टर्शियरी एजुकेशन। हमारे यहाँ वी प्रोवाइड कोर्सेज इन सर्टिफिकेट लेवल, डिप्लोमा लेवल और बीएससी लेवल पे। तो स्टूडेंट्स कैन एनरोल विथ ओनली फॉर्म 5 विथ पास, 3 क्रेडिट्स, 5 क्रेडिट्स एंड बियॉन्ड।
1: ओके, धन्यवाद इन सभी जानकारियों के लिए। उर्वशी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस की बात करें तो पॉलिटेक्निक्स का जो मॉडल है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से किस तरह से अलग है, खासकर प्रैक्टिकल लर्निंग को लेकर और बाद में जॉब फील्ड में जब जाते हैं बच्चे तो उसकी तैयारियों को लेकर।
3: तो जैसे कि दृष्टि ने कहा, हम शिक्षा मंत्रालय के अधीन में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक मॉरिशस की सबसे खास बात है हमारे मॉडल, हमारे शिक्षा मॉडल जो 4 हिस्से में बंटता है। तो एक है प्रैक्टिस बेस्ड इमर्शन, दूसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पोर्टफोलियो एंड पीयर टू पीयर लर्निंग। ओके, तो प्रैक्टिस बेस्ड इमर्शन से शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि विद्यार्थियों जो भी कक्षा में पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो ना सिर्फ कक्षा में सीमित होते हैं बल्कि वो जब काम के क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर भी वो इन सब को लागू कर सकता है। जब हम प्रैक्टिस बेस के बारे में बोल रहे हैं तो इसमें इंडस्ट्री विजिट भी आते हैं, ट्रेनिंग आते हैं, इंटर्नशिप आते हैं, शैडो प्रोग्राम आते हैं, प्लेसमेंट भी आते हैं।
1: ओके
3: ओके। और दूसरा है हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो विद्यार्थी अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, प्रेजेंटेशंस में काम करते हैं, असाइनमेंट्स में काम करते हैं। ये सब असाइनमेंट, तो उन्होंने जो भी कुछ सीखा है वो असाइनमेंट के दौरान उसको भी प्रैक्टिकल रूप से लागू करते हैं। ओके, तो जब हम प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं तो

0: ये ना सिर्फ रिटर्न प्रोजेक्ट होते हैं बल्कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं जो बहुत उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है,
1: यानी कि उनको ओवरऑल जो है तैयार किया जाता है.
0: Exactly.
1: मतलब कि हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों को, इसे प्रैक्टिकलिटी में जो है उतारने के लिए भी बताया जाता है. और साथ ही में जब आप जॉब सेक्टर में किस तरह से एंटर होते हैं तो किस तरह से जो है आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, इन सब पर भी आप जो है फोकस करते हैं. तो चलिए जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपको बताते हैं कि आज खासकर पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस की बात करें तो आज इनके दो क्लस्टर पर हम फोकस करेंगे, टूरिज़्म और आईटी. और ये दोनों ही क्लस्टर जो है अभी के जॉब सेक्टर की हम बात करें तो बहुत ही इमर्जिंग है, बहुत ही इन डिमांड है और बहुत से यंगस्टर्स जो है इसकी ओर काफ़ी आकर्षित होते हैं. तो उर्वशी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम टूरिज़्म के बारे में बात करें तो टूरिज़्म की बात आप बताइए कि टूरिज़्म से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज जो है पॉलिटेक्निक्स प्रोवाइड करता है.
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कोर्सेज के पहले कि जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो ना सिर्फ होटल्स की बात करते हैं बल्कि हमारे विद्यार्थियों वो अन्य क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइन कंपनीज. तो हमारे यहाँ तो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कोर्सेज भी हैं, टूर एंड ट्रैवल्स का कोर्सेज भी हैं, कलिनरी कोर्सेज भी हैं. तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स भी हैं जो लेजर एंड टूरिज़्म एंड लेजर के अंदर भी
1: आता है. बिल्कुल. तो चलिए टूरिज्म ही की बात करें तो उसके जो मेजर पिलर्स है मॉरिशियन इकोनॉमी में किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है और किस तरह से ये सेक्टर अपने आप में इतना लोगों को खासकर यंगस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है.
0: तो यहाँ पर देखा जाए तो टूरिज़्म एक अपने आप ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं. यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को वो सिर्फ ना सिर्फ अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं बल्कि उन उन उन लोगों से बात करते हैं, बात करने के दौरान जो भी स्किल्स हैं वो सब डेवलप करती हैं और इससे हम और भी ज़्यादा पर्यटक को आकर्षित
1: कर सकते हैं. बिल्कुल. हाँ, और कहीं ना कहीं मॉरिशस की बात करें तो टूरिज़्म सेक्टर इसका काफ़ी समय के साथ इवॉल्व हो रहा है, नई चीज़ें आ रही है. तो आई बिलीव जब आप इन सभी कोर्सेज के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चे भी नई चीज़ों को अपने जीवन में उतारते ताकि वह बेटर सर्विस जो है प्रोवाइड कर पाए. अब हम आते हैं दृष्टि जी आप पर, जो आईटी इस क्लस्टर के बारे में हमें जानकारी देंगे तो थोड़ा सा बताएं कि आईटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की जब हम बात करते हैं तो कौन से कोर्सेज जो है पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस प्रोवाइड करता है.
2: तो आईटी क्लस्टर में हम प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेट इन आईटी. शुरू करते हैं सर्टिफिकेट इन आईटी. जो स्टूडेंट जिनके पास 3 क्रेडिट नहीं होते हैं वो एक 5 पास से प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं. फिर डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में हमारे यहाँ डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी है, डिप्लोमा इन इमर्जिंग टेक है, डिप्लोमा इन बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिजनेस कंप्यूटिंग और डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, ग्राफिक डिज़ाइन, अन्य डिप्लोमा है. और आगे हमारे भी बीएससी प्रोग्राम है. हमने 2025 में एक कोलैबोरेशन किया था किंगस्टन यूनिवर्सिटी के साथ. तो वी हैव अ फ्री टॉप अप जिनके बारे में बाद में विस्तार से करेंगे.
1: बिल्कुल. और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल शायद कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो आईटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन बनता जा रहा है यंग जनरेशन के लिए मॉरिशस में. तो इस पर थोड़ा सा आप बताएं.
2: जैसे आपने कहा आईटी अब वो एक अलग सा इंडस्ट्री नहीं रहा, वो हर इंडस्ट्री से जुड़े हैं. और जब आईटी के बारे में बताएंगे तो आईटी में इनोवेशन नहीं हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन सा हो रहा है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई. और आईटी हमारे यंगस्टर जैसे हम जानते हैं वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ुद को मॉरिशस अपने आप को एक फिनटेक हब में रिपोजिशन कर रहा है. तो आगे में उसका एक मार्केट डिमांड है. तो यंगस्टर्स उन आईटी फील्ड में रह सकते हैं और उनका ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है. है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है पर ज़्यादा होगा आगे में,
1: आने वाले समय में. हाँ. बिल्कुल. और आईटी की अपने आप में जैसे आपने कहा कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिससे आईटी जुड़ा हुआ नहीं है और

0: यहीं पर टूरिज्म की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं आईटी किसी न किसी रूप में शामिल हो ही जाता है। चलिए उर्वशी जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, अगर हम टूरिज्म इस क्लस्टर की बात करें तो कौन से प्रोग्राम और स्टडी पाथवेज है जो करंटली अभी अवेलेबल है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्लस्टर में मॉरिशियस पॉलिटेक्निक्स मॉरिशियस में?
1: तो जब शुरुआत करते हैं तो वो सर्टिफिकेट से शुरुआत करते हैं, पर वहाँ ये सिर्फ एक शुरुआत है, वो वहाँ पर सीमित नहीं होते हैं। तो सर्टिफिकेट के बाद वो डिप्लोमा कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो ट्रैवल टूर्स हैं, जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हैं, कलिनेरी का है, स्पोर्ट्स और लेजर का भी है। और इसके बाद ऑफकोर्स ये स्टूडेंट जो हैं वो एक टॉप अप डिग्री भी कर सकते हैं और बाद में अपने करियर में और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि वक्त के साथ जो है डिमांड इतनी बढ़ते जा रही है कि ऐसा होता है कि एक समय एक स्टूडेंट अभी अभी जैसे कि एक डिग्री करके किसी सेक्टर में एनरोल हुआ है, फिर मांग के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उन्हें टॉप अप करने का भी ऑब्वियसली जो है ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में हमने देखा है कि काफ़ी सारे कोर्सेज आप इससे रिलेटेड भी जो है प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चों को आगे और जो है प्रोग्रेस करने में उनकी मदद करते हैं। चलिए टूरिज़्म से ही जुड़े रहते हैं। कहते हैं कि टूरिज़्म गोज़ फार बियॉन्ड वर्किंग इन होटल, इसके बारे में आपने थोड़ी देर पहले बताया भी, तो थोड़ा सा चाहेंगे कि विस्तार से इस पर आप रोशनी डालें।
1: तो जब हम टूरिज्म के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा वो सिर्फ होटल पर ही सीमित नहीं होती जी। हम टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी, इन सब में भी काम कर सकते हैं, एयरलाइन कंपनी में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी या टूरिज्म से जुड़े हुए कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। पर पॉलिटेक्निक मॉरिशस की सबसे खास बात यह है कि हमने बहुत सारे टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और होटल्स के साथ MOAs और MOUs साइन किए, जिसके द्वारा हमारे बच्चे जो हैं, हमारे विद्यार्थियों, वो ना सिर्फ वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं बल्कि इंडस्ट्री विजिट वहाँ से सीख सकते हैं। यानी कि जो कुछ हमने सीखा है अपने लेक्चरर्स के द्वारा वो वहाँ भी सीख सकते हैं प्रैक्टिकल मोड।
0: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो कुछ हम अभी के समय में सीख रहे हैं उसको जो है इसमें लाना भी बहुत ज़रूरी है ना, प्रैक्टिस में लाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस सेक्टर में कदम नहीं रखेंगे, वहाँ के एटमोसफियर को जो है महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपने जो सीखा है कहीं ना कहीं आपके काम नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे सीख तो जाते हैं लेकिन जब कम्युनिकेट करने की बारी आती है तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें पीछे रह जाते हैं। आने के लिए उन्हें सब कुछ आता है लेकिन लोगों के सामने जब अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है तब उन्हें मुश्किल होती है। और चलिए अब दृष्टि जी, आपकी ओर हम बढ़ते हैं। आईटी इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपने तो ऑलरेडी हमें काफ़ी जानकारी दे ही दी है कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कुछ और आप इस पर जोड़ना चाहेंगे रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स जो पॉलिटेक्निक मॉरिशस प्रोवाइड करता है?
2: तो हमारे जो आईटी सेगमेंट में या डिफरेंट क्लस्टर्स जो पॉलिटेक्निक्स में अवेलेबल है वो एक केवल एक मार्केट डिमांड से जुड़ा नहीं है, वो इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू द मार्केट डिमांड। तो जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, स्टूडेंट एनरोल इन दैट प्रोग्राम, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय से हम क्रॉस चेक करते हैं उन प्रोग्रामों का जो अगर एक इवोल्यूशन है, अगर the program need to be revised as per the market or as per technology
0: or जो demand है,
2: demand है अगर वो मिलता है
0: exactly.
2: ताकि students are not only limited to theoretical part or practical part but also उन्हें यहाँ महसूस करता है कि जो program available है वो उनके साथ जा रहा है, technology के साथ जा रहा है, जो रिवोल्यूशन मैंने पहले कहा था उनके साथ जा रहा है। तो हमारे मार्केट टाइम टू टाइम, हमारे प्रोग्राम टाइम टू टाइम रिवाइज्ड होता है, हम क्रॉस चेक करते हैं कि इट इज़ बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स।
0: एग्जैक्टली, मतलब कि समय के साथ जो है ज़रूरतें बढ़ते जा रही है, मांगे बढ़ते जा रही है, नए नए इनोवेशन, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उस तरह से जो है आप अपने कोर्सेज को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। चलिए अभी के समय आईटी की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। AI की बात हम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, ऑटोमेशंस की बात करते हैं, तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल जो है टर्म्स है या इसके बारे में जो जानकारी है किस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स में इंक्लूड करते हैं?
2: तो ऑलरेडी हमारे पास एक अन्य डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स जो

0: जो वर्ड्स है वो क्लिक हो गया है इन इन द सोसाइटी, इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, वो आकर्षित हो रहे हैं इस प्रोग्राम के ओर. तो वो केवल एक बज़वर्ड नहीं रहा है द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इवन इन आवर लास्ट बजट स्पीच आईटी को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो इसी मार्ग पे हमने हमारे जो मैंने पहले मेंशन किया है, तो हमारे जो प्रोग्राम है वो अडॉप्ट हो रहा है इस टर्म से, इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से, ताकि स्टूडेंट्स को जब वो प्रोग्राम करते हैं तो उन टर्म से उनको ज़्यादा फैमिलियर होगा, बेनिफिट होगा. तो इसी मार्ग पे हमारे जो प्रोग्राम है वो टेलरमेड ऑलरेडी है. तो इसी हिसाब से हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जो है बिजनेस इंटेलिजेंस विथ एआई. तो हम इस प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है एआई मार्ग में, वो इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं.
1: और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये अपने आप में हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है ही, लेकिन इससे जुड़े काफ़ी थ्रेट्स भी होते हैं. इन पर भी लोगों को जो है जानकारियाँ हासिल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल इतने सारे जो है ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं. तो आई बिलीव बच्चे जब इनको लेकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसके जो है पॉजिटिव फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स, इन पर भी जो है जानकारी उनको होना बहुत ज़रूरी होता है.
0: जी केवल उनको उनके प्रोग्राम के द्वारा सर्टेन मॉड्यूल है, सर्टेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट डेटा, सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करना चाहिए, और उनको प्रस्तुत करते हैं कि हाउ टू डील विथ सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन. तो उनको ये जानकारी पहले से ही प्रोवाइड करते हैं.
1: बिल्कुल, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जो अचानक से सामने आ जाते हैं, और कहीं बच्चा अभी एक जो है वर्किंग सेक्टर में एनरोल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको ये सारी जानकारियां हो तो अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट भी कर सकता है, और थ्रेट्स को मैनेज करना भी आसान हो जाता है.
0: बिल्कुल.
1: चलिए उर्वशी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम टूरिज़्म क्लस्टर की बात करें तो अभी के समय में जो है प्रैक्टिकल स्टडी को बहुत जो है जोर दिया जाता है, इंडस्ट्री एक्सपोजर पर भी काफ़ी जो है दबाव दिया जाता है. तो अगर जो भी स्टूडेंट्स आपसे जुड़ते हैं पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस से, तो इन सभी जो है सेक्टर्स की जानकारी किस तरह से उन्हें दी जाती है, किस तरह से उनको जो है गाइड किया जाता है?
2: तो हमारे यहाँ ना सिर्फ, जैसे हमने कहा, ना सिर्फ किताबी ज्ञान पर जोर देते हैं बट प्रैक्टिकल पर भी जोर देते हैं. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम 50% जो है थियोरिटिकल नॉलेज पर जोर डालते हैं और 50% जो है प्रैक्टिकल. और प्रैक्टिकल जैसे कि हमने कहा इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंडस्ट्री प्लेसमेंट, ये सब इसमें आती हैं. और इस तरह उसने जो भी पढ़ाई की है वो ना सिर्फ जानिए समझिए बट प्रैक्टिकल रूप में उसे लागू भी की करें.
1: एग्जैक्टली. और कहीं ना कहीं जब हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी टूरिस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई सर्विस या अपना कोई जो है प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यू शुड बी वेल अडेप्टेबल टू ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन सिनेरियोज या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. तो कहीं ना कहीं जब आप उस सेक्टर में जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करते हैं, तब जाकर आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाते हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए. चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और आज पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के दिए जाने वाले कोर्सेज पर हम चर्चा कर रहे हैं, और खासकर आज हमारा जो फोकस है वो है आईटी और टूरिज्म पर. अभी के लिए एक छोटे से गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं.

0: की चर्चा इस प्रोग्राम से आप सभी जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा अपने आप में एक नींव है जहां पर हम अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं और अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान हर एक व्यक्ति को बहुत दूर तक ले जाता है और पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस इसमें अपना बहुत योगदान दे रहा है। 2017 से शुरुआत हुई थी सिर्फ नर्सिंग से और आज कितने सारे कोर्सेज जो है अलग अलग फील्ड में ये देते हैं और समय के साथ इनकी जो मांगें हैं वो बढ़ते जा रही है। और जिस तरह से आज के हमारे जो दो रिप्रेजेंटेटिव है दृष्टि जी और उर्वशी जी जो बता रहे हैं कि मार्केट डिमांड के हिसाब से किस तरह से आप अपने कोर्सेज को अपग्रेड करते रहते हैं, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जब भी एक बच्चा आपके पास एनरोलमेंट के लिए आता है तो किस तरह से जो आप देखते हैं उनमें जो एक्साइटमेंट होती है ना, कि ऐसा कभी कभार होता है कि कुछ बच्चे माता पिता के प्रेशर में आकर किसी कोर्स के लिए जो है अप्लाई करते हैं, कभी कभार वो बच्चा अपने शौक से आता है, तो आप क्या अभी भी इस बात को देखते हैं कि बच्चे माता पिता से प्रेशराइज होकर कोई कोर्स कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, हमारे यहाँ जो पहले मेंशन किया है, हमारे जो छात्र आते हैं वो स्टार्ट विथ फॉर्म फाइव विथ पास, फिर और फॉर्म फाइव विथ फ्री क्रेडिट्स और फाइव क्रेडिट्स। तो जो छात्र है जो फॉर्म फाइव विथ ओनली पास और थ्री क्रेडिट, तो वी गेट टू सी दैट सम उनके माँ बाप उनको दबाव करते हैं थोड़े से कि इस मार्ग में चले उस मार्ग में चले। जब हम प्रश्न पूछते हैं छात्रों से को एनीवन कैन डू एनी प्रोग्राम राइट, जो उनको अगर उनको उनके पास एंट्री जो रिक्वायर्ड है एंट्री रिक्वायरमेंट में हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन हम पहले पूछते हैं छात्रों से किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, दिलचस्प है, और आगे वो उस एजुकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं थ्रू आउट डिप्लोमा और बीएससी। तो हम देखते हैं कि हाँ एक थोड़ा सा है जो
0: माता पिता का
1: प्रेशर है, लेकिन उसे विनती करते हैं कि छात्रों को हाँ वी कैन encourage उनको their child to do the program, but उनको प्रोत्साहन भी करें कि जो उनके दिलचस्प है उस प्रोग्राम में वो आगे करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि माता पिता जो है बच्चों का भला ही चाहते हैं, obviously no doubt about it, वो चाहते हैं कि बच्चे एक ऐसे फील्ड में जाए या एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके पढ़े जो आने वाले समय में उसके लिए जो है प्रॉफिटेबल हो, उसे आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चे की दिलचस्पी उस क्षेत्र में नहीं है, उस सब्जेक्ट में नहीं है, तो फिर बच्चे के लिए भी कोप करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं आई बिलीव पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बच्चों में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चा एग्जैक्टली क्या चाहता है, और अगर माता पिता को लगता है कि वो ठीक नहीं तो आपस में कम्युनिकेट करके जो है इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम कोर्सेज पर, आईटी से रिलेटेड कोर्सेज की अगर हम बात करें दृष्टि जी, तो जो भी बच्चे आईटी के प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो क्या उन्हें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे कोडिंग हो गया या एडवांस कंप्यूटिंग हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है कि जब सब्जेक्ट्स चूज़ करने की बारी आती है तो कंप्यूटर को नहीं चूज़ करते हैं और फिर बाद में जब एचएससी पूरा कर लेते हैं या फॉर्म फाइव पूरा कर लेते हैं तब सोचते हैं कि नहीं मुझे शायद बदलना चाहिए, तो क्या ऐसे बच्चे भी जुड़ सकते हैं आपके कोर्सेज से?
1: बिल्कुल, जो छात्र जो उन्होंने आईटी या कोडिंग नहीं किया है अगर उनके पास एक नॉलेज है तो वो एक एडवांटेज है।
0: ओके,
1: बिल्कुल, और जो हमारे यहाँ हम हमारे सर्टिफिकेट लेवल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक मॉड्यूल जो कंपलसरी है, जो वहाँ पर वो स्टूडेंट वो छात्र बेसिक के मध्य से प्रोग्रामिंग सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, टू गेट देम फैमिलियर विद। जब वो डिप्लोमा में जाते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ में होता है, तो छात्र बिकम दे गेट एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द प्रोग्रामिंग एंड द कोडिंग। पर जब हम आज के बारे में बात करें तो वो प्रोग्रामिंग और कोडिंग इट इज़ नॉट अ चैलेंज, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा AI टूल अवेलेबल है जो खुद कोडिंग भी करता है और

0: कोडिंग को आसान बनाते हैं तो इट इज़ नॉट रियली अ चैलेंज. छात्र जो जो जो सीखना चाहता है वो जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी सीख सकते हैं.
1: आजकल के बच्चे ऐसा है कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, खासकर आईटी से रिलेटेड बात करें. चलिए अब अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें जो ग्रेजुएट्स के लिए है, जो आईटी के फील्ड से जुड़े हुए, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम से जुड़े, तो किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलते हैं?
0: तो आईटी वो हर इंडस्ट्री से जुड़ा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इज़ नॉट लिमिटेड, ओनली सीमित नहीं है केवल आईटी इंडस्ट्री से. तो जो स्टूडेंट ने हमारे डिप्लोमा किया है वो आज इंटरनेशनल बट आई विल से मल्टीनेशनल कंपनी जो लोकली बेस्ड है उनमें जॉब कर रहा है. इंडस्ट्री है वो है मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक्स, टूरिज्म, इंजीनियरिंग, क्योंकि आईटी जुड़ा है उस इंडस्ट्री से. और फिर है आते हैं जो हमारे छात्र जो उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो उनके शिक्षा से जो एक्सपीरियंस नॉलेज मिला है वो खुद एक फ्रीलांस बन रहे हैं. वो बन चुके हैं एक फ्रीलांस. तो वो एक स्टूडेंट्स को जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहा है खुद एक स्टार्टअप करे.
1: ओके यानी कि आपके कोर्सेज के बाद बच्चा ज़रूरी नहीं है कि किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में ही जाए, अगर वो अपना ही कुछ सेटअप करना चाहता है, आजकल तो स्टार्टअप्स काफ़ी ट्रेंड में है, या अपना ही कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है, तो आपके कोर्सेज को पूरा करके वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक बेस जो है बना ही सकता है आगे बढ़ने के लिए. चलिए जॉब ही से जुड़े रहेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज से ही. साइबर सिक्योरिटी और एआई की बात करें तो अपने आप में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी काफ़ी डिमांड्स है. तो पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए जॉब चैलेंजेस के लिए तैयार करता है?
0: तो फॉर आई टी इन द क्लस्टर ऑफ आई टी, या मैं कहूँगी हमारे पॉलिटेक्निक में जैसे उर्वशी ने पहले मेंशन किया है, हम अपने छात्रों को ऐसे प्रिपेयर करते हैं जो उन्हें चार सीरी से चलना पड़ेगा. या ज़रूरी है वो चार सीरी से क्रॉस करने के लिए. तो पहला है जो उर्वशी ने मेंशन किया है आगे, वो है नॉलेज बेस, जो क्लास में जो सीखते हैं. सेकंडली जो पीयर टू पीयर अपने दोस्तों से सीखते हैं. और तीसरा है जो सिमुलेशन, जो स्टूडेंट ने क्लास या क्लास में सीखा उनको सिमुलेट करते हैं हमारे स्किल्स लैब में. आई टी में स्किल्स लैब अप टू डेट टू द टेक्नोलॉजी. मैं मेंशन करूँगी हमारे स्किल्स लैब को, रोबोटिक लैब्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, मैकबुक लैब्स, स्टूडियो है. तो वो अपने नॉलेज को प्रैक्टिस या सिमुलेट करते हैं. और हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री पार्टनर मार्केट से आते हैं और क्लास इंटरवेंशन भी करते हैं उस समय. तो उनको ये जानकारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलता है. और आखिरी मार्ग में जो वो प्लेसमेंट भी जाते हैं टू गेट द रियल टच ऑफ वर्क लाइफ,
1: जो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
0: वो पहले से उनको ये दृश्य मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है. और बाद में जो उन्होंने छात्र जो उन्होंने क्लास में सीखा है, एक्सपीरियंस मिला है प्लेसमेंट में, तो वो एक प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करते हैं. उन्हें कहते हैं कैपस्टोन शोकेस. तो वो अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करते हैं विद अ मिक्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड अकेडेमिक जर्नी जो उन्होंने सीखा है. तो इससे वो स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंट करते हैं, दे शो देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, देयर नॉलेज स्किल्स एंड ऑल्सो देयर प्रैक्टिकल स्किल्स. तो ऑल कम्बाइंड वो प्रस्तुत करता है. तो इस मार्ग से हमारे स्टूडेंट्स पहले से ही वो एम्प्लॉयबल है. दे डोंट प्रायर एंडिंग देयर प्रोग्राम, दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयबल. तो ये हमारे सक्सेस स्टोरीज है, हमारे हाईलाइट्स है कि हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी एम्प्लॉयबल है इवन विदाउट एंडिंग देयर प्रोग्राम.
1: ओके, थैंक यू सो मच दृष्टि जी. उर्वशी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, टूरिज्म क्लस्टर की बात करें तो टूरिज्म जो है मॉरिशस के अपने आप में एक बहुत बड़े पिलर्स है इकोनॉमी की बात करें तो, और अभी तक जो है मतलब के समय के साथ इसकी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, यंग लोग जब पढ़ाई के बारे में सोचते हैं या किसी

0: फील्ड में नौकरी के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है टूरिज्म की ओर काफ़ी आकर्षित होते हैं, तो आप बताएंगे थोड़ा सा इस पर।
1: तो अगर टूरिज्म मॉरिशस के लिए टूरिज्म के बारे में बात करें तो टूरिज्म वो एक बड़े ही इनकम जनरेटेड सेक्टर्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे काम मिलते हैं, ना सिर्फ होटल्स में बल्कि अपनी खुद के बिजनेस भी खोल सकते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी भी खोल सकते हैं, टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन, ये सब जो हैं वो टूरिज़्म से जुड़े रहते हैं। तो ये युवकों को इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वहाँ पर वो नए कल्चर्स को सीख सकते हैं, नए लोगों से बात कर सकते हैं और उससे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑपरेशंस के कोर्सेज हैं, वी हैव टूरिज्म ट्रैवल एंड टूर कोर्सेज, वी हैव कल्नेरी और जो रेस्टोरेशन में जाना चाहते हैं, वी ऑल्सो हैव इवेंट्स ऑपरेशन, सो जो लोग इवेंट्स में
0: मैनेजमेंट वगैरह
1: लेजर रिक्रिएशन इवेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग मानते हैं वो उन सेक्टर्स में जा सकते हैं। विजिटर अट्रैक्शन, यहाँ हमारे यहाँ हम एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, हमारे यहाँ बहुत सारी टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं, वहाँ भी स्टूडेंट काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, टूरिज़्म की बात करें तो समय के साथ टूरिज़्म काफ़ी पॉपुलर हो गया है, बहुत सारे लोग घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं, लेजर टाइम पसंद करते हैं, लेकिन इसी के साथ जो ट्रैवलर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते जा रही है ना। चैलेंजिंग तो है ही, जितने बदलाव आ रहे हैं लोग नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन नए चैलेंजेस को, फिर चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, AI, सस्टेनेबिलिटी हो, किस तरह से आप अपने एजुकेशन में इसे इनकॉर्पोरेट करते हैं।
1: तो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी पढ़ाई भी इंडस्ट्री के साथ साथ बदले। तो आज के ज़माने में डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमारी एक डिप्लोमा है, एक उदाहरण के तौर पर टूरिज़्म स्ट्रैटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पर विद्यार्थियों ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखते हैं बल्कि AI कैसे यूज़ करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ाने में, एंटरप्रेन्योरशिप में। और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी ये टूरिज़्म के बहुत बड़े हिस्सा हैं, पर ना सिर्फ टूरिज़्म पर, आम लोगों के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति की रक्षा कैसे करें,
0: बहुत ज़रूरी है ये।
1: हाँ, और उससे भी कि हम स्थानीय लोगों को टूरिज़्म के विकास में कैसे शामिल करें, उनका भी महत्वपूर्ण होना चाहिए।
0: एग्जैक्टली, और सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की, आजकल हर एक सेक्टर जो है इस पर काफ़ी जो है जोर दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हम देख रहे हैं कि कितने नेचुरल कैलामिटीज़ आ रहे हैं जिस पर हमारा जोर बस नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी लोगों को जागरूक करना पढ़ाई के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए उर्वशी जी, आप ही से हम जानना चाहेंगे, अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें इन द टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो अभी के समय में बियॉन्ड टेक्निकल क्वालिफिकेशन और किस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है?
1: तो हाँ, जैसे कि आपने कहा कि आजकल एम्प्लॉयज़ ना सिर्फ क्वालिफिकेशन और टेक्निकल स्किल्स देखते हैं बल्कि वो देखते हैं कि आप अलग अलग परिस्थितियों में कैसे, आपका व्यवहार कैसे है, बातचीत का तरीका कैसे है, बातचीत की कला भी, ये भी कला है, मिलजुल कर आप काम कैसे कर सकते हैं, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं, जो बहुत ही आवश्यक है, समस्याओं का हल कैसे निकाला जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने ही वर्कर्स के साथ, अपने ही बॉस के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब
0: टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी होता है।
1: ये बहुत ही आवश्यक है। और देखा जाए तो टूरिज़्म में हम ज़्यादातर लोगों से काम करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो यहाँ हम कस्टमर सर्विस पर बहुत ज़्यादा
0: फोकस करते हैं।
1: तो इसीलिए ना सिर्फ कस्टमरों के सामने अच्छी तरह से पेश आना बल्कि उनकी संस्कृति को समझना, उनका मान करना, तो रिस्पेक्ट करना, ये सब बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, अगर टूरिज़्म सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे लोग विदेश से आते हैं जो एक अलग संस्कृति का हिस्सा होते हैं, अलग कल्चर में पले बड़े होते हैं, जब आपके देश में आते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं, हमें भी उनके प्रति ये रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए। और इसलिए कम्युनिकेशन की बात करें तो वो सिर्फ हमारे रिश्ते में ही नहीं बल्कि हर एक सेक्टर में आज कम्युनिकेशन अपने आप में

0: बहुत बड़ा जो है फाउंडेशन है, एक पिलर है, और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना। चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे उर्वशी जी, जो सर्टिफिकेट लेवल पर शुरुआत करते हैं आगे चलकर किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलते हैं टूरिज्म के सेक्टर में?
1: तो ये सर्टिफिकेट लेवल वो सिर्फ एक शुरुआत है, एक एंट्री रिक्वायरमेंट है। तो ज़रूरी एंट्री रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वो विद्यार्थी जो हैं वो डिप्लोमा तक जा सकते हैं। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बाद एक डिप्लोमा लेवल 5 है, डिप्लोमा लेवल 6, और फिर जाते हैं टॉप अप डिग्री तक। ओके, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एंड लेजर के बारे में बात करते हैं जो टूरिज्म में भी है, टूरिज्म में इंक्लूडेड है। हम हायर सर्टिफिकेट से शुरू करते हैं, एडवांस सर्टिफिकेट तक जाते हैं, और हम बैचलर तक जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी विद्यार्थियों के लिए।
0: चलिए अभी तो जहाँ तक हमें आपसे बात करते करते पता चला, अभी करंटली आपके यहाँ एनरोलमेंट चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि दोनों क्लस्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, जो भी लोग सुन रहे हैं अगर आकर आपसे मिलना चाहते हैं तो कहाँ पर आकर मिल सकते हैं, और इन सब, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रह गया है।
2: तो करेंटली वी आर टेकिंग स्टूडेंट्स, वी आर रिक्रूटिंग स्टूडेंट फॉर आवर सेप्टेम्बर इनटेक। जो आप हमें मिल सकते हैं इन एनी कैंपस, वो है पॉम्पलेमूस, एबेन, रेजुई, मोताई ब्लांश, इवन रोजबेल, और यू कैन कॉल अस ऑनलाइन ऑन लैंडलाइन, वो है इस नंबर पे 4605100। तो और आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट में, जो हमारे प्रोग्राम अवेलेबल ऑलरेडी है। तो आप तो पेरेंट्स या विद्यार्थी उन पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर उन्हें कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मिल भी सकते हैं। हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सन है जो अवेलेबल है, जो उनको असिस्टेंस देगा, और हमारे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या बीएससी उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
0: चलिए इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का समय खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है शायद और एक एपिसोड हमें चाहिए होगा। जल्दी जल्दी अगर उर्वशी जी कुछ जोड़ना चाहती हैं।
1: मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि को समझना चाहिए, पहले अपनी रुचि को समझिए, फिर जानकारी लें हमारी प्रोग्राम्स में, हमारी वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर डिटेल्स हैं, हमें फ़ोन कीजिए, हमारे कैंपसेस में आइए, वो कोई ना कोई स्टाफ आपकी मदद
0: जरूर करेगा। चलिए आज के लिए आप दोनों जुड़ी और पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस से रिलेटेड इतनी सारी जानकारियाँ दी, खासकर दो क्लस्टर्स पर आज हमने बात की, आईटी और टूरिज्म, ये अपने आप में एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस दृष्टि जी आपको, और मिस उर्वशी जी आप दोनों का, और साथ ही पॉलिटेक्निक्स को भी हम धन्यवाद देंगे आपके सहयोग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते टेक्निक पर हमें सहयोग मिला अपर्णा और उरुषा का, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हमारी आपकी भेंट फिर होगी, तो नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से, शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय बिल्कुल सुपहर के, सुबह के ठीक 10 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

आबाज फौत लावाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मुरशस पधारे जाक देजिरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सैंत ख्वा जाएंगे। पेशे से डॉक्टर, 1841 में फौत लावाल मुरशस पहुंचे थे। उन्होंने हमेशा तंग दस्तों के लिए काम किया था। फौत लावाल की बरसी के मौके पर हजारों की तादाद में अलग लोग देश भर से लोग वहां जाएंगे। नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। तीर्थ यात्रियों की मदद करने के लिए जगह जगह पर पुलिस होंगे।

0: और स्वयंसेवी भी रास्ते में भोजन परोसेंगे। फौदल आवार की याद में आज रात 8 बजे सैद खुआ में खासमा सभा का आयोजन किया जाएगा। मुशरस में जुलाई 2026 तक में फैडन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर मेथाडोन दिया जाता है। ड्रगनोशी के इलाज के तौर पर मेथाडोन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। इस प्रोग्राम की कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां उभरती जा रही हैं। पारिवारिक भूमिका पर बहुत जोर दिया जा रहा है। मुशरस में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्कर रेंज के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुशरस में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। विदेश में दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है। पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे थे। हादसे की प्रारंभिक वजह यही समझी जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई और 12 लोगों को मलबों के नीचे से निकाला गया। इमारत के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह के 10:02 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई ये विज्ञप्तियाँ। सेंट मार्टिन बेजुकाप और बेजुकाप के साथ साथ श्वाजी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। रियोबेल कोस्ट रोड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। और अंत में है लेबुकों के साथ साथ ला शापेल लेन, सोशिएते ला कॉन्फिडेंस और लागामेल कोंस्टांस लेन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्तियाँ जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: 819 kHz, this is Radio Mauritius.

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: भक्ति धारा कार्यक्रम में पुनः हम आप सभी का स्वागत करते हैं। रत्ना आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ, जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम के साथ भक्तिमय भाव से जुड़ेंगे। आप सभी को याद दिला दें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वेद सुधा का कार्यक्रम सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी की प्रस्तुति में। वेद पर आधारित यह कार्यक्रम और तुरंत उसके बाद भक्तिमय भजनों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर करते हैं आज के इस कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन है। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। सर्वप्रथम

द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन और अंत में एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। ॐ तमु अभिप्रगायत पुरुहूतं पुरुष्टुतं इन्द्रं गिर्भिस्तविषमा आविवासत। हे उपासको, बहुतों से पुकारे गए और बहुतों से स्तुति किए गए उस परमेश्वर का ही गुणगान करें। महान इंद्र की ही तुम वेदवाणियों से परिचर्या करो। ओम तम ते मदम घृणीमसि वृषणम प्रिक्षो सासहिम उलोककृत्नु मद्रिवो हरिश्रियम। प्रभु की जब उपासक बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, आत्मविभोर होकर उसका ध्यान भजन करता है, तो फिर शीघ्र ही वह जहाँ संसार में दुख दुर्भाग्यों से मुक्त होकर सुख सौभाग्यों को पाकर सदा हर्षित होगा, वहाँ वह उस प्यारे प्रभु का भीतर ही भीतर अनुपम प्यार और आशीर्वाद पाकर तृप्त परितृप्त होगा। ओम एतोन्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम् कृष्टिर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक एत। उपासकों को चाहिए कि वे अपनी समान विचारधारा वाले मित्रों के साथ मिल बैठकर सब संसार के स्वामी परमेश्वर की झूम झूम कर स्तुति करें, जो सारे संसार का शासक हैं, राजाधिराज हैं। ओम सखाय आशिषा महे ब्रह्मेन्द्रंद्राय वज्रिणे स्तुष ऊषु वो नृतमाय दृष्णवे। उपासकों को चाहिए कि वे समान विचारधारा वाले साधक जनों में रहते हुए उस ब्रह्म ज्ञान अन्न आदि साधनों को चाहें इकट्ठा करें, जिससे वे उस दुर्गुणों का दर्शन करने वाले परम पुरुष परमात्मा का दर्शन पा सकें। ओम शांति शांति।

श्रोताओं, वेद मानव जीवन को केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखते, बल्कि व्यक्ति, परिवार और समाज के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। वैदिक संस्कृति का मूल उद्देश्य मानव मानव के बीच प्रेम, सद्भाव, सहयोग, समानता और पारस्परिक सम्मान की स्थापना करना है। प्रस्तुत मंत्र इसी महान वैदिक भावना का अत्यंत सुंदर और व्यावहारिक संदेश देता है। यह मंत्र अथर्ववेद के प्रसिद्ध सामंजस्य सूक्त में प्राप्त होता है। इसमें समाज को एक सूत्र में बांधने तथा मनुष्यों के हृदयों से द्वेष समाप्त करने की प्रेरणा दी गई है। ओम सहृदयम साम्मनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वः अन्यो अन्यभिहर्यत वत्सम जातमि वाग्न्या। श्रोताओ, इस मंत्र का सामान्य अर्थ है कि परमात्मा अथवा वैदिक उपदेशक मनुष्यों से कहता है, मैं तुम्हें समान हृदय वाला, समान विचारों वाला और द्वेष रहित बनाता हूँ। तुम एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। श्रोताओ, यह मंत्र मानव समाज के लिए प्रेम और एकता का सार्वभौमिक संविधान कहा जा सकता है। मंत्र का शब्दार्थ एवं भावार्थ इस प्रकार है। सहृदयम का अर्थ है समान हृदय वाले, अर्थात जिनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, सहानुभूति और सद्भाव हो। मनुष्य के विचार भिन्न हो सकते हैं, उसकी भाषा, जाति, देश, संस्कृति और जीवन पद्धति अलग हो सकती है, परंतु हृदय में मानवता और प्रेम होना चाहिए, यही सहृदयता है। आज संसार में अधिकांश संघर्ष विचारों की भिन्नता के कारण नहीं, बल्कि हृदय की कठोरता के कारण होते हैं। यदि मनुष्य दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगे तो अनेक पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं स्वतः समाप्त हो सकती है। अतः सहृदयम शब्द हमें संवेदनशील और मानवतावादी बनने की प्रेरणा देता है। सामनस्यम का अर्थ है मन की समानता, विचारों में सामंजस्य और उद्देश्य की एकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार के सभी मनुष्य बिल्कुल एक जैसा सोचें। श्रोताओ, वैदिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार

हैं। सामनस्य का वास्तविक अर्थ है कि मत भेद होने पर भी मन भेद न हो। उदाहरण के लिए, एक परिवार में माता पिता और बच्चों के विचार अलग हो सकते हैं, किसी संस्था के सदस्यों के सुझाव अलग अलग हो सकते हैं, लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक मत भिन्न हो सकते हैं, फिर भी यदि सभी का उद्देश्य कल्याण, न्याय और उन्नति हो तो वहां सामनस्य बना रह सकता है। यही मंत्र की महान शिक्षा है। अविद्वेषम का अर्थ है द्वेष से रहित होना। द्वेष मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु है। ईर्ष्या, घृणा, बदला और शत्रुता व्यक्ति की मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं। द्वेष केवल दो व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित कर सकता है। वेद हमें सिखाता है कि मत भेद होना स्वाभाविक है, परंतु द्वेष करना विनाशकारी है। किसी व्यक्ति की आलोचना उसके सुधार के लिए की जा सकती है, परंतु उसके प्रति घृणा रखना उचित नहीं है। इसीलिए मंत्र कहता है कि मानव समाज अविद्वेषम, द्वेष रहित होना चाहिए। फिर आया कृणोमि वह का अर्थ है मैं तुम्हें ऐसा बताता हूं अथवा तुम्हें ऐसा बनाने का प्रयत्न करता हूं। यहां वैदिक ज्ञान मानव के चरित्र निर्माण का कार्य करता है। वेद केवल उपदेश नहीं देता बल्कि मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है। फिर इस मंत्र में आया है अन्यो अन्यमभि हर्यत, अर्थात तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का आदर करो और प्रसन्नतापूर्वक परस्पर अपनापन रखो। यहाँ अन्यः अन्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि प्रेम एक तरफा नहीं होना चाहिए। समाज में सभी व्यक्तियों के बीच पारस्परिक प्रेम होना चाहिए। केवल यह अपेक्षा करना कि दूसरे हमसे प्रेम करें पर्याप्त नहीं है। हमें भी प्रेम, सम्मान और सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए। श्रोताओ, मंत्र कहता है वत्सम जातमी वाग्न्या, अर्थात जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। वेद ने यहाँ प्रकृति से अत्यंत सुंदर उदाहरण लिया है। माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम स्वाभाविक, निष्कपट और निस्वार्थ होता है। गाय अपने नवजात बछड़े की रक्षा करती है, उसे स्नेह देती है और उसका पालन पोषण करती है। इसी प्रकार मानव समाज में प्रेम स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए। आज अनेक संबंध केवल लाभ और सुविधा के आधार पर बनाए जाते हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता है, संबंध बना रहता है। स्वार्थ समाप्त होते ही प्रेम भी समाप्त हो जाता है। वैदिक प्रेम इससे भिन्न है। यह करुणा, कर्तव्य, सहानुभूति और आत्मीयता पर आधारित है। मंत्र हमें सिखाता है कि परिवार, पड़ोस, कार्यस्थल और समाज में हमारा व्यवहार ऐसा हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुरक्षित, सम्मानित और अपनापन से भरा हुआ अनुभव करे। श्रोताओ, वर्तमान समय में यह मंत्र अत्यंत प्रासंगिक है। संसार विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे बढ़ गया है, परंतु मनुष्य के बीच मानसिक दूरी भी बढ़ती जा रही है। परिवारों में तनाव, समाज में विभाजन,

धार्मिक असहिष्णुता और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसे समय में सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम का संदेश मानवता के लिए शांति का मार्ग प्रस्तुत करता है। परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच सहृदयता हो तो अनेक विवाद समाप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल पर यदि कर्मचारी और अधिकारी एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में यदि व्यक्ति व्यक्तिगत अहंकार को छोड़कर सामूहिक हित को प्राथमिकता दें तो संस्था प्रगति करती है। इस मंत्र का मूल सिद्धांत है कि व्यक्ति से अधिक समाज का हित और व्यक्तिगत मत से अधिक सामूहिक कल्याण महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को केवल विज्ञान, गणित और तकनीकी ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है। चरित्र, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की शिक्षा भी आवश्यक है। यदि बचपन से बच्चों को सहृदयम अर्थात दूसरों की भावनाओं को समझना सिखाया जाए तो वे संवेदनशील नागरिक बनेंगे। सामनस्यम की शिक्षा उन्हें टीम वर्क और सहयोग सिखाएगी। अविद्वेषम की शिक्षा उन्हें भाषा, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव करने से रोकेगी। इस प्रकार यह मंत्र आधुनिक मूल्य आधारित शिक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। श्रोताओं, भविष्य का संसार तकनीकी दृष्टि से और अधिक विकसित होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल संचार और वैज्ञानिक प्रगति मानव जीवन को बदल देंगे, परंतु केवल तकनीकी विकास से मानव समाज सुखी नहीं बन सकता। यदि मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं होगा तो विज्ञान भी विनाश का साधन बन सकता है। इसलिए भविष्य के समाज को वैदिक नैतिक मूल्यों की पहले से अधिक आवश्यकता होगी। सहृदयम भविष्य के मानव को संवेदनशील बनाएगा। सामनस्यम विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच सहयोग और स्थापित करेगा। अविद्वेषम युद्ध, हिंसा, घृणा को कम करने की प्रेरणा देगा। अन्यो अन्यमभिहर्यत विश्व बंधुत्व और वैश्विक परिवार की भावना को मजबूत करेगा। श्रोताओं, अथर्वेद का यह मंत्र मानव समाज के लिए प्रेम, एकता और शांति का अमूल्य संदेश है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य सहृदय बने, विचारों में सामनस्य रखें और द्वेष से दूर रहे। साथ ही वह एक दूसरे से उसी प्रकार निस्वार्थ प्रेम करें जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से करती है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि वास्तविक धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि श्रेष्ठ मानवीय व्यवहार है। यदि व्यक्ति के हृदय में प्रेम, मन में सद्भाव और व्यवहार में करुणा हो तभी समाज में वास्तविक शांति स्थापित हो सकती है। आज और भविष्य दोनों के लिए इस मंत्र का संदेश अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान मनुष्य को शक्तिशाली बना सकता है लेकिन केवल प्रेम और सद्भाव ही उसे महान बना सकते हैं। अतः हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में इस वैदिक सिद्धांत को अपनाना चाहिए। सहृदय बनो, समान उद्देश्य रखो, द्वेष छोड़ो और एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करो। यही इस मंत्र का शाश्वत वैदिक संदेश है और यही एक सुखी, शांतिपूर्ण तथा आदर्श मानव समाज की आधारशिला है। प्रिय श्रोतागण, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा।

0: इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

भक्ति धारा कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हम हृदय की गहराई से करजोड़ स्वागत करते हैं। और हनुमान जी को बिल्कुल उनको अमर वरदान मिला, और जहाँ भगवान श्री राम जी का नाम हृदय की गहराई से भक्ति भाव से लिया जाता है, वहाँ भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान उपस्थित हो ही जाते हैं। वे उनके भक्तों की इस प्रकार से रक्षा करते हैं कि उनका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। आइए इसी के साथ हनुमान स्तोत्रम के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

श्रोताओं, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आने वाले पर्वों के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से कोटि कोटि बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करेंगे संतिम आरती के साथ। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ।

0: जी सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार। आदाब रीयूनियन में 155 किलो गांजे की जब्ती के सिलसिले में रविंद्र शिमाजी और गुलशन गोविंद को शक्की नेटवर्क के अहम किरदारों की हैसियत से पहचाने गए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ताओं ने आजसू के साथ मिलकर जांच की। कल पश्चिम में और छापे मारे गए। लागोलैंड में रविंद्र शिमाजी के यहां ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी दो कश्तियों को जब्त किया गया। सांसद वेरोनिक लुगोविन के बेटे युविसेन गोविंद से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई, उसे वापस घर जाने की इजाज़त दी गई। अगर आप समुंदर जा रहे हैं या साहिली इलाकों में हैं तो ज़रा सावधानी बरतें, क्योंकि 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई हैं। इलाके में ज़ोरदार एंटी साइक्लोन की मौजूदगी से ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। बारिश होती रहेगी जो कभी कभार ज़ोरदार होगी। फौजा लावल की बरसी के मौके पर परंपरानुसार आज तीर्थ यात्रा की जाएगी। मुल्क के दिगर इलाकों से लोग पैदल जाकर सैंत क्वामी उनके मकबरे पर फूल चढ़ाकर विशेष प्रार्थनाओं में भाग लेंगे। आज रात 8 बजे खास मास सभा का आयोजन किया जाएगा। विदेश में इजिप्ट में टेलीविजन पेशकार सारा खलीफा को मौत की सजा दी गई है। एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल होने के जुर्म में काहिरा की अदालत ने यह सजा सुनाई। पेशकार खलीफा 39 साल की थी और मिशन इम्पॉसिबल नामी प्रोग्राम में जुर्म के खिलाफ आगाही

0: पैदा करने में बहुत मशहूर थीं। तो अभी के लिए बस इतना ही, जायज दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV 819 kHz,
2: ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: शम्मे फरोजा।

अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आज़माया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फ़रोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक, हम्द, बयान, नातो सलाम और आपके पैगामात। ताक़ीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह अलानाम का आखिरी हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

हाँ फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें।

और ऐ कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। और इसलिए उतारी है कि तुम यूं ना कहो कि हमसे पहले दो ही गिरोहों पर किताबें उतरी हैं और हम उनके पढ़ने से बेखबर थे, या ये ना कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती तो हम उन लोगों की निस्बत कहीं सीधे रस्ते पर होते। सो अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करे और उनसे लोगों को फेरे।

ये इसके सिवा और किस बात के मुंतजर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कोई खास निशानी आ जाए। जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की खास निशानी आ जाएगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या जिसने अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद न होगा। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं।

जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं। उनका काम अल्लाह के हवाले, फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा तो उसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बुराई लाएगा तो उसे सजा उस जैसी ही मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा।

कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही तरीका इब्राहिम का, जो एक अल्लाह ही के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फरमाबरदार हूं।

0: कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और आका तलाश करूं, जबकि वही तो हर चीज का मालिक है, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है, और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तिलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा, और वही तो है जिसने जमीन में तुमको अपना नाइब बनाया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब देने वाला है, और बेशक वो बख्शने वाला है।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पर डाल के पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, अपनी हस्ती से करके वापस्ता, हर मुसीबत को टाल रखा है, मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है।

इस्लामिक सेंटर पेचिपा के मोताई ब्लॉश में कल 9 सितंबर ले फ्लामों पेरेबिया में जुमेरात 10 सितंबर मस्जिद करतबा रिशमों में जुम्मा जी हां जुम्मे की नमाज अदा कराएंगे। मस्जिद रौनकुल इस्लाम सुन्नी गौंबे में इसके अलावा सनीचर 12 सितंबर दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह हॉल ब्रीज़े वैजिया में मियां ताहिर याकूब नक्शबंदी की सरपरस्ती में। इसके अलावा आपको बताते चलें कि लेडीज़ महफिल नात एसोसिएशन और जी हाँ क्यूपिप की जानिब से और लेडीज़ एसोसिएशन की जानिब से महफिल नात का अहतमाम किया जा रहा है। मशहूर मारूफ सना ख्वान मुस्तफ़ा इशरत तस्नीम जो कि तशरीफ़ ला रही हैं कराची पाकिस्तान से, वो इन जगहों पर महफिल नात सजाएंगी। सनीचर 12 सितंबर लुतिल देवील हॉल म्यूनसिपैलिटी ऑफ क्यूपिप में बाद नमाज ज़ोहर यानी दिन के 1:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक। इतवार 13 सितंबर चौकोल और चाय रेस्टोरेंट जो कि अपोजिट है तांग सुपरमार्केट बोबासे में, वहां पर भी दिन के 1:30 बजे से शाम के 3:30 बजे तक। और मंगल 15 सितंबर आफ्ताब इस्लाम हॉल सैपिया में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और मंगल 15 सितंबर नूरे मदीना हॉल नोवेल फॉन्स में और जुमेरात 17 सितंबर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद हॉल फिनिक्स में दिन के 1:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक। और सनीचर 19 सितंबर सुन्नी सेंटर हॉल कास्टेल में भी दिन के 1:30 बजे। और इतवार 20 सितंबर मुस्लिम म्यूचुअल एड एसोसिएशन हॉल ग्लैन पॉक वाकवा में मशहूर व मारूफ साना ख्वान मुस्तफ़ा इशरत तस्नीम महफिल नात सजाएंगी।

मौज़े सामीन, आइए चंद अकवाल समात फरमाइए। मायूसी एक धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जला

कर राग कर देती है, जिस पर नसीहत असर ना करे वो जान ले कि मेरा दिल ईमान से खाली है। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी एक आरजी शय है। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई ज़िंदगी कम कर सकता है और ना कोई रिस्क रोक सकता है।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमें हमेशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: घड़ी मिला लीजिए, समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं ये विज्ञप्ति। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई, सैंपोल के आसपास के इलाके जिनमें है पंडित जवाहरलाल एवेन्यू, कुछ इलाके क्लेफों, फेनिक्स, जगरू लेन, एडगर किरेन रोड, बागी रोड, एपास गुमानी, मुसलमान नोएल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 8 सितंबर को दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आगे का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। तेलुगु भाषा में प्रस्तुत करता है वर्षा।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: ऋषिक श्रोत्यानो, कानात सूर मनात भक्ती आणि ओठांवर एकच नाव, एकच नाव, गणपती बाप्पा मोरया.
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरया.

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

चलिए श्रोताओ, 2:30 बज रहे हैं, स्टूडियो की घड़ी में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, आपके लाइव आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे, रेडियो मॉरिशस पे 4028085 हमारा फ़ोन नंबर है, 7952517005। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा नजरा जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद है, आपके मन पसंद रेडियो चैनल पे। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ जो है इस समय काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए विश्वानी डुमन जी है हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो उनके नाम पे ये अगला गीत जो है जाने वाला है समस्त श्रोताओं के लिए। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा नज़ाना उनके नाम हम करने वाले हैं। वे जो है अगला गीत अपनी सभी बहनों के नाम करना चाहती है। उनकी बहन है जी हाँ, उनकी बहनें हैं इंदिरा, शारदा, साथ में उनकी सहेलियां हैं नीला, प्रतिभा, शोभा है, साथ में उनकी सासू माँ रीता और गीता गजाधर है। तो इन सभी सुनने वालों के नाम जो है ये अगला गीत जो है जी हाँ अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं इनकी फरमाइश पे। बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है परदेसी बाबू और इसी मूवी से लिया गया गीत है जो है हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रही है। तो चलिए श्रोताओं, एक से बढ़कर एक गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला गीत हमारे साथ जो है काफ़ी लोग हैं, विद्या जी है न्यूम्पाओ की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए। ये गीत जो है जाएगा वेदना, विमला, प्रीति, सुरेखा, उनकी बहन है सती, तो साथ में है उनकी चाची कुमारी। तो उनका ये मन चाहे गीत जो है हम चलाने वाले हैं इस कार्यक्रम में। साथ में त्रिवेणी जी है गुडलैंड्स की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत उनके नाम, उनके पति है अनिल जी, सभी मोहन परिवार के लिए ये अगला गीत हम चला रही है।

चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है बॉबी और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है इन सभी श्रोताओं की मांग पे हम चलाएंगे। वैसे हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं और फिल्म बॉबी आपको पता है बहुत ही लोकप्रिय गीत है और इस फिल्म के सभी गाने बेहद ही हिट हुए हैं। तो चलिए एक ऐसा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं और काफ़ी जो है लोग जो है इस गीत की फरमाई जो है कर रहे हैं हमारे साथ अनिता, करुणा, अमृता, मौरालबे से। तो इन सभी लोगों की फरमाइश पे ये प्यारा सा गीत हम चलाएंगे। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे और ये एक बहुत ही

0: खूबसूरत सा गीत है हम चलाने वाले हैं, और ये गीत जो है लता मंगेशकर और शैलेंद्र की मीठी आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: तो चलिए श्रोताओ अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ये अगला गीत जो है जाने वाला है आपके लिए भाई हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपकी पसंद पे ये अगला गीत जाएगा आपके खास दोस्त के लिए। तो चलिए श्रोताओ कुछ ही घड़ी में सपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को हम इसी चैनल पे जारी रखने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओ मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद 4028085 पे आप सुन सकेंगे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028085 पे और हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700005। तो चलिए गीत की ओर जो है हम बढ़ने वाले हैं।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। पूजा से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लोगों की देखभाल के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम। कल 7 सितंबर को विश्व ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जागरूकता दिवस के अवसर पर SSIN अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। ये पहल कई वर्षों से चल रहे प्रयासों और प्रतिबद्धता का परिणाम है, जिसका उद्देश्य मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में सुधार लाना है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत किया। संस्था की अब मांग है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए और अधिक उपयुक्त उपकरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मॉरिशस में डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच गई है। ये उद्योग, जो वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मॉरिशस इस क्षेत्र में एक तकनीकी हब के रूप में उभर सकता है। हाईटेक पेमेंट सिस्टम ने इस विषय पर 8 सितंबर को फ्लिकॉफ्लाक में एक कार्यशाला का आयोजन किया। विदेश में अमरीकी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर कनाडा द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क मंगलवार से प्रभावी हो गए हैं। फिलहाल किसी व्यापार समझौते की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उधर कल सोमवार को एफएल टावर को बंद कर दिया गया, क्योंकि कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों और प्रबंधन के अनुसार ये हड़ताल एक हिंदू धार्मिक समूह के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को वहां से हटाए जाने के विरोध में की गई है। तो ये थी अब तक की खबरें, कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉय रोड लाफ्लोरा में 93 साल के 93 years old श्री रूप नारायण मौघा, श्री रूप नारायण मंगरा, जिन्हें लोग ललन नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉय रोड लाफ्लोरा से उठाकर घोंबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट नून। और रिवालो रोड क्रेवक्यूर में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बल्दुआ, ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए। रिवालो रोड क्रेवक्यूर में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बल्दाओ, जिन्हें लोग कलावती नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल शाम 3:30 बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान रिवालो रोड खैवकुया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैवकुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 3:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपहर के 3:04 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। तो आइए सेंट्रल एक्स बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। Chemin Vapier, Old Mill Road, Marcel Mansoine, Coast Road और Le Flamand Road Péribert के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 9 सितंबर 2026 को सुबह 9:30 से लेकर दोपहर के 3:00 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, तो चलिए आपकी पसंद के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो फिल्म का नाम है जंजीर। हमारे साथ जो है शोभा जी हैं, पोम्पे मुसिस की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो लीजिए उनका ये बहुत ही प्यारा सा गीत उनके खास दोस्त के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं, काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए ये अगला गीत हमारे साथ इस समय, जी हाँ इस समय हमारे साथ केश जी है, आपका खबों की रहने वाली आपकी दो बेटियों के लिए है, नेहा है, नितिशा है, आपकी दामाद है अरविंद, और साथ में आपके पति है आनंद जी। तो इन लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और इसी गीत पे हम नाम जोड़ने वाले हैं हमारे साथ, जी हाँ हमारे साथ इस समय खांबा की रहने वाली आप है माँ गायत्री जी, और उनके बेटे हैं अजय, साथ में है गांव की रहने वाली सुनीता जी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये अगला गीत जो है उनके नाम भी हम करने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक गीत जो है इन सभी लोगों की मांग पे हम जो है शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम जो है हम शाम के 4 बजे तक चलाने वाले हैं। श्रोताओं, हम आपको इशारा कर दें कि हमारे इस प्रोग्राम में है एक क्वीज़ भी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम एक कुछ ही घड़ी में एक क्वीज़ चलाने वाले हैं। आप सभी सुनने वालों के नाम जो है ये गीत जो है इसके बाद जो है हम ये क्वीज़ चलाने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ 402-8705 फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251-7005।

तो चलिए छोटा वो हम आपके लाए हैं एक क्वीज आइटम। जी हाँ, और इस क्वीज आइटम में आप जो है भाग ले सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ ही घड़ी में हम आपके लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं।

तो चलिए श्रोताओ, क्वीज जो है आपके नाम इस समय हम चला रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। तो ध्यान से सुनिए प्रश्न। उस व्यक्ति को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है जो सर्कस के अलग अलग करतबों को और कलाकारों का परिचय करवाता है? तो एक बार फिर से मैं प्रश्न दोहरा लेती हूँ। उस व्यक्ति को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है जो सर्कस के अलग अलग करतबों और कलाकारों का परिचय करवाता है? हमारा फ़ोन नंबर है 4028085। हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700। आप मैसेज के द्वारा हमें जवाब दे सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन के द्वारा भी जवाब दे सकते हैं। और आपके लिए जो है एक दिलचस्प इनाम रखे गए हैं। और ये जो सर्कस जो है जावाता बागातेल में हो रहा है, ये शोज़ जो है हर गुरुवार और शुक्रवार को शाम के 6 बजे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ शनिवार को और रविवार को 2:30 बजे को आप देख सकते हैं। तो चलिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं 4028085 पे।

तो चलिए श्रोताओं, काफी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए एक पहले कॉलर से हम मिलेंगे। हेलो हेलो हेलो,

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी। आपका शुभ नाम।
1: मैं अनिता बोल रही हूँ फुजोले से।
0: अनिता जी, आपका हम स्वागत करते हैं। बोलिए, सही जवाब क्या है?
1: एक बार आप प्रश्न दोहराइए प्लीज।
0: हाँ, तो हमने अभी पूछा आपसे कि उस व्यक्ति को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है जो सर्कस के अलग अलग कलाकारों का परिचय करवाता है। तो
1: हाँ,
0: आपको हमें सही जवाब देना है। आप बता
1: उसे,
0: सकती है?
1: हाँ उसे जोकर कहते हैं।
0: जोकर?
1: हाँ,
0: नहीं, गलत जवाब है।
1: कोई बात
0: तो
1: नहीं।
0: चलिए, अनीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो औरों को भी हम मौका देना चाहेंगे। तो चलिए, एक और श्रोता है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो हेलो चार 0 2 8 0 8 5 पे हम आपका इंतजार कर रहे हैं।

0: हेलो। हाँ जी, हम आपको सुन रहे
1: हेलो
0: हैं। हेलो, नमस्कार जी।
1: हेलो, नमस्कार।
0: आपका शुभ नाम?
1: इंदिरा।
0: इंदिरा जी कहाँ से बोल रही हैं?
1: मेबैग से।
0: मेबैग से। सही जवाब क्या है इंदिरा जी? हेलो।
1: द गाइडेंट ऑफ द सर्कल जोकर्स।
0: द गाइडेंट ऑफ द, नहीं, सही जवाब नहीं है। हमें
1: ओके।
0: वाकई खेद है, आपका जवाब सही नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, शुक्रिया।
0: शुक्रिया आपको।
1: ओके।
0: तो चलिए एक और श्रोता से हम मिलेंगे। हेलो। हेलो,
2: नमस्ते
0: नमस्ते भाई जी, आपका शुभ नाम?
2: अजय जी,
0: अजय जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: न्यू गांव से बोल रहा हूँ।
0: न्यू गांव से। सही जवाब क्या है?
2: रिंग मास्टर।
0: रिंग मास्टर। चलिए, सही जवाब आपने हमें दे दिया, आपको बधाई हो।
2: धन्यवाद।
0: तो उस व्यक्ति को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है जो सर्कस के अलग अलग कलाकारों का परिचय करवाता है? जी हाँ, सही जवाब है रिंग मास्टर। तो चलिए अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई हो, और आपको सर्कस
2: धन्यवाद।
0: में भाग लेने के लिए 2 एंट्री टिकट्स आपको प्राप्त हो रहा है। तो चलिए, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस खेल में भाग लेने के लिए। आप फोन मत काटिएगा, हम आपका जो है जितने भी डिटेल्स है हम आप से लेंगे। तो चलिए श्रोताओं, इस क्विज आइटम में भाग लेने के लिए सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

बागपत की रहने वाली रीता बकुरी जी के नाम कर रही है और उनकी बेटी है रत्ना। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत ये हरियाली और रास्ता फिल्म से लिया गया। आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में एक प्यारा सा गीत जो है फरमाइश करने वाली है नानी शांति जी, जो कि कटेज की रहने वाली आपकी नाती है आयान, 2 साल की हो रही है। उनके जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं मामा पापा की तरफ से, सभी भाई बहनों की तरफ से, मौसा मौसी है, समस्त परिवारों की तरफ से ढेर सारा प्यार और बधाइयां। तो चलिए ये प्यारा सा गीत उनके नाम हम करेंगे।

तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वाक्वा के रहने वाली समस्त परिवार है, त्रियोले के रहने वाले जो है सुदेवी जी। वाक्वा से सुदेवी जी ने हमें याद किया है। ये गीत जाएगा त्रियोले की दीदी ललिता के लिए। कुशल परिवार है, सुनीता, शोभा, देवीना, माला है, बिंदु है, अक्षय, मालेंगा के रहने वाले स्नेहा, कीर्ति, रामरतन परिवार है, हृदय परिवार है, कुआगो परिवार है, रागुबा परिवार है, जातू परिवार है, और बहुत ही प्यारा सा नजाना जो है इस कार्यक्रम में इन सभी श्रोताओं की मांग पे हम चलाने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारा सा गीत जो है इन सभी लोगों के नाम जो है हम कर रहे हैं।

है, तो श्रोताओ आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहे शाम के 4 बजे तक। ये कार्यक्रम जो है हम चलाने वाले हैं।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और ये अगला गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय, जी हाँ, इस समय समस्त बंधु परिवार के लिए त्रियोले के रहने वाले हैं। ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं।

जी हाँ, नाम जोड़ेंगे साथ में। बसंती जी है बोबासन की रहने वाली। ये गीत सभी लिसनर्स के लिए, सभी परिवारों के लिए, साथ में ये प्यारा सा गीत समस्त बंधु परिवार खियोले के रहने वाली।

चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय जो है व्हाट्सएप मैसेज पे दीपा जी है, कॉन्टोल के रहने वाली है और हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत जो है उनके नाम हम करने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे हम चला रहे हैं इस समय। तो कुछ ऐसे गाने तराने हम चला रहे हैं जो आप हमेशा फरमाइश करते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो हमारे साथ चित्रा जी है, मौलालबिया की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत सभी विश्राम परिवार के लिए हम चला रहे हैं, उनके पति हैं ज्ञान जी और इसी गीत पे हम नाम जोड़ेंगे अनीता जी। हाँ, अनीता जी जो है आप जिवेश सैपिया की रहने वाली है। ये गीत आपकी तीन बेटियों के लिए, काजल, शीतल, दीक्षा आपकी दामाद है, वितिश आपके सभी परिवारों के लिए, आपके पति है बालदेव जी, राधा जी है पिछिवेश सैपिया की रहने वाली, मलासुमारू जी है कथोबोन की रहने वाली, उनके पति है सूर्यदेव जी और उनके सभी परिवारों के लिए ये अगला गीत हम चला रही है।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं, हमारे साथ इस समय गीता जयपोंफिया की रहने वाली, ये गीत जाएगा उनके सभी बच्चों के लिए। आदित्य अरब, जानवी तनिश है उनके, उनकी बहन है मीरा न्यूकोव की रहने वाली, साथ में उनके पति है रोहित जी, तो इन सभी लोगों के नाम ये अगला गीत हम चला रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है। और सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले आप जी हाँ, ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है। सबसे पहले वैसे काफ़ी जो है सीबी जो है हमें प्राप्त हुए हैं, सूचनाएं जो है हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले आइए ये वाला आप सुन लीजिए। हमारे शुमे वैपिये, ओल्ड मिल रोड, मौसल मौसवान, कोस्टर रोड और लुफ्लामा रोड पेरेबिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 9 सितंबर 2026 को सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ में है, जी हाँ, साथ में है ले बुशों, ला शापेल लेन, सोसाइटे ला कॉन्फिडेंस, ला गामेल, कॉन्स्टेंस लेन के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ में है, जी हाँ, साथ में है तमारे के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है अवेन्यू मॉल मौसलमा इन्वेस्टर्स के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 9 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर ला गुलेट के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मौसलमा ला फ्लैश, मौसलमा ग्रांड काज नोयल के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 10 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कांटोरेल के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रूट रॉयल, लखू रोड और शुमे और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को बुधवार 9 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के, जी हाँ, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, आपकी पसंद कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। साथ देने के लिए धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुन सकेंगे। हमारी ओर से नमस्कार।

त्रिपुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भूले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर। भूले बिसरे गीत,
2: नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। 5:02 हुए हैं और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर, जी हाँ, आपका साथ दूंगी 6 बजे तक, और आप भी साथ दीजिएगा। आज का पहला गाना सुनते हैं आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

5:07 हुए हैं और श्रोताओं, पुराने गीत सिर्फ सुर और शब्दों का संगम नहीं होते बल्कि यादों की एक खूबसूरत किताब होते हैं। इन गीतों में मोहब्बत की मिठास, दर्द की गहराई और जीवन के अनमोल एहसास छुपे हुए होते हैं। और अभी आप लोग घर पर हैं, खाना बना रहे हैं, काफ़ी लोग इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी जब कोई पुराना गीत बजता है तो दिल बीते हुए लम्हों की सैर पर निकल पड़ता है। पुराने गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है जो हर पीढ़ी के दिल को अपना बना लेता है। तो चलिए सुरों के इस हसीन सफ़र में खो जाते हैं और सुनते हैं कुछ भूले बिसरे गीत मगर दिल के बहुत करीब गीत। और यहाँ पर एक और प्यारा सा तराना गीता दत्त की आवाज़ में।

0: तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

हमें एक सुर भी हिलाना न आया, हमें एक सुर भी हिलाना न आया।

हरी की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम ता तारा पा पा पा ता ता ता तारा रा रा तारा पा पा पा ता ता ता ओ माय सीता

अफसोस लेकिन ओ जने मन हाय जने मन। कांटे छुरी से खाना न आया, कांटे छुरी से खाना न आया, दिल भर को अपना

5:53 हुए हैं दोस्तों, आपने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गाना और आखिरी गीत सुनते हैं। सोनी महिवाल फिल्म से लिया गया, रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर और साथ में है लता जी की आवाज़ों में। और इसी गीत के साथ उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के 6 बजे हैं

को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। प्यालावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज श्रद्धा और प्रार्थना के साथ जारी है। हजारों श्रद्धालु सैंखवा स्थित उनके मकबरे तक पहुंच रहे हैं। इस वर्ष एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज के निर्माण का संदेश दिया जा रहा है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने गोपनीय दस्तावेज बाहर पहुंचाने के संदेह में अपने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। FCC के महानिदेशक संजय दाउदागी ने कहा कि संस्था में गोपनीयता का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिशों का भी खुलासा किया। हिंदी भाषा को आधुनिक रंगमंच और डिजिटल माध्यमों से जोड़ने पर फिनिक्स में विशेष चर्चा हुई। विश्व हिंदी सचिवालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर रंगमंच भारतीय और आधुनिक दृष्टिकोण पर विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। चर्चा में रंगमंच की नई संभावना और युवा पीढ़ी तक हिंदी को प्रभावशाली ढंग से पहुँचाने पर बल रहा। SSIN अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगियों के लिए एक विशेष वार्ड का उद्घाटन। ये सुविधा रोगियों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार देखभाल और इलाज उपलब्ध कराएगी। विदेश में इंडोनेशिया में ज्वालामुखी के 25 घंटे तक लगातार फटने से कई क्षेत्रों में राख फैल गई। 5 बड़े हवाई अड्डों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा।

सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देने वाले बियान्यूरू पे अलावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पे अलावाल को मॉरिशस के महान धर्म सेवक के रूप में भी जाना जाता है। पे अलावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज शुरू हुई, जबकि उनकी पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी। ये केवल पैदल तय किए जाने वाला रास्ता नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। कोई अपनों के साथ है तो कोई अकेले, और हर श्रद्धालु अपने विश्वास और अपनी कहानी के साथ सैकड़ों पहुंच रहा है। प्रार्थना, कला और मानवीय एकता के बीच ये तीर्थ यात्रा याद दिलाती है कि आस्था की सच्ची पहचान प्रेम और भाईचारे में है। और हर वर्ष 8 और 9 सितंबर को हजारों श्रद्धालु प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए सैकड़ों स्थित मकबरे तक पैदल पहुंचते हैं। इस वर्ष तीर्थ यात्रा का संदेश है एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज का निर्माण। गोपनीय दस्तावेज बाहर पहुंचाने के संदेह में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का एक अधिकारी निलंबित। आज सुबह पत्रकारों से बातचीत में एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदारी ने कहा कि संस्था के भीतर गोपनीयता का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कुछ जांच अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है।

0: कानून की किताबें अदालत की दलीलें और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकालत की दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में आज के कानून छात्र भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करें, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में इसी सवाल पर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने बताया कि नई तकनीक के दौर में वकीलों की भूमिका और कानूनी पेशे का स्वरूप किस तरह बदलने वाला है। अनबेल वुल्बे की रिपोर्ट पर सुनते हैं गीता सुनारायण को।
1: न्याय संस्थागत सुधार और मॉरिशस तथा भारत के बीच संबंधों पर चर्चा

0: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूर की प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के साथ हुई शिष्टाचार मुलाकात के केंद्र में रही। अपनी पत्नी और मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त के साथ पहुंचे डॉक्टर धनंजय चंद्रचूर ने प्रधानमंत्री के साथ न्याय व्यवस्था में हो रहे बदलाव, न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में तकनीक के इस्तेमाल और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की। इनमें मॉरिशस में चल रहा संवैधानिक सुधार भी शामिल है। मॉरिशस में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन है जो संविधान के संचालन का अध्ययन करेगा। उसी तरह भारत ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन कायम किया जिससे संविधान में बदलाव के रखे गए सुधार के साथ संवैधानिक बदलाव किए जा सकते हैं और साथ में जजों और अदालती कार्रवाइयों के साथ भी, जैसे निजी जीवन का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। डॉक्टर धनंजय चंद्रचूर ने राष्ट्रपति धरम गोकुल और अटोर्नी जनरल वकील गविन ग्लोवर से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की फैकल्टी ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट के लिए एक खास मेहमान की मौजूदगी रही। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से बातचीत करने का मौका मिला। इस दौरान तेजी से बदलते कानूनी पेशे की वास्तविकताओं पर चर्चा हुई। भारत के पूर्व न्यायाधीश ने छात्रों के साथ सीधे संवाद को प्राथमिकता दी और अपने करियर की शुरुआत से जुड़े कुछ अनुभव भी साझा किए। लेकिन पेशे की बारीकियों से आगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने छात्रों को ये समझने की सलाह दी कि कानून कभी भी समाज से अलग होकर काम नहीं करता। इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में हो रहे बदलाव भी कानून को प्रभावित करते हैं और ये तय करते हैं कि कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभानी चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इस सोच का महत्व और भी बढ़ गया है, लेकिन पूर्व चीफ जस्टिस के अनुसार AI को इंसान की जगह नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रचूर कहते हैं,
1: The one thing which artificial intelligence doesn't give us is the power of judgment.
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्याय करने की क्षमता नहीं होती। AI जरूर वकीलों के काम करने के तरीकों को बदल सकता है, लेकिन वो अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका की जगह नहीं ले सकता। वो अच्छे और बुरे के बीच फर्क नहीं कर सकता और हमारे समाज के हित के लिए उचित फैसला नहीं ले सकता।
1: Which is to distinguish between what is right and wrong and to arrive at just conclusions for the welfare of our societies.
2: It is not every day that students have the opportunity to interact directly with someone.
0: छात्रों के लिए ये मुलाकात कानून की किताबों और कानूनी प्रावधानों से आगे बढ़कर ये समझने का मौका रही कि भविष्य में उन्हें किन वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्लोए जुवाल कहती हैं,
3: Il nous a vraiment donné de bons conseils et sa perspective aussi par rapport au nouveau monde et avec l'implication de l'intelligence artificielle dans même le domaine légal et ses benefits, tout ce que ça peut nous apporter, mais aussi ses.
0: उन्होंने हमें अच्छी सलाह दी, AI के फायदों और नुकसान के प्रभावों के बारे में भी समझाया, जो कानूनी पेशे पर पड़ सकता है।
4: L'artificial intelligence ignore plusieurs informations, misinformation aussi.
0: युवराज लक्ष्मण कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत जानकारियां भी देता है। हमें नई पीढ़ी को इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। करीब 30 मिनट की ये मुलाकात छात्रों के लिए सिर्फ कानून का एक पाठ नहीं रही, बल्कि उस बदलाव पर विचार करने का अवसर भी बनी जिसका सामना आने वाले समय में इस पेशे को करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सोचने का मौका कि वे भविष्य में किस तरह के कानूनी पेशेवर बनना चाहते हैं।
5: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित लोगों की देखभाल की दिशा में एक नई पहल। कई वर्षों की कोशिश और आपसी सहयोग के बाद SSON अस्पताल में एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जागरूकता दिवस पर शुरू की गई इस सुविधा का उद्देश्य रोगियों को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर इलाज देना और उनके जीवन को आसान बनाना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी संगठन ने इसका स्वागत करते हुए सरकारी अस्पतालों में और अधिक विशेष उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। करुणा लालू।

0: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जूझ रहे मरीजों की देखभाल के लिए एक नया चरण, मरीजों के लिए समर्पित नया वार्ड, कई वर्षों से चल रहे प्रयासों और विभिन्न पक्षों के सहयोग का नतीजा है। इसका मकसद मरीजों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुरूप अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। सुदेश कुमार पाठू कहते हैं,
1: Canalisé ça mon enfant vers nous l'association et à partir de ça nous prenons le suivi que ce que vous êtes admis à l'hôpital avec tous les soins nécessaires.
0: उत्तर क्षेत्र से परे स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने दक्षिणी क्षेत्र में भी इसी तरह की सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य दक्षिण के मरीजों को खास चिकित्सा सेवाएं उनके घर के करीब उपलब्ध कराना है। मंत्री अनिल बिचू ने कहा,
2: parce que vous connaissez, les enfants-là, déjà, ils ont un problème. Pour amener dans les nœuds, là, pour garder quelques jours ou quelques semaines dans l'hôpital, ils viennent un problème pour les parents. Alors, nous pensons dans le site, soit à Rosebel ou à Suyac, nous visons faire un autre département, un petit ward là-bas.
0: स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि दो नई एंजियोग्राफी मशीनें फ्लैक और जीतू अस्पतालों के लिए जल्द ही खरीदी जाएंगी। अस्पतालों में मौजूदा कई मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें लगातार मरम्मत की आवश्यकता है।
2: मोबाइल हॉस्पिटल सिविल एंड द हॉस्पिटल प्ली इंपोर्टेंट दे पेई दे ला कैपिटल एन जो पी एन पान लबा नु वे फेट टू नु डिमांड सा सेमेन ला नु कैपेबल रिपार्ली ए कन नु रिपार्ली ओ एस्पेरे दे पु ट्रावाय एन पे बट एंट्रे टेम नु डेजा फिनी कोमांस प्रोसीजर पु प्रेंड दे एंजियो मशीन एन अफ्लाक ए कैन आ जीतू।
0: वहीं सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने डिजेबिलिटी पेंशन प्राप्त करने के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। ये असेसमेंट पैनल के कामकाज पर भी गौर करेगी।
3: La réforme de disability benefits, l'IPU, vise pour qu'il non seulement get l'élément médical de quiconque qui a une quelconque disability, mais il aussi vise pour get l'élément fonctionnel, au sens le medical guideline pour intégrer et modernise et réactualise un critère médical. Et que là, nous pouvons aussi évaluer ben Zibon qui basise le 60%, mais en bas 60%.
0: सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के स्तर पर भी कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार संविधान में दिव्यांगता को भेदभाव से सुरक्षा के आधारों में शामिल करने के अपने वादे पर कायम है।
4: हिंदी भाषा रंगमंच और बदलती डिजिटल दुनिया के बीच के गहरे संबंधों पर आज फिनिक्स में एक विशेष मंथन हुआ। विश्व हिंदी सचिवालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर रंगमंच भारतीय और आधुनिक दृष्टिकोण विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। स्थानीय कलाकारों ने रंगमंच में आ रहे बदलावों और नई संभावनाओं पर विचार साझा किए, साथ ही नई पीढ़ी तक हिंदी को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने की जरूरत पर बल दिया। अदिति अवतार
5: एक कहानी सुनने आए हैं।
6: नाटक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख और प्रभावशाली माध्यम है, जिसने समय समय पर समाज, संस्कृति, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं को मंच पर जीवंत रूप प्रदान किया है। पारंपरिक रंगमंच से आरंभ हुई नाट्य कला ने बदलते तकनीकी परिवेश के साथ निरंतर नए रूप लिए हैं। इस कार्यशाला में स्थानीय कलाकारों को नाटक के विकासशील सफर पर विचार करने का मौका मिला।
7: पहले धरती सांस लेती थी।
8: पुराने के ज़माने में हम सेटिंग करते थे, जो प्रव्स बनाते थे वो हाथ से बनाते थे, कुछ घर के बना देते थे फिर रखते थे। पर आज एवोल्यूशन के साथ हम लेड स्क्रीन डालते हैं, डिफरेंट एआई का सहायता लेकर हम डिफरेंट सेटिंग बना सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं लाइट्स के साथ, म्यूज़िक के साथ, अभी सब कुछ बदल गया है।
9: जो सोशल मीडिया जो कंटेंट बाहर में बनाया जा रहा है, यहाँ पर हम ग्रहण करते हैं सिर्फ। अब इससे हमें निकल कर वी नीड टू बिकम एक्टिव, हमें खुद क्रिएटर्स बनना है। लेकिन क्रिएटर्स बनने से पहले हमें वो क्षमता होनी चाहिए जिसके जरिए हम खुद कंटेंट क्रिएट करें और लोगों तक पहुंचा सके। और इसके लिए ऐसे कार्यशाला, ऐसे वर्कशॉप बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक तो भाषा के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग के तौर पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी वाइज़

0: आधुनिक उपकरण किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से ये कंटेंट खासकर नौजवानों तक पहुंचा जाए।
1: दिव्या और सज्जनों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि विश्व हिंदी सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहता है।
2: नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डीन शांतनु बोस ने कहा कि डिजिटल युग ने नाटक की पारंपरिक संरचना को चुनौती देने के साथ साथ उसे ज्यादा सुलभ और संवादात्मक बनाया है।
3: थिएटर एक ऐसी विधा है, एक लाइव परफॉर्मेंस है, जहाँ पे मूल शर्त ही है कि दर्शक और अभिनेता साथ में फिजिकली उपस्थित रहे। तो ऐसे हमारे फॉर्म का तो एआई से कोई शंका नहीं है, पर एआई के कारण बहुत सारी सुविधाएं आई हैं, जैसे हमें बहुत तुरंत कोई टेक्स्ट ढूंढना हो, कोई रिसर्च मटेरियल ढूंढना हो।
4: हिंदी का जो एक स्वरूप है जो न केवल अतीत से जुड़ा है बल्कि वर्तमान से जुड़ा है, हम हिंदी के उस रूप को देख रहे हैं। बल्गारिया में क्योंकि भारतीय डायस्पोरा बहुत छोटा है तो वहाँ पर बल्गारियन हिंदी पढ़ रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच में, या हम कहें तीनों देशों के बीच में, चाहे वो भारत हो, मॉरिशस हो और बल्गारिया हो, इन तीनों के बीच में अलग अलग हिंदी है।
2: उद्घाटन समारोह में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में नई टेक्नोलॉजियों को शामिल करने के महत्व पर बल दिया गया।
5: देखिए, हम लोग के सामने एक चुनौती है कि कैसे नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ा जाए, और इस जुड़ाव को बनाने के लिए हमें जिस तरह से हिंदी की पढ़ाई होती है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तो एक माध्यम है, और टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सब से जो युवा पीढ़ी का जुड़ाव है उस माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार के साधन हम अपना रहे हैं, और हमारी कोशिश यह है कि उन साधनों के साथ हम युवा पीढ़ी को हिंदी के प्रति आकर्षित करें। साथ साथ हिंदी को सरल और रोचक भी बनाना पड़ेगा, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हिंदी का पाठ्यक्रम जो हो, हिंदी के पढ़ाने के तकनीक जो हो, वो सरल हो, वो इस तरह के हों कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनकी हिंदी के प्रति जो रुचि है वो बढ़े।
2: शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों को सरल व्याकरण और आसान भाषा के माध्यम से हिंदी पढ़ाए जाने पर उनकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी।
6: इस माध्यम से हिंदी को बच्चों की तरफ ले जाएं, उन लोगों का रुचि हिंदी में कैसे हम ज्यादा इंटरेस्ट ला सके। वी हैव टू रिव्यू द वे हिंदी स्टोरी। अगर सरल भाषा में हिंदी को हमारे बच्चों के पास लाएं, वो उनको अपनाएंगे।
2: इस समारोह के दौरान एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया।
7: और हर वर्ष 8 और 9 सितंबर को हजारों श्रद्धालु प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए सैकड़ों स्थित मकबरे तक पैदल पहुंचते हैं। समाचार की शुरुआत में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। इस वर्ष तीर्थ यात्रा का संदेश है एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज का निर्माण, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष यातायात और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की गई है। हमारी सहयोगी याचना मिश्रा सैकड़ों में मौजूद है ताज़ा जानकारियों के साथ। नमस्कार याचना।
8: नमस्कार पूजा, और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। जी हाँ, अभी हम सैकड़ों में खड़े हैं। मेरे ठीक सामने फैजलाबाद का मकबरा है और पीछे यहाँ पर गिरजाघर है, और यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ इस वक्त बहुत तेज हवाएं बह रही हैं, हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन भीड़ भी है लेकिन शांत माहौल भी यहाँ पर छाई हुई है। मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई शोर शराबा नहीं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं शांत माहौल से, शांत मन लेकर यहाँ पर आ रहे हैं इसी श्रद्धा, इसी आस्था के साथ, क्योंकि जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वे दूर होंगी। और यहाँ पर आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, जी हाँ, सुरक्षा काफी जोरदार है। यहाँ पर पुलिस की भारी मौजूदगी है, यहाँ पर कुछ समाज सेवक भी है, और स्वास्थ्य के लिए मेडिकल पोस्ट लगाए गए हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं वो इस मेडिकल पोस्ट में जा रहे हैं, जो मकबरे और गिरजाघर के बीचों बीच लग गया है। पुलिस की भारी मौजूदगी है। हमने मोर्चा फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के जो

जो दमकल कर्मी हैं वे भी वहां पर हैं। चार पांच एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं यहाँ पर सबकी सुरक्षा के लिए। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं शांत मन के साथ, शांत चित्त के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और फैजलाबाद हॉस्पिटल के पास जाकर फिर वहाँ से निकल के वो लोग गिरजाघर के अंदर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि गिरजाघर में यहाँ पर प्रार्थना सभा जो लगने वाली है वो रात 8 बजे शुरू होगी और

0: स्कूल कॉलेज गए हुए थे वे अब घर पर जाकर फिर यहाँ तक की या तो पद यात्रा या फिर गाड़ियों में आ रहे हैं। अब गाड़ियों को लेकर हम बता रहे हैं, कोटवी से जैसे मोका से जब हम लोग कोटवी की ओर आ रहे थे तो यहाँ पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या थी, लेकिन जैसे ही हम जो आली पेरावाल जिसको बोलते हैं जो सड़क है जो यहाँ पर आती है वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम इतनी ज्यादा नहीं थी, गाड़ियाँ जो है आराम से चल पा रही हैं, पार्किंग की व्यवस्था भी है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं शांत मन से। और आपको बता दें कि कल 9 सितंबर को यहाँ पर लोगों की ज्यादा भीड़ आने का अनुमान है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कौसर लावाला का देहांत जो है वो 9 सितंबर को यहाँ पर हुआ था सन 1864 में, और वे 7 साल के थे और वे गरीबों के मसीहा कहलाते हैं जिन्होंने यहाँ पर मॉरिशनों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और उनकी भलाई के लिए यहाँ पर काम किया है।
1: धन्यवाद याचना इन सब जानकारियों के लिए। जैसे कि पेलावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज शुरू हुई, ये केवल पैदल तय किया जाने वाला रास्ता नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है और पेलावाल की पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी। विदेश में भारत की राजधानी नई दिल्ली में सत्यनिकेतन की 5 मंजिला पीजी इमारत ढहने के बाद छात्र आवासों की सुरक्षा जांच की जा रही है। हादसे में 7 लोगों की मौत। एक सप्ताह के भीतर पीजी के रूप में इस्तेमाल की जा रही इमारतों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उच्च स्तरीय जाँच और इमारत नियमों के पालन पर फिर से गौर करने की घोषणा की है। और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर भारत तक 2 बड़े हादसों ने चिंता बढ़ा दी है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी की राख से उड़ानें प्रभावित हुई हैं और लाखों यात्री फंस गए हैं।

और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू है। इस तरह हमारे इलाके पर ठंड हवाएं बह रही हैं और मस्कारिन की दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंड और जोरदार हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर देश के पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर। कोहरा भी छाया रहेगा। कल दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और हल्की वर्षा होने का अनुमान है ऊंचाइयों पर। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से तथा मछुआरों से समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 17 से 22, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:11 पर होगा।

6:26 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजल को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

रॉय रोड बुले रूज फ्लैक में, रॉय रोड बुले रूज फ्लैक में 69 साल की 69 years old श्रीमती मुनेश्वरी देवी कुंजु बिहारी, श्रीमती मुनेश्वरी देवी कुंजु बिहारी पैदाशी नाम रामयाल और जिन्हें लोग रजनी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सपहर के तीन बजे इनके पति देव कुंजु बिहारी के मकान रॉयरोड बुलेगूर फ्लैक से उठाकर काउद मास्क की श्मशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 3 PM। बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कच्चे मिलते में 72 साल की 72 years old श्रीमती वीरामा चिदम्बरम पैदाशी नाम कुंजमाले और जिन्हें लोग मिनीदा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके बेटे कंदन चिदम्बरम के मकान बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कच्चे मिलते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए में जिनका दिमाग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। रॉय रोड न्यू ग्रोव में 79 साल के 79 years old श्री उजागीर सिंह सकी सिंह जिन्हें लोग विष्णु नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले DWC में इंस्पेक्टर थे। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे इनकी बहन हरावंती सकी सिंह के मकान रॉयल रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। रॉय रोड ला फ्लोरा में 93 साल के 93 years old श्री रूप नारायण मंगा जिन्हें लोग ललन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड लाफ्लोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट नून। गांधी रोड बुनमेया में 76 साल के 76 years old श्री अमृतलाल बिकाऊ जिन्हें लोग नारायण नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे रामनाथ सिंह बिकाऊ के मकान गांधी रोड बनमेया से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो 12:30 PM। रिवालों रोड खैफकुआ में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बुलडाओ जिन्हें लोग कलावती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल शाम साढ़े तीन बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान रिवालों रोड खैफकुआ से उठाकर खैफकुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो 3:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: बुधवार 9 सितंबर को शाम के 6:30 बजे लावंच झरनाथ शिवालय द्वारा मासिक शिवरात्रि मनाई जा रही है।
3: NBC Radio 24 hours a day.

सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्तियां। सीबी अपने ग्राहक जो सेमाटें बिजकैप और श्वाजी और आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि गुरुवार 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। वहीं सीबी अपने ग्राहक जो रियाम्बल कोस्ट रोड और आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि कल बुधवार 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। वहीं जो ग्राहक लेबुशों, ला शापेल लेन, सोसिटिए ला कॉन्फिडेंस, ला गामेल, कॉन्स्टेंस लेन और आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि गुरुवार 10 सितंबर को मरम्मत कार्यों की वजह से सुबह 9 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और वहीं सीबी अपने ग्राहक जो शमय वेपिय, ओल्ड मिल रोड, मोसेल मोसवा, कोस्टल रोड और ले फ्लामो रोड, पेरिबे आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि कल बुधवार को 9 सितंबर को सुबह 9:30 से लेकर सपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के पूरा होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को एक बार फिर जारी कर दिया जाएगा। किसी भी असुविधा के लिए सीईबी आपसे क्षमा प्रार्थी है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोताओं को अनीता का करजोड़ नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस की लहरों पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक सुविचार इस प्रकार है कि उदय सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही वेद ज्ञान फंसे मत अविद्या को नष्ट कर वेद विद्या की वृद्धि करता है। तो श्रोताओं, आइए इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन चमक दमक पदार्थों को देखकर पाने की इच्छाएं जागृत होती हैं। एक इच्छा मिलने पर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ही अनेक इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। फिर परिणाम ये इच्छाएं हमें शांति से जीने नहीं देती और हम इच्छाओं को मरने नहीं देते।

प्रियजन, पुण्य का उदय अहंकार के लिए नहीं, संस्कार के लिए होता है। जहाँ गुण होते हैं वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ गुण नहीं टिकते। पुण्य मनुष्य को बड़ा नहीं, विनम्र बनाता है।

भक्तजन, प्रयोजन। प्रयोजन शब्द का अर्थ है किसी कार्य को करने का उद्देश्य अथवा लक्ष्य। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। उचित प्रयोजन मनुष्य को कार्य करने की दिशा और प्रेरणा देता है। इसीलिए कार्य करने से पहले उसके उद्देश्य को समझना आवश्यक है।

श्रोताओं, मनुष्य अपने श्रेष्ठ गुणों से महान बनता है, केवल ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, महल के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठ जाने मात्र से एक कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। तो इसी विचार के साथ श्रोताओं, यह कार्यक्रम समाप्त होने चला है। आपने साथ एवं ध्यान दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

मोहतरम सामईन, सदियां पहले कायनात में एक फूल खिला था जिसकी पाकीज़ा खुशबू ज़माने में फैली। उस गुल की खुशबू सदियां गुजर जाने के बावजूद कम नहीं बल्कि तेज़ से तेज़तर होती चली आ रही है और इंशाअल्लाह ज़वजल ता क़यामत होती रहेगी। वो गुले बेमिसाल और कोई नहीं बल्कि रहमतल आलमीन सैयदुल मुरसलीन आकाए दो जहां दिल बरे जाना सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है।

इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सामईन गरामी, इसी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी आज की महफिल शब नशरियात अख्तताम पजीर होती है। महफिल तो ख़त्म हो रही है मगर दिल अब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहर में डूबा हुआ है। बस यही इल्तिजा है कि ऐ परवरदिगार आलम हमारे दिलों को भर दे इश्क़ मुस्तफ़ा से, हमारी ज़बान को मुअत्तर कर दे ज़िक्र मुस्तफ़ा से, हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर दे सीरत मुस्तफ़ा से, हमारी सांसों को महका दे नाते मुस्तफ़ा से, और हमारी आखिरी कामयाबी हो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन दुआओं के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम, शब बख़ैर।

0: संगतियालोग घड़ी मिला बखर रात के ठीक 9 बजे बा तू सुनत हो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: कंटीन्यूअस म्यूजिक
2: 819 किलोहर्ट्ज़ दिस इज रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
0: रात के 9:06 होता थुसनो तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो मनोरंजन 94.95 मेगाहर्ट्ज़ पर सब संगतियों के हम स्वागत करे थे जा और आज मंगल के रात मंगल रात सितंबर साल 2026 बहुत छुटर का कार्यक्रम प्रस्तुत अभी से लेकर रात के 11 बजे और जो प्रताप सिंह हम एक से थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुर गीत सुन के नंबर वा घुमा हुआ का जगह दे विद जगह विद सैंक का जगह दे विद जगह विद सैंक और मौसम तो बड़ी ठंडा ठंडा करता पानी बरसता हवा झोंकों के साथ बहता बस ऐसे मौसम में अपन रेडियो सेट के और करीब और हमने के साथ रात के 11 बजे रही चलो शुरू कर जाए धमाकेदार प्रोग्राम के साथ बहुत जोशीले गीत के साथ मोहम्मद खालिद राजा बंधु गीतवा गिरेवन थोरा जीले अब कैसे जिए के चेहरा चले एक साथ सुनम जा

0: भारा में जिसे देखा तो हवा हवा का लगभग आज शाम की 4:00 आधा मॉरिशस ऋतु विज्ञान केंद्र की ओर से जो कम्युनिकी जारी कर बा ओकर अनुसार मॉरिशस में ऊंचे लहरों की चेतावनी जारी बा और ये चेतावनी जारी रही बीफे 10 सितंबर के शाम के 4:00 रे। साथ में सक्रिय बादल गो ठंडा हवा के साथ लहर के साथ हमने के मौसम के प्रभावित करा था। तो जो ठंडा हवा के लहर जब गुजर जाए हमने पर तेगो जोरदार एंटी साइक्लोन के प्रभाव पड़ी जोन मास्करीन आइलैंड्स के दक्षिण पश्चिम में बा तो कर से हवादार मौसम रही और बरसाती मौसम। सो मौसम जो है रात के और काल फजीर के गाँव गाँव पर मोटका पानी बरसी पूर्व में दक्षिण में और ऊंचे इलाकों में और मिनिमम टेम्परेचर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और 18 से 21 डिग्री सेल्सियस शहरी इलाका में। और कल जो है कल दिन के दौरान जो है तापमान में गिरावट आई है 3 डिग्री से और हवा जो है दक्षिण पूर्व की ओर से बहता 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहूँ कहूँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बही। और जनता से मांग करा जाता कि समुंदर में न जाए के कहे कि समुंदर बड़ी खराब आ और 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठता और खासकर जब मागे उत रही था ही सब जन बाघ बगवा और डोंजे हो जाए और हमने कि जन मछुआ दो समंसा लोग से मांग करा जाता समुंदर में नहीं जाए के कहे कि ऊंचा ऊंचा लहरें उठी और समुंदर बड़ी खराब रही। और बेशक सूर्यास्त सूर्योदय हुई काल फजीर के 6:11 पर और सूर्यास्त हुई सांझ के 6:02 पर। तो मौसम जिसे बोला था कि बरसाती रही हवादार मौसम रही और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आई कहे कि जोरदार एंटी साइक्लोन हमने पर प्रभाव पड़ा था। तो बस ही ठंडा के मौसम में बस हमने बोला गर्मा गर्म चाय गर्मा गर्म कॉफ़ी पिया और हम के साथ रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अभी रात के 11:00 ले। और अगला गीत अनिल सिंह रमेश सर अमृता मन हिल गए वन मिलजुल के जिए के अभी को संगत लाइन पे सुना जा प्लीज अब टेलीफोन कर बता रेडियो के बोली वक्त कमती कर दिया बोलना नहीं सक बच्चा। हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते
0: कल्याणी जी तो स्वागत बा।
1: हाँ अमिता का जन्मदिन
0: हैप्पी बर्थडे।
1: हाँ और फूलो मिठाई के ऊपर न है गीता मंगिया
0: कौन गीत बोला था वह
1: मिठाई के ऊपर में बा मोमबत्ती
0: कौन सौते
1: मिठाई के ऊपर में बा मोमबत्ती
0: मिठाई के ऊपर बा मोमबत्ती बेलेला बेलेला है गीतवा।
1: हाँ मिठाई के ऊपर बा मोमबत्ती 100 साल दिए भैया 100 साल दिए दीजी
0: आली चला दियो अब सा गीतवा। और बहुत बहुत धन्यवाद उनकी टेलीफोन कर ला आली बहुत शुक्रिया। हिरल कल्याणी बहुत शेरी से तोहर गीत चले गीतवा के बाद कहो गीतवा भी पैर का क्लासिक रख दिले ही सर। और पहला गाना मिलजुल के जे के है गीतवा चरावत से सब संगत यारों के नाम जो हमने के साथ जुड़ा हूँ सर। याद रह कि है प्रोग्राम चला था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर साथ में रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी चला था जहाँ तू सकत हो हमने की देखे और सुने भी। तो है जो पहला गाना है बहुत बहुत प्यार के साथ चरावत सब संगत या के नाम जो हमने के संगे जुड़ल हवन जा आप हवन विमला रघुबर शरण केविन बाब्स मोहम्मद बिलाल दिनेश हरी एंजोलिनो।

देवीन प्रभु देवा हई गीचरी दया खातीर सबियाना सलमा अमीचान हजारीलाल हरिदेव देवराम लौल अनुष्का करीम गास्पो शिल्डो धर्मावती शीला राकेश मंजारो है गीत तोरो खातिर फिर सीरा कतन और फिर राकेश मंजारो उनके साथ देवथवन बेबी कॉल भीमकांत आशना एरो वाइब्स अजय गुप्ता शीला सुरजोनु अनसुया वीना वेंकटसमी दीपक हिना वसु जैनब येसन बी इलाही मेधा जांगतु रेणुका राजकुमार निर्मला साइन लिक्स वीर सिंह युस्नी आशीष मगर एलोइसा येष्णा सुमदू उषा प्रेयसी खुश क्लब मंजुला कावलेस नंदानी बिदेस जॉन मोहम्मद उमेरा नरेंद्र नाज सिमसिम मुनीरा मीला करिश्मा गुरुसामी रोज माया बाचू सहिदा रघुआ सकुन सीरा दीनदयाल वर्षा एस एस बी स्वीती अनुषी एलोइशा दिनेश मातो नजीरा करीम रवीन जुनस पिनाल फिर हईगी चरी शिव नंदन कमल थापा अनसुया जी एलोन से हवन और के साथ वन हाय अनसुया है गीत और खातिर आप एलोन से लाइव हमने के सुनत हवन लकी वुमन शरीफा सरस पूजा कविता प्रिसिला अनसुया जेनिफर अडल्फ ईसा मौला अरुणा अरुणा अरुणा उगारा रोशन सदा सिंह हेलो रोशन भाई नमस्ते तुरा स्वागत बा सैरा दाहू अगला गीत अब्दुल और सैरा बानु खातिर अंजेला स्था है गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत हमने चलावत है ईसा खास हम खास साइलेंट की ओर से अगर घरोड़ी रानी और प्यारी सी बेटी परी और गीत चली श्यामा जो नहरन विल में अशोक चैतन और रवि बंगारू खातिर जितना कोई अभी हमने की सुनाता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई हमने टिकटॉक पेज पर देखा था तह गीत तो लोग के नाम सच के हमने के सब कोई के चेहरा मिलजुल के जिए के

बच्चा में सच के बोला कि जिंदगी में चाहे दोस्ती करे के मिलजुल के जिए के और मिलजुल के जीवा तो प्यार से जीव सा एकता से जीव सा यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो कि नहीं। रात के 9:25 अगला गीत एगो हैप्पी बर्थडे वाला गीत है। तो गीत चली नदी वाला उनके संगतिया के नाम वैनकूवर कनाडा से वन अनिता लाल जी और सब इटू परिवार और लालजी परिवार बहुत दरबे से अनिता वन फ्ली कॉन्फ्लैक्स से क्या गीत हुआ तो लोग के नाम चला वब्जा और है गीत चली खासम खास ये सब संगतिया लोग के नाम जुन हमने के साथ जुड़ल हवन जा हाँ। तो अगला गीत जुन है चला सैरा दाहू की ओर से गीत चली अब्दुल सैरा बानू के नाम फिर जिब्रान आकाशदीप है गीत और खातिर नेहा जनीता फिर मंगल तारू तिरकपुन मगर योवना साबिना सेविया एंजल धनवंती लकी वुमन की ओर से गीत चली जयराज रानी अंती शंकुश स्नेहा और सब दुलाल दुला परिवार के नाम लाल माटी से नंदा हेलो नमस्ते सिल्वियो आली मिलियनेयर की ओर से गीत चली उकर महेंद्रानी बिहारी आप कोच मिली थे रोशन भाई हेलो जी नमस्ते प्रकाश कुमार नमस्ते जी हेलो विद्या जॉन मिशेल भी हमने के साथ देवथवन जॉन बातीस फिर नदानी जगरू गीत चली नदानी जगरू खतेर आप गुड लेंस मामजल जान अमानसी साथ देवथवन और बोलता प्रोग्राम एकदम चकाचक बा बहुत जोरी जोरी गीत चलाता अच्छा लगा था। नेक्स्ट सॉन्ग अमानसी तोहर खातिर नर बहादुर गुरप्रीत सिंह और हे गीत अच्छा दी खास हम खास अनिला तोहर नाम और रॉक गंगा राम और जितना स्टूडेंट्स और अध्यापक लोग अभी रात के वक़्त हमके सुनता बहुत बहुत प्यार से है अगला गीत तोहर नाम और जितना कोई के जन्मदिन बा हैप्पी बर्थडे ढेर माना प्यार और आशीर्वाद।

हाँ तो गीत रहा जितना भी क्या जन्मदिन रहा लोग खातिर। और अब हमने तुल के सुनाओ जाए कहानी सावित्री और सत्यवान की कहानी। बहुत पुरानी बात है, राजा अश्वपति की बेटी सावित्री बहुत सुंदर समझदार और धर्मपरायण रहल। अब जब विवाह लायक भल तो राजा उनकर खातिर योग्य पर खोजे लगल। और सावित्री जंगल में रहत हल को राजकुमार और राजकुमार सत्यवान के अपन जीवन साथी चुन रहल। सत्यवान बहुत नेक बहादुर और माता पिता

0: के सेवा कर ले रहा युवक रहल। बाकी ऋषि मुनि बोले रहल कि सत्यवान के आयु बहुत कम बा और विवाह के एक दो साल बाद ओकर मृत्यु हो जाए, ये एगो आकाशवाणी हो रहल। एकर बावजूद सावित्री सत्यवान से बहुत प्यार करे और वो निर्णय देलक कि वो सत्यवान से ही शादी करी। ये बात जानला के बाद सावित्री अपन फैसला नहीं बदललक और उनका विवाह सत्यवान से हो गए। विवाह के बाद सावित्री अपन सास ससुर के बहुत सेवा करे लगल, अपन पति से बहुत प्यार करते हल। और एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते हल, सावित्री भी उसके साथ गल। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हल और धराम से धरती पर गिर पड़ल। और वो जो है सावित्री अपन गोदी में सत्यवान के सरदार के सुरहावता और बोलता, सत्यवान जाग जाग सत्यवान जाग। तब यमदूत सत्यवान के प्राण ले ले आर प्राण ले वे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ल और यमराज उनका बहुत समझेला कि वो वापस चला जाए, कहे कि ओकर प्राण लेके जाता और ओकर प्राण वापस ना करी। पर सावित्री के बुद्धि धैर्य और पवित्रता धर्म से देख के यमराज बहुत प्रसन्न होलन और उस सावित्री के वरदान मांगे के बोललक। पर वो बोलक कि वो नहीं सकी सत्यवान के प्राण दे ओकर बदले में वरदान मांगे के। तो सावित्री पहला वरदान मांगलक अपन सास ससुर खातिर सुख सम्मान, और दूसरा वरदान जो हो मांगलक कि ओकर ढेर मना संतान हो। तो यमराज जो है बिना सोचे समझे बोल दिलक तथास्तु, और जब तथास्तु बोल दिलक तो सावित्री को से पूछा तू, तब वरदान दिलक कि हमार ढेर मना लड़का हो, तो हमार पति नहीं रही तो लड़का कैसे हो। ओ हो हो, यमराज सावित्री के बुद्धि मानी समझ गए, प्रसन्न होके ओके परत सत्यवान के प्राण लौटाए के। सत्यवान फिर से जीवित होकर सावित्री अपन पति के साथ घर लौटाल और समय बीतल तो ओकर परिवार में ढेर मना लड़का होल और परिवार बड़ा बनल। तो सत्यवान और सावित्री की कहानी की सीख ई है कि सावित्री की कहानी जो है सच्चा प्रेम धैर्य और बुद्धि मानी पति पत्नी के अटूट विश्वास के संदेश देवेला। और एगो पत्नी चाहिए तो अपन पति खातिर सब कुछ सकी करे, अगर सच्चे दिल से को पत्नी अपन पत्नी से प्यार करी तो भगवान से भी अपन पति के प्राण सकी लौट आनी। तो ज़रूर ये कहानी जो है सोशल मीडिया पर बा, अगर फिल्म भी बनल बा और यूट्यूब पर भी बा, सोशल मीडिया पर गूगल पर भी बदल जाइए और खोज जाए कहानी के सावित्री और सत्यवान। अभी कहते चरफ सुनब जाएगो जोड़ी गीत ओ बलमा और गीतों के लेवन सुम्बावती दुमन बहुत बहुत प्यार के साथ। और गीत आकाश चेतन खातिर राजेश श्री राम मास्टर सुरेश भाई और रॉक गंगाराम। गीत चली सब रात्रि और टीम मेंबर्स खातिर अनमागी है गीत रुनाम प्रकाश कुमार और है गीत चरावती सरिता खातिर। साथ में गीत चली ललिता कुशल त्रियोले से चाचात बाराम भाई हरीश बोबासा से काला छोटी पोलॉजे से और अमृता गणेश हवन पीतों से। और अभी सुरागनी हमने के इंतजार करा था ओकर से बचाई राजा। हेलो सुरागनी। हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते, कैसी समाचार?
1: अच्छे अभी से 15 मिनट हो गल।
0: हाँ तो अच्छा इंतजार करके ना बच्चा तरी सा बोला।
1: हाँ जाना था
0: आली बोला।
1: बेटा के जन्मदिन रहल, नियेस के जन्मदिन रहल, दुगो नियेस के
0: गातवा के ले के ले खाली ल
1: तक हरी ये थी नहीं बा गणपति ने बा कागम ने है सा
0: तब बिजताने का तू बना दिया हो। और बहुत बहुत बधाई तो हर बेटा की और के कस रानी वैसे रहल
1: नियेस दुगो नियेस के रहल रानी वैसे
0: या
1: और है काल बा बेटी के रानी वैसे या बेटी के 41 हुई काल
0: चलो
1: गणपति विनय गजन आशील पति अर्चना और हमार सब नातिन नाती बेटा के लिका लोग और है सब आदिम परिवार सब okay. परिवार आज परसों भी दुगो जन्मदिन बा नेवे के आज बहिन के
0: हाँ
1: लेजिस के

0: T'as voulu dire, c'est un bonnet bibar. Tu viens, c'est
1: la liste qu'a fait l'homme, baba. Quand il bat, il y a une question qui a fait, c'est tigba.
0: Il y a une question qui a fait.
1: Bajabol dali ya
0: uji. Tela dio. Ale sab tor ande sikitim ke sabiko.
1: Ale ama secretaire wonu lo ke bol da lo go sunata piar se.
0: Ke?
1: Ama secretaire wonu lo ke git mangla lo go sunata.
0: Ha, sab ke?
1: Ale bol de niwa.
0: Ale de niwa.
1: Ale ko sangati ama shoba pamble musse hello.
2: Hello Pratap ji namaste.
1: Namaste Shobha ji, kaise ho?
2: हम अच्छा हैं, तू कैसे हो?
1: हम ठीक हैं और तुम्हारा आशीर्वाद से। और अभी गणपति की तैयारी हुआ था?
2: हुआ था। एक और गाना मंगा था।
1: हाँ बोला।
2: हाय पूर्णिमा फकीरा।
1: पूर्णिमा फकीरा।
2: एक और गीत डाल दिया कर तीसरे हाय तुम्हारे प्रोग्राम में सब सुनने वाले के लिए तुम्हारे परिवार हमारे परिवार सब एमबीसी स्टाफ के लिए आप जितना कोई त्योहार प्रोग्राम खुशी रेला सुनेगी
1: हाँ
2: आली
1: है आली बहुत धन्यवाद हमने की टेलीफोन कर ला तो चले एक साथ अभी सुनो जो संभावते दुमन के गीतवा बलमा और बात चली पूर्णिमा फकीरा के राधा के शोभेरा तो मिस्त्री हमने के साथ देवतवन श्रीन राम जोन गीत हो रखा थी सबीना हेलो सबीना इनके टिकटॉक पर फॉलो करा था और चला एक साथ सुने और अरविश रेनू हिता भी हमने के साथ देवतवन तो चलो गीतवा सुनो जो संभावते दुमन के गाओ गीत बलमा ओ बलमा

बालमा हो बेदर्दी हमार। देखते ही देखते रात के पौने 10 बजे था। तू सुनता भोजपुरी चरका प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन से एमबीसी स्टूडियो जो हम मौका में है वहाँ से ही प्रोग्राम चला था। संगठन लोग आगामी मंगलवार 15 सितंबर के हमने मनाव अवसर गणेश चतुर्थी के महापर्व वो दिन गुआम छुट्टी के दिन रही यानी कि पब्लिक हॉलीडे और वो दिन भगवान गणेश की पूजा कर अवसर कर भजन कीर्तन गाव अवसर ओके विसर्जन कर अवसर। और आजकल घर में मोदक बनाता तरह तरह की मिठाई बनाता गणेश भगवान के प्रसन्न करे खातिर तधेर गणेश के भक्तगण अभी रात के उनकी सुनता धेर कोई भी मूर्ति बनावत तो उनसे जुड़ी जुड़ी गणेश भगवान की जो जड़ी मूर्ति और एक सप्ताह लेकर पूजा हो घर में झाकड़ी हो भजन कीर्तन हो और मंगर के लेकिन सप्ताह के हाउस में के और पूजा पाठ करला के बाद ओके हमने विसर्जन कर अब सता जितना गणेश के भक्त लोग भी रात के उनकी सुना था त हमने गणेश गणपति बापा से प्रार्थना करी रहा कि तिलों की मनोकामना पूर्ण हो अभी जो व्रत धारण कर ले वैसा तो हर व्रत सफल हो चल एगो गणपति बापा के भजन चलाव दे सब गणेश भक्त लोग खातिर जो सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन गणपति बापा मौर्या गणपति बापा मौर्या जय गणेश जय गणेश जय गणेश।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: RM3 रेडियो, रेडियो, रेडियो।
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमर, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
4: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का। भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट, जलसा, हंगामा।
5: पहले के जमाना में ढेर कोई गरीब रहन सा, पर सब कोई खुश रहता। सब कोई तोल के घर में रहे, आदमी लोग खेत में काम करते रहन सा, फिर भी हर एगो व्यक्ति के मुंह पर एगो प्यारी से मुस्कुराहट है। आजकल इंसान के पास हर तरह के सुख सुविधा बा, पर इंसान कोनो न कोनो बात के लेके दुखी बा, वो खुश नहीं बा। तो ये सब समय समय की बात है। आगे के आदमी में सबूरी रहल है, आगे के आदमी सबूरी करे, जितना रहल उतने में संतुष्ट रहत है। अभी के आदमी के जितना मिले लो के बसवे नहीं होला। आज तोरा मिल जाए 10 लाख तक कल बुलबंग के और चहला, 20 लाख मिल जाए, 50 लाख मिल जाए, पर आज के इंसान के है कलयुग में जो इंसान है कि कौन चीज़ बस नहीं होला, ये खातिर हमने दुखी रही रह सका है कि हमने के और चहला और चहला और चहला। पहले के ज़माना में इतना घूमौता नहीं रही सर, इतना लालचित इंसान नहीं रह, थोड़े पैसा मिला तरह पर आराम से जिया तरी सर। और आगे के ज़माना में एक परिवार में 9 गो 10 गो कहूँ पर 15 गो लड़का रहे, फिर भी सब कोई मिलजुल के अच्छी तरह प्यार से एक ही छत के नीचे रहता। आज एक गो लड़का बात थोड़ा तिरंगा नौकता बर बर करेला सुलरिया जब बोलेला, बर बर करेला सुलरिया जब बोलेला। संजय सिगुबिन

Sigulam, Sanjay Sigulam, I get again. One or a gate to charity is a sweet and lovely Rihanna Hassan and Chikinam upon Phoenix, or a Rivage Boski Uday Daniram, Kishan Guriap, Pritamra Jumila, Keshav Obilak, or Subbachan Padiwar Kinam, or a gitchali genago ye beam rat give a katam kissunata. बहुत बहुत प्यार से होता है गीत तो लोग के नाम हो जाए बर बर करेला सुलरिया जब बोलेला और सुलरिया आगे का बोलेला चले एक साथ सुनब जा

हमनी के घर के लक्ष्मी, हमनी के माँ बेटी और पत्नी बहू है। तो जिकर घर में माँ बहिन बेटी बहू के आदर सत्कार होला, वो घर में माँ लक्ष्मी वास करेला और घर में संपत्ति संपत्ति धन हमेशा भरपूर रहेला। तो हमेशा याद रखिया, अगर तुम्हारे घर में माँ बहिन बेटी बहू बा तो लोग के मान सम्मान करिया, प्यार से बतिया और देखबो घर में हमेशा लक्ष्मी माँ वास करी। और ऐसे में एक गीत सुनब जाए, नारी जन्म ले रे बेटी, और है गीत चलावत है।

Isab sangati alokati rap hoan chachi prabhauti nivel français. Ratan nihal grand BC, satyam sonu, si ratan parivar. Kamla dinu, kachi zanfarohi, rita kiro saka behin renuka. Sabka katia parivar, harku parivar, chirakan parivar, triolese. Or sasti bonomali katir, git charata. Sabukar parivar, sangatia, or सास्ती बनमाली को सुपे हवन पनवान में कूस करें न और जितना कोई के जानी रहा तो गीत लोगों खातिर नारी जन्म ले ली बीती और सच्चे के नारी की जीवन जो है आसान नहीं आए अब देखा एगो नारी के कितना रोल रह रहा कब वो शादी का लगता है वो पत्नी बन गल अब कोई के बेटी है वो है अब बेटी से पत्नी बनल पत्नी से माँ बनल माँ से दादी बनल बहू बनल चाची बनल नानी बनल मौसी बनल तेगो नारी के ढेर भूमिका है घर में नारी काम करेला घर के बाहर भी काम करेला और समाज में ऊंचा स्थान पाला यूनिवर्सिटी जाला तो नारी में जितना शक्ति बा नारी की शक्ति अपरंपार है पुरुष नारी के आगे कुछ नहीं बा कहे कि नारी जो है वो सकी ढेर काम करे और ओकर में शक्ति बा है मेंटल पावर भी बा सकेला फिजिकल पावर थोड़ा कम थी पर जो मेंटल पावर है इ नारी में बा वही के नारी के देवी बैला सा जननी बैला सा हाँ कि नहीं अब नारी के आगे कुछ बैला सा चल एक साथ सुने हैं गीतों में नारी जन्म ले ले बेटी रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन के सब हमने के लिसनर्स के नाम जो इबखत सुनता और इबखत रात के 10:10 हुआ था मॉरिशस में और दुनिया भर में जहाँ से भी लोग हमने सुना था तह गीत तो लोग के नाम भी नारी जन्म ले ली बेटी

0: एकदम बढ़िया भोजपुरी गीत, एकदम चकाचक गीत। और अब एगो चाची बा लाइन पे कॉल से मिलब जा। चाची ललिता त्रियोले से। चाची ललिता नमस्ते।
1: हेलो, नमस्ते बेटा।
0: कैसे चाची?
1: अच्छा बेटा, अच्छा।
0: गमटा हुआ था ना?
1: हाँ
0: हाँ। चाची तो राजू के बोली मत हे जोर बा कमती कर द।
1: आतान करो आतान।
0: अरे अरे, हम हमेशा बोली जा से जब भी टेलीफोन कर बा तो राजू आके वॉल्यूम कमती कर दे से बना नए सब सब बच्चे आई। ओके हाँ चाची।
1: राजुआ खेलती बा ना बेटा।
0: हाँ अच्छा, कमती कर दी के तो नहीं सको सब बताई चाची।
1: राजुआ के बोली मुआ नहीं अच्छा बात नहीं। वो एक आती नहीं
0: बोली मुआ अच्छा बात थोड़ा चाह।

0: अगले करे के है। बोले तो चाचा आज के दिन कैसे बीतल?
1: आज के दिन बड़ी ठंडा बेटा।
0: का कर बचाची है तो लेता हूँ वही से बाना
1: हाउ जो उसने ठंडा
0: बाप यहाँ तो मोहताज नहीं रही तो बुढ़िया जब सा
1: हाँ हुआ सैपिये मारेंगा
0: मोका सैपिये है वाकवा ही सब जगह तो बड़ी ठंडा करेगा तो तरीको को जाके दली से तभी ठंडा उतना अभी एम्बेसी के भीतर ही से ना
1: हाँ बेटा
0: हाँ अभी भाड़ा नहीं खरीद उड़िया नहीं तो अच्छा जैसे भाड़ा ही पोलो जा के लोटो में हिल जाएगा फिर जाएगा गते गते हाँ मोहताबा बड़ी ठंडा मोहताबा लाफलोगा बहुत शेरी होने तो आ ठंडा करेगा
1: और ठंडा
0: अच्छा गर्मा गर्म चाय कॉफी पिए के का बोलेगा
1: हाँ हाँ हाँ जाके ठीक है।
0: अरे बोले तो चाची कौन
1: गीत सुन देव विनोद शिवदत्त के दगा दिले रे सुनरुआ
0: दगा दिले रे सुनरुआ हाँ। गीतों के क्या खातिर
1: दादिया बहन सुदेवी ज्ञानी छोटी दीदी दादी प्रभावती हरीश भैया आत्माराम भैया शुक्लाल मौसी खातिन
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: दोहरों खातिन बेटा
0: हाँ शुभ रात्रि चाची ऐसे ही इनके साथ देते रहिए और अभी हमने की एगो संगत्या वन भाई अरविंद बिशेसर जी हमने के साथ देवतन भैया जी नमस्ते है गे तोहर खातिर भौजी खातिर तोहर लड़का लोग खातिर सब बिशेसर परिवार के नाम और भाई अरविंद बिशेसर जिन वन भोजपुरी के एगो जिन एगो महारथी हवन भोजपुरी में चोरी से भोजपुरी बतियावलन भोजपुरी में को देवर एम जी आई से जुड़ल हवन और साथ में रेडियो पर भी स्पोर्ट्स बड़ी जोड़ी से प्रस्तुत करें चाह और भाई अरविंद तोहर फैंस दुनिया भर में वा और मॉरिशस में ढेर मना जहाँ भी जाए रहा जैसे भाई अरविंद के नाम से ऐसा मिश्रत राजू ना एक स्पोर्ट जो नर जो म्यूजिकल जो आइटम प्रस्तुत करें एकदम चकाचक टन टना टन टन तो भाई अरविंद गीत खासम खास तोहर खातिर और तोहर सब परिवार के नाम तो चलो भाई अरविंद सुनब से गीत भाग गल खसिया लबाकार रसी तुर के देखिया भाई अरविंद आई खौसी मोहताबा से रसी तुर के एम्बेसिया एम्बेसी में रसी तुर के तोहर लग गया हुआ था खौसी के पकड़ के रखिया है और हे गीत चलाओ अब सा खासम खास मिस बंगारादू मिस केट मिस दीना मिस प्रतिमा मिस रोशनी सरजू रोसाई आपाया और वीरापन भाई खातिर और खासम खास भाई अरविंद बिशेसर गीत तोहरो नाम भाग गल खसिया आहा

रात की 10:25 हुआ था और हमने तड़के साधे होते ऐसा तो लोग भी हमने के साधे हुआ था और रात के 11 बजे लिए बहुत छोई तड़का कार्यक्रम में और एमबीसी के डुगो रेडियो चैनल पर चलता एगो एएम मोड पर रेडियो मॉरिशस और एगो एफएम मोड पर रेडियो मनोरंजन और वही ऐसा जब रास्ता में हमने गाड़ी खोई ऐसा तो चेहरा खुद खुद लाखों अच्छी तरह से जाने के और नहीं चेहरा शराब पी के गाड़ी चला के कौन था बोश अगर शराब पी के गाड़ी चला तो पुलिस रोक ले लग और बालों सूफे कराई लग तो जेरो टॉलरेंस है तो हर पॉइंट कटाए पे हम यहाँ पॉइंट और जहाँ पर बा स्पीड लिमिट छा फॉलो करे के कहूँ पर कहाँ पर किलोमीटर पर है बा कहूँ पर 100 किलोमीटर कहूँ पर 100 तो ये सब चाहे ध्यान में डाले कि नहीं कि प्रेसे होते हुए तो आप ये कर ले जाते हो सीमा में और जाके धक्का वक्का मार दे एक्सीडेंट हो जा रहा तो ये खातिर ला पुलिस जो है बहुत ही सेवे आजकल जो है एक्शन ले हुआ था चाहे एक्शन भी ले के कह के तो लोग के लापरवाही के कारण तो लोग की जान भी जाला और परिवार लोग की जान भी जाला रोज की सुनी ऐसा राज्यों में टेलीविजनों में सोशल मीडिया पर कि हाई हाई जगह में फलाना व्यक्ति की मौत हो गई या ब्लेस हो गए एक्सीडेंट हो गए तो कहे छे सीमा में इतना पैसे हुई कि तो लोग जाने रह सर हमेशा से बोल रहा सर कि शराब पी बता गाड़ी नहीं चला के फिर भी थेथर लेकर शराब पी के गाड़ी चलावे रह सर अगर तू पी ले भी हवा तो को ड्राइवर ले लिया ड्राइवर थोड़ा जाके आनी जाके छोड़ दे अब पी ले सर ड्राइव करे रह सर अपनों जान खतरा में था दूसरों का भी जान और हमने देखे से ढेर पिएता हूँ लोग जो चले सीमा में वो लोग अपन कान में ईयरफोन डाल के चले रहें सर तो कैसे सुनाए भैया कहूँ से लुत्फा हुआ था कबू कबू जहाँ नहीं थावे से कि वहाँ थावे से हो सर अब कहूँ कहूँ जहाँ पर नहीं दुबले हो मासिन दुबले करेगी तो वहाँ मासिन दुबले कहूँ जब लालिन जोन पर तो वहाँ जाके लुत्फ डाल ले कैसे बनी बोले था तो सब कोई के चला अपन अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर चाहते हो सब कोई निमन से जी अपने की समाज में उनके देश में तो एक्सीडेंट जो है चीज़ है सबसे एविते करे सब कोई अपन अपन सोफे निमन से ड्राइव करी पिएता लोग सीमा में निमन से चली कभी कभी देख रहा सको नब्बी से आगे तो लड़का लोग बीस के पीछे से था वैसे होते हो सर तो जाना कितना खतरा है जहाँ क्रॉसिया बात है वहाँ सब क्रॉस पर और जहाँ होबो बात चाहे देखे कि कौन कुलिया बा लाल बात अच्छा ला आगे तो के जन वे बात अच्छा ना जाए के तो हो होबो में दिखी रहा सर ढेर कोई लापरवाही करेला जन कुलिया बा तो कुलिया के नहीं फॉलो करते हो जाके धक्का कमार दे गोर हाथ टूट जा रहा था प्रॉब्लम होला अगर थोड़ा मन करता कहूँ जाए के तो आधा घंटा एक घंटा आगे निकल जाए घर से जब इस सही सलामत मंजिल तक पहुँचे अब प्रेसे रह से सीमा में गापे करे रह से उड़िया रह से तो अपने उड़िया से दूसरों को भी उड़िया देवे रह से तो ये सब बात चेहरा ध्यान में रखे के तो अगर अभी जितना सुफिया लोग हमने के सुना था रात के वक्त तो उसे एगो कर्जो निवेदन करे थे हम तो उससे एक को बात बोला तू काम करेला ड्राइव करेला रोजी रोटी कमाए खातिर तोहर घर में तोहर पत्नी तोहर लड़का लोग तोहर इंतजार करे था तो निमन से ड्राइव करिए मन से को दिला खुद स्वीप करिए और अपन घर सुरक्षित पहुँच जाए तो जितना सुफिया भाई बहन लोग हमने के सुना था जितना पासासे लोग अभी सुना था हमने के वान में हो ऐसा गाड़ी में हो ऐसा कहूँ तेरे कोई कहूँ जाता या कहूँ से आवा था शादी से फ्योसाई से या कोनो भी मौका से

अभी जैसे ठंडा ठंडा करता तो मन करेला चटकार खाना खाए के, और जब मसाला के कोनो तरकारी बनेरा तो चहला फाता या गोची सुसु गर्मा गर्म फराटा ओकर में लीसी फुलिया के तरकारी आलू डाल के जोली से पका देब गर्मा गर्म फाता पीमा के अचार क्या बात है। और ढेर कोई खुशी रहता जब मसाला के कोनो तरकारी पके गोबा मसाला पकेला या कटहर में आलू डाल के मसाला में या कोनो भी मसाला के तरकारी पकेला तो ओकर में फाता जो है क्या बात है फाता गोची या नान। अब तोरा पारे से कहता फराता पकाए कि आज तो मशीन सब कहती मशीन बा गोची मेकर भी बेचाला। अभी देखा था एक दिन सोशल मीडिया पर भारत में एगो मशीन बनल बा गोची फराता पकाए के ओकर में एगो कोना में से बकर पानी डाले एगो कोना में तेल एगो कोना में आटा और अब आगे कुओं से चलेला ये सब डाल देब ताकि दबाइब तो 15 मिनट में सकेला 10 या 20 को फराता बन जाए। यानी कि वो लोग की भाषा में चपाती बोई रहा सर तारा पागी हुआ बहुत जल्द मॉरिशस आए और हम नहीं जाने से कि ढेर कोई पागी हुआ कि नहीं इतना महंगा नहीं बैगो 15-20 हज़ार ले पागी हुआ हो देखा थे सोशल मीडिया पर जो टाइप करिए गूगल पर या कोनो भी साइट पर और टाइप करिए इंडियन गोची मेकर द न्यू वन 2026 एडिशन लापागी हुआ एगो एगो माइक्रोवेव लिखा हुआ और कुरों के ला पा रही है तो ओकर में एगो प्लास बाकर पानी डाले के आटा डाले के तेल डाले के और बटन बा तो बटनवा ओकर इंस्ट्रक्शन बा गोली बा लीवा में देखे बटनवा दबाई बा तो आराम से डाल देला ओकर तेल आटा पानी बैठ के ताक मशीनवा 15 मिनट में 10-20 को चपाती पका के थोड़ा दे दे गर्मा गर्म क्या बात है। तो बेशक जब अबरिया फाता पकेब मसाला के तकारी तो हमने के याद करिए हमने हमरो लगे जब पके रहा मसाला के कोना तकारी तो फाता पकाई रहा सा ओछी पकाई रहा सा हाँ कभी कभो ठंडा करे रहा नेमन करे रहा फाता पके तो फाता किन क्या नहीं रहा सा घर में सब कोई परिवार के साथ खाई रहा सा क्या बात है। चलो इसलिए सब जगह गरम गरम दाल कच्छू की कहानी संतोष महादेव की तो आ गए हवन और गीत चली गिरीश हल्लोर के नाम। हेलो गिरीश भैया गीत और खातिर कुणाल हिरीलाल पूर्णिमा फकीरा किशोर खेमिया और संजय हरिचंद खातिर भी यूनिवर्सिटी मॉरिशस के फैकल्टी सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज की बीए फ्रेंच एमए फ्रेंच पीएचडी फ्रेंच और एमजीआई मोका के हिंदी और संस्कृत विभाग भोजपुरी विभाग जो है वहाँ पर ही जो बीएमए हिंदी संस्कृत भोजपुरी की पढ़ाई कर रहे हैं और जो प्रोफेसर लोग बा और लोगों खातिर गीत चली सेंट थॉमस एसएस कॉलेज के सब टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स के नाम है गीत चली लाफ्लोगा के विशाल विशेषर के नाम और पत्नी और बेटा शालिनी हिरू है गीत तोहर दुगो बेटी तोहर घरोला विशाल तोहर भाई कृष्णा सब हिरू परिवार के नाम। तो चलो एक साथ सुना है गीत गरम गरम दाल कच्चू आ हा हा गरम गरम दाल कच्चू रही पीमा के अचार और गर्मा गर्म पूरी तो हम तो है ये खाप खाली।

इंसान सकेला सब कुछ भूल जाए पर बचपन के दिन कबू नहीं सकेला भुला। हमने के बचपन के साथ हमने की ढेर मना याद जुड़ल बा। बचपन में जुन है ढेर को कानित खिलता है, गुड्डी उड़ावत है, लाखू उड़ावत है, चौकड़ी लोग लमाखेर खिलते है, लाखों सोते तलन सा तो ढेर मना खेल रहा आगे के ज़माना में है। यही सब खेल आजकल नहीं लोग खेला और हमने के बचपन तो ऐसे ही बीतल बा। हर प्रकार के खेल रहल और गुड्डा गुड्डी के खेल, कुकाशेत माये ना ये सब खेल रहल। पर आजकल ये सब खेल नहीं रोके ला क्या कि आजकल लड़का लोग इंडो गेम जस्ती खुशी रह जेनरेशन जेन जी। अब जो लड़का लोग उसके जेनरेशन अल्फा कहाला। तो चला अभी सुन अजब गजब के लोग भाई दुनिया में ये गीतवा चलावते ऐसा जिमी दुखिया खतेर, होरीलाल दिनू, श्याम मंगल, राजमना, सुदेश जसवा, लोंग चिबुग राजा, स्टीव, संजीव, संजय और प्रवीण बुधन खतेर और प्रवीण भैरव खतेर और है गीत चली प्रवीण बुधन के नाम प्रेरणा की भी आदेशोंगी। है गीत चली प्रवीण बुधन खतेर और माता जी पिताजी और कर सब परिवार के नाम और कनाडा में का परिवार बाकी वेज पोस्ट में का परिवार बा और जहाँ से भी तू हमने की सुनाते हुआ ढेर कोई हमने की देखो देते हैं ते पर सुनाता ढेर कोई MBCR प्ले पर मोबाइल फ़ोन पर ढेर कोई राज्यों में ढेर कोई इंटरनेट पर www.mbcradio.tv पर सुनाता और हम की आवाज़ दुनिया भर में पहुँचता कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया से शेल मारागास्कर जहाँ से भी तो लोग हमने की सुनाते हुआ सब कोई कहते रहे गीत। ये दुनिया में अजब गजब के लोग बा, कोनो कोनो लोग बड़ा ही अच्छा हुआ सा पर कोनो कोनो ढेर मोवे लोग भी बा। पर तू मोवे लोगन की भुला जाइया, तू अच्छा अच्छा लोगन से दोस्ती करिया और ज़िंदगी में आगे बढ़िया।

किशोर कुमार अमेसर वंदना नमजी थोपलान के गावल गीत पानी की पानी पानी के संगे ही भोज भीतर का प्रोग्राम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। कुछ मिनट में रात के 11 बज जाए, 11 बजे सुन बजा सुनहरे पर प्रोग्राम नितुषा के साथ और रात के 12 बजे से कार फजर के 5 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने सुन बजा। रात के 9 बजे से अभी हमके साथ रहा टिकटॉक पर हमके देख ला रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर सुन ला। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें फोन कॉल्स और SMS खातिर शुक्रिया। हमने की तो लोग की मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे यही चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का। कल रात तक हमने की इजाज़त दा जी प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: प्यारे प्यारे हमारे जितने भी श्रोता इस समय रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं, स्वीकार करें निदुषा का करजोर प्रणाम। सुनहरे पल कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन है। हमेशा की तरह आज भी सुनहरी यादों में आपको खोए ले जाने आए हैं, और आज जिन कलाकार के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे और जबरदस्त गाने चलाएंगे, वो हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के जो कपूर परिवार के बेटे हैं। कौन सा बेटा, ये गाना सुनिए, पता चल जाएगा।

तो आज का ये सुनहरे पल कार्यक्रम आपके नाम है शशि कपूर। जी हाँ, एक शांत, सभ्य और कलात्मक सितारे की कहानी। शशि कपूर का नाम आते ही मन में एक ऐसे कलाकार की तस्वीर उभर कर आती है श्रोताओं, जो अपनी नर्म मुस्कान, गहरी आँखों और बेहद स्वाभाविक अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनका पूरा नाम बलबीर राज कपूर था और उनका जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ। वे कपूर परिवार के सबसे छोटे बेटे थे और पृथ्वीराज कपूर जैसे महान रंगमंच कलाकार के पुत्र होने के कारण कला उनके रगों में बसी हुई थी।

शशि कपूर ने अपना कलाकार सफर बहुत ही छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था। बचपन में वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर के नाटकों में काम करते थे। यहीं से उन्होंने अभिनय की बुनियादी समझ, डिसिप्लिन और कला के प्रति समर्पण सीखा। रंगमंच ने उन्हें एक मजबूत कलाकार बनाया जो बाद में पर्दे पर भी साफ नजर आया।

वैसे शशि कपूर ने फिल्मी दुनिया में पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन एक लीडिंग हीरो के तौर पर उनकी पहली बड़ी फिल्म थी 1961 की धर्मपुत्र। इस फिल्म में उनके गंभीर और प्रभावशाली अभिनय को बहुत ही सराहा गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 60, 70 और 80 के दशक में लगातार सफलता हासिल की।

शशि कपूर ने अपने करियर में लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ यादगार और लोकप्रिय फिल्म रही जब जब फूल खिले, दीवार, कभी कभी, सिलसिला, त्रिशूल, नमक हलाल, चोर पुलिस, फकीरा, जुनून, कलयुग, चोर मचाए शोर। उन्होंने रोमांटिक हीरो के रूप में भी दिल जीते और सीरियस, नेगेटिव या फिर कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी छाप छोड़ी। उनका अभिनय कभी भी बनावटी नहीं लगता था। वे कम शब्दों में भी गहरी भावना व्यक्त कर

70 के दशक में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया। दीवार, त्रिशूल, कभी कभी जैसी फिल्मों में दोनों के बीच का कंट्रास्ट, अमिताभ बच्चन का तीखा तेवर और शशि कपूर का शांत सभ्य व्यक्तित्व पर्दे पर कमाल लगता था। शशि कपूर की एक्टिंग की सबसे बड़ी विशेषता थी उनके नेचुरल एक्सप्रेशंस। वे डायलॉग से ज्यादा आंखों, चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से कहानी कह देते थे। उनकी आवाज में मधुरता थी और उनका व्यवहार पर्दे पर बहुत

श्रोताओ, शशि कपूर सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक साहसिक प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल के साथ मिलकर फिल्म वलस नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस बैनर के तहत उन्होंने आर्ट और पैरेलल सिनेमा को बढ़ावा दिया। उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्शन फिल्म्स रही जुनून, 36 चौरंगी लेन, कलयुग और उत्सव। इन फिल्मों ने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सिनेमा का नाम रोशन किया। व्यक्तिगत तौर पर उनकी जिंदगी देखें तो शशि कपूर ने, जैसे कि हमने कहा, ब्रिटिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से विवाह किया। दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि कला का भी था। जेनिफर के निधन के बाद शशि कपूर का जीवन काफी बदल गया और वे धीरे धीरे पब्लिक लाइफ से भी दूर हो गए। उनके तीन बच्चे कुणाल, करण और संजना कपूर भी कला से जुड़े रहे।

अपने करियर के दौरान शशि कपूर को उनके योगदान के लिए बड़े सम्मान मिले, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड।

पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये पुरस्कार उनकी कला, समर्पण और सिनेमा के प्रति उनके प्यार का प्रमाण है। उनका निधन 4 दिसंबर 2017 को हुआ, लेकिन वे आज भी अपनी फिल्मों, अपने शांत अभिनय और कलात्मक विरासत के जरिए अमर हैं। वे सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के एक सुशील, संवेदनशील और समर्पित कलाकार रहे। शशि कपूर हमेशा याद किए जाएंगे एक मुस्कुराते हुए चेहरे, गहरे किरदार और सच्ची कला के रूप में। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: BBC Radio, 24 hours a day.
1: अशांति बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब।